कुछ हमारे साथ में रहेगा। और आपको पता ही होगा, जैसा कि आपने समाचारों में सुना है, इंग्लैंड ने नॉर्वे को हराकर अब सेमीफाइनल में अपना जगह बना लिया है। एक और एक खेल होने को बाकी है। ऐसे में कल भी काफ़ी अन्य स्पोर्ट्स में कुछ खेल हुए हैं, उस पर भी अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं। ये सभी कुछ आपके साथ में आपके फेवरेट डायल हम 104.2 FM पर, रोवा पर भी आप हमें सुन रहे हैं। देश में किसी भी जगह पर है आपका खास स्वागत करते हैं, या फिर आप विदेश ऑफशोर्स हमें सुन रहे हैं रोवा पर, वेलकम टू द शो। अभी का साथ है, लेकर आया हूँ ढेरों सारा प्यार खास आपके लिए। 5599 आपके मैजिक नंबर है। जब तक आपके टेक्स्ट मैसेजेस नहीं आते, कुछ अच्छा सा नहीं लगता। और 0800004866 आपका टोल फ्री नंबर है, जहाँ पर आप कॉल करके अपनी जो डेडिकेशन से हमें दे सकते हैं, या फिर कुछ बर्थडे मैसेजेस है आपके पास में, ये भी हमारे साथ में आप शेयर कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस हैपनिंग फ्रॉम नाउ टिल 6, साथ देते रहिएगा, क्योंकि ये जस्ट चिल है, और चिल करते हुए इस सफ़र को हम तय करेंगे। पहला नगमा खास आपके लिए इस मौसम को डिस्क्राइब करता हुआ, जैसा आज का दिन है ओकलैंड में, ये गाना तो बिल्कुल बनता है।

अरिजीत सिंह की आवाज में हम पर एक ब्यूटीफुल नंबर फॉर अ ब्यूटीफुल संडे। और ऐसे में आपको बता दें, जबकि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा मौसम, यूं कहें कि ओकलैंड के लिए खास ये बताया जाता है कि काफ़ी जगहों पर फाइन वेदर आपको मिलेगा, सनशाइन भी आपको मिलेगी, धूप मिलेगी, वेरी अनलाइकली फॉर विंटर। लेकिन जब तक है इसे आप इंजॉय कीजिएगा। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर बताया जाता है 14 डिग्री तक, और इसके अलावा सनसेट आज आपको मिलेगी 5:22 PM। अगर जो नेशनल देखे और शहरों में काफी जगह पर मैं देख रहा हूं नॉर्थ आइलैंड में सनशाइन फोरकास्ट किया गया है। ऑल दीज टाउन्स आपको आज काफी दिनों के बाद में यूं कहेंगे ब्यूटीफुल डे मिलेगा। और इसके साथ साथ साउथ आइलैंड में भी काफी जगहों पर सनशाइन फोरकास्ट किया गया है, तो काफी जगह पर धूप खिली है। और ये वीकेंड, जबकि ओकलैंड में खास करके लॉन्ग वीकेंड काफी अच्छा वेदर, सुनहरा वेदर था, और लोगों ने इस पर काफी एडवांटेज भी लिया होगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि जो वीकेंड है काफी मेहनत के बाद में आती है। और भी बातें करेंगे, वेदर के बारे में बात हुई है, इसके साथ साथ सनसेट भी बता दिया है, तो आपके पास में समय है। जो भी आज आप प्लान करना चाहते हैं आप कर लीजिए, वॉशिंग है, लॉन्ड्री है, या फिर बाहर निकलकर सैर करना है, घूमना है, फिरना है, ये भी आप सभी कुछ कर सकते हैं। बस हमारा साथ देते रहिएगा हम पर, जबकि वीकेंड पर आपके लिए मैं आ जाता हूँ, और इसी तरह से आपका साथ देता रहूँगा टिल सिक्स। और भी बातें मज़ेदार जो है आपके साथ में करते रहेंगे। आपको भी कुछ सुनना है 5599 पर हमारे पास में टेक्स्ट कीजिएगा, आपके गानों को बजाते चलेंगे, आपको भी कार्यक्रम में प्रोग्राम में शामिल करते हुए चलेंगे।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Big savings in store this long weekend at Mitre 10 Mega Westgate of Henderson. 15% off pet toys, 20% off indoor plants, and save on Water ID Advanced Interior 10 Liter. July 9th, say 12th. Sirf Mitre 10 Mega Westgate of Henderson. May.
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
3: Indelible Homes, your building expert.
4: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
6: मुझे भी।
5: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
7: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the redeveloped Waitemata station, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to...
8: Hey, hey! Noodles with friends in a Kingsland restaurant!
7: In just 13 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
9: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
10: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
9: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
10: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
9: Ye hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
10: 100% authentic and pure as mother's love.
11: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
12: Kabhi bhi, kahi bhi. Mast malang jo.
13: That's right, हम पर बेफिक्र होकर मस्त मलंग झूम और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आपके पास में कोई रिक्वेस्ट है तो हमारे पास में ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा और सबसे पहला पहल जो डेडिकेशन आया है अजय अभी ओकलैंड में है लेकिन आप हरियाणा से हो और आपने रिक्वेस्ट की है दिल ले गई कुड़ी गुजरात की लगता है कुछ पर्सनली अप्लाई करता है आप पर लेकिन जो भी हो ये गाना बिल्कुल आपके लिए जसबीर जस्सी की आवाज़ में और पेश करने जा रहे हैं आपको भी कुछ सुनना है कुछ अलग सुनना है आज के दिन तो 5599 इज योर नंबर जबकि मैं हूँ आपके साथ में और ये जो कारवा है जस्ट चिल का टिल सिक्स आपके लिए सजाते रहेंगे

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर कुछ 20 मिनट बाकी है एक बजने में और एक प्यारा सा मैसेज आया है क्वीन की ओर से हाय आई बी लिसनिंग टू योर अमेजिंग प्रोग्राम इसी तरह से आप भी हमारा साथ देते रहिएगा और आपके पास में भी कोई डेडिकेशन है 5599 पर टेक्स्ट कीजिएगा या फिर आज आप अपना जन्मदिन आज आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो इसका भी जो मैसेज है हमारे पास में आप भेज सकते हैं क्योंकि खुशियाँ जो है बांटने से बढ़ती है और अगले गीत में क्वीन आपको भी शामिल करते हैं और यहाँ से जो कारवा है इसके बाद में आपके साथ में स्पोर्ट्स की दुनिया से भी कुछ अपडेट्स शेयर करते रहेंगे

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: डिब्बा खुल गया
2: भरत भाई, टिफिन खुल गया छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
3: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
2: डिब्बा खुल गया।
3: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Have you heard? It's your final day to shop Briscoe's for massive 70% off dream big deals, plus 20 to 70% off the entire store. The days are cold, but the savings are hot. Dream shop save for one final day at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: At Bunnings, we can make your paint projects easy. With a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74, or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy. Lowest prices are just the beginning.
6: Spark Satellite, powered by Starlink satellite to mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite-ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
7: ये जस्ट चिल विद अवी। और इस शो पर आपसे बता दें कि हमारे अपने केतन कुमावत ने, जो आपके लिए लेकर आते हैं लंच बॉक्स, इन्होंने अभी हाल ही में कोलैब किया है सिंह दिलदोरिया के साथ में और मिलकर एक नया सफाया 2.0 रिलीज किया है जिसकी लॉन्च हम पर हुई है। और ये जो वीडियो है, इनका जो गायकी है इनकी, ये आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पर। सिर्फ सर्च कीजिएगा केतन कुमावत सफाया 2.0 और यहाँ जाकर आप इनके जो गाने हैं इनको चेकआउट कर सकते हैं। गाने तो ये बिल्कुल बढ़िया गाते हैं और इनसे बातें करवाएंगे, कोशिश करेंगे 1 बजे के बाद आपकी बात केतन से हो सके।

0: Just chill.
1: Yo,
2: you're listening to Avineet.
3: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और हमारे स्टूडियोज में 1:02 हो चुके हैं और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि प्रोग्राम में लेकर आएंगे हमारे साथी केतन को, जिन्होंने अभी हाल ही में एक सफाया 2.0 जो गाना है अपनी आवाज़ में रिलीज़ किया है और क्या वंडरफुली इसको शूट किया गया है। गाया तो बढ़िया ही, हमेशा अच्छा गाते हैं, लेकिन जो वीडियो भी इन्होंने बनाया है इज़ वंडरफुल। तो हमारे लाइन्स पर है आपके लंच बॉक्स के होस्ट केतन। केतन, आपका स्वागत है, वेलकम टू द शो।
4: Thank you, Avni. Thank you so much for a great introduction, yeah. Thank you so much.
3: ये आपके वीडियो के मुताबिक तो कुछ खास मैच नहीं कर पाई क्योंकि I was just checking out the video, मैंने कल भी देखा था और एकदम इंटरनेशनल लेवल का लग रहा है।
4: Thank you so much. You're very kind, bro.
3: अच्छा, एक बात बताइए।
4: But glad you liked it.
3: हाँ जी। एक बात बताइए, ये कोलैब हुआ कैसे आपका?
4: मैं बेसिकली मैंने जैसे सबसे पहला इंट्रोडक्शन ही पहले पहला

0: जो इंडिया को केटर किया है और पूरा इंडिया में ही शूट किया है। तो मैंने कहा हम तो न्यूजीलैंड में, लेट्स डू समथिंग ओवर हियर यूजिंग सम हिंदी एंड पंजाबी सॉन्ग।
1: वंडरफुल वंडरफुल, और एकदम बढ़िया लग रहा है वीडियो, जैसा कि मैंने पहले कहा है। और इसके साथ साथ
0: जी
1: कितना दिन लगा आपको ये रिकॉर्ड करते?
0: यू विल बी सरप्राइज एक्चुअली। 1 साल हो चुका है जब
1: हाँ
0: पहली बार हमने इस पे बैठे थे लिरिक्स लिखना, और हमारा जो पहला रिकॉर्डिंग था वीडियो का वो हुआ था लास्ट ईयर दिवाली, जो सिटी में होता है
1: राइट
0: दिवाली,
1: राइट
0: तो
1: या
0: वो हमारा पहला दिन था उसको रिकॉर्ड करने के। ऑलमोस्ट अब आई थिंक अराउंड 8 8 मंथ आई गेस।
1: ओके ओके, ना ना ना। और लोगों को
0: हाँ
1: आप
0: जी
1: क्या बताना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक शायद इस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है यूट्यूब पर, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही बोलूंगा दैट आप जाइए मेरे अकाउंट पे, या फिर अगर आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करेंगे सफायर 2.0 केतन कुमावत, तो आपको मिल जाएगा वीडियो, और आप प्लीज उसे देखिए। आप जितना शेयर कर सकते हैं उसे करिए, जितना अपनी फैमिलीज को, आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत पसंद आया। बड़ी बात है, हमने मेहनत बहुत की है, और मैं तो चाहता हूँ कि ये एड शेरन के पास पहुंच जाए तो भी सो अमेजिंग, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा।
1: बिल्कुल। और
0: एड शेरन और अरिजीत के पास पहुंच जाए इतना वायरल।
1: इस बात से एक और एक बात सामने आई है कि आप कुछ भी कहे सैंडी दिल की अच्छी है ना?
0: वो तो डेफिनेटली, वो तो डेफिनेटली फॉर श्योर,
1: अच्छा चलो
0: नो
1: ठीक।
0: नो दो राय, लाइक शी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट, शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प, जब भी कुछ कुछ भी चाहिए हो। हाँ बस पगार बढ़ानी होती थी, वहां पे वो नहीं होती है।
1: अच्छा मैं क्या करने वाला हूँ, लोगों को सुनवाने वाला हूँ आपकी आवाज़ में सफ़ाया 2.0। नाइस टॉकिंग टू यू केतन, और आई एम क्वाइट श्योर इस गाने को
0: सेम
1: सुनने
0: यार,
1: के बाद अभी तक जिन लोगों ने चेकआउट नहीं किया है वीडियो पर, दे विल बी टेम्प्टेड टू गो एंड सी द वीडियो, क्योंकि आपने गाया ही इतना अच्छा है।
0: परफेक्ट, थैंक यू सो मच, नो वरीज नो वरीज,
1: टॉक टू यू लेटर केतन, सी या बाय।
0: ऑल राइट, सी या, बाय।
1: तो ये थे केतन, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उनकी आवाज़ में सफ़ाया 2.0, एक ब्यूटीफुल नंबर। यूट्यूब पर है इसका वीडियो, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं।
2: ये

0: Co.nz.
1: हम पर हमारे काइंड स्पॉन्सर्स की ओर से आप तक लेकर आते हैं वर्ल्ड कप फिक्चर्स यानी कि अपडेट्स इन एवरीथिंग। तो आज सुबह सुबह जो खेल इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच में हुई उसमें इंग्लैंड की जीत हुई नॉर्वे के खिलाफ, और इसी तरह से इंग्लैंड ने भी अपना जगह बना लिया है सेमीफाइनल में, और उनके साथ में जो टीम खेलेगी अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का जो मैच हो रहा है अभी, इसमें से जो विनर ठहरेगी वो इंग्लैंड का सामना करेगी ऑन द 16th of July। और अभी अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच में जो खेल चल रहा है इसमें अर्जेंटीना की जीत स्विट्जरलैंड के खिलाफ इन द 17th minute अभी 1-0 से हो रही है, जबकि एलेक्सिस मैकलिस्टा ने 10th minute में अर्जेंटीना को एक गोल से आगे कर दिया।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। Available at all leading stores.
2: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
3: Flooring Extra. Adore your floor.
4: Farmers Long Weekend Sale is now on with 30 to 50% off kitchen, dining, bedding and towels. Up to 50% off furniture plus super deals and half price sleepyhead beds. Farmers Long Weekend Sale now on. Conditions and exclusions apply.
5: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
6: Stuck for dinner ideas? Furrow Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Furrow Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Furrow store. Just pop it in the oven and relax. Furrow Kitchen, dinner made deliciously easy.
7: Non-stop Bollywood.
8: Hum.
7: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Just chill.
10: जस्ट चिल का कारोबार है, मैं हूँ अभी आपके साथ में और अब आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रेन टीजर। अगर जो आप सुन रहे हैं तो इसका इस पर अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए है। दो ऐसे बुरे फंसे गोल गोल भागते रहे, तीसरा तेज है इनके आसपास फिरे, रहे कभी आगे तो कभी इन दोनों के पीछे चले। यही आपको फिगर आउट करना है कि इस ब्रेन टीजर में किसके बारे में बातें हो रही हैं। एक बार फिर से, दो ऐसे बुरे फंसे गोल गोल भागते रहे, तीसरा तेज है इनके आसपास फिरे, रहे कभी आगे तो कभी इन दोनों के पीछे चले। 5599 पर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और इसका जो जवाब है ये फिगर आउट करके ज़रूर भेजिएगा अपने नाम के साथ में, और उसी मैसेज में अगर जो कोई गीत भी आप सुनना चाहते हैं तो हमारे पास में टेक्स्ट कीजिए 5599।

0: Just chill.
1: जशिल का कारवां है, 1:30 बज चुके हैं और दो के बाद आपके लिए लेकर आते हैं एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहां पर आपके लिए कोई ना कोई एक आइकॉनिक गाना को ढूंढ कर लेकर आते हैं। आज थोड़ा सा उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कितना रिसर्च करना पड़ता है। सबसे पहले तो गाने को सिस्टम पर यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है कि किस गाने को हम कॉन्टेस्ट में इस वीक शामिल करेंगे। सो दैट्स व्हाट आई डू ऑन सैटरडेज। आकर जैसे मैं सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो लेता हूँ, उसी समय मैं गाने को भी ढूंढता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ और फिर उसके बाद में उस पर काम शुरू हो जाता है। लगता है कुछ 30 to 45 minutes रिसर्च करने पर, और जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रिविया है, ये सभी कुछ ढूंढ कर लेकर आता हूँ। तो अच्छा लगेगा जब दो पर आपके साथ में ये खेलेंगे एपिक बॉलीवुड चैलेंज और आपका रिस्पॉन्स आता रहे, दैट विल बी ग्रेट। लेकिन अभी के लिए जो सवाल हमने किया है आपसे, दो ऐसे बुरे फंसे गोल गोल भागते रहे, तीसरा तेज है इनके आसपास फिरे, रहे कभी आगे तो कभी इन दोनों के पीछे चले। तो काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया है और 7164 जो गाना आपने सुनना चाहा है, मैंने ढूंढा लेकिन शायद वो है नहीं मेरे पास में। और इसके साथ साथ आयुषी आपका भी जवाब आया, बहुत दिनों के बाद आज आयरीन का जवाब आया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर जो आपको भी पता लगता है कि किस चीज़ के बारे में हम बातें कर रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, फिगर आउट करना होगा, 5599 पर टेक्स्ट करना होगा। एक बार फिर से, दो ऐसे बुरे फंसे गोल गोल भागते रहे, तीसरा तेज है इनके आसपास फिरे, रहे कभी आगे तो कभी इन दोनों के पीछे चले। अगर जो आपको जवाब पता लगता है तो 5599 इज द नंबर।

आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम को ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, एक ऐसा नंबर जो शायद फिल्म उतनी कामयाब नहीं थी लेकिन ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट किया गया था। और जबकि बातें कर रहे थे क्विज़ के बारे में, ब्रेन टीजा के बारे में, काफ़ी लोगों ने जवाब भेजा है जिनमें शामिल है आयरीन और साथ में 143942 आपने नाम तो नहीं लिखा था, इसके साथ में अश्विन आपने भी अपना जवाब भेजा है, आयुषी आपने भी अटेम्प्ट किया, थैंक यू सो मच। और ये जो सही जवाब था, जी हाँ बिल्कुल सही, और ये था, या बातें हो रही थी घड़ी के बारे में, उनके नीडल्स के बारे में, जो कांटे घड़ी के होते हैं जो टिक टिक चलती रहती है उसी के बारे में बातें हो रही थी। थैंक यू सो मच आपने पार्टिसिपेट किया और सही जवाब आपने पहचाना। तो कुछ दो पर आपके लिए समाचार रहेंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में इनकी क्या क्या बातें हुई इस पर भी एक झलक देखेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन के साथ में इस पर भी एक अपडेट आपको देते चलेंगे, लेकिन दो पर आपके लिए न्यूज़ रहेगी।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Ladies and gentlemen.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं. और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw. Emotions होते हैं real. और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
5: Doorbuster deals have dropped this long weekend at No Leeming. Snap up unmissable deals on tech and home appliances before they're gone. 3 days only, ends Sunday 12th July while stocks last. Conditions apply. Now's the time to shop. Doorbuster deals are on at No Leeming.
6: TradeDepot.co.nz.
7: Trade Depot celebrates Matariki this week with two exceptional deals. Huge Vogue side-by-side fridge freezers, just $599. 7-star heat pump dryers, just $499. Shop online or in-store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
8: TradeDepot.co.nz.
9: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if Frosted Tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.

Just Chill. That's right, ये है Just Chill with Avi, और अक्सर आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स करंट अफेयर्स को लेकर भी बातें करते रहते हैं. और आपको मालूम होगा कि जबकि कल प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑकलैंड में थे और इनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हमारे न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन से हुई, तो यहाँ पर इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर कुछ बातें हुई, जहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दो बार धन्यवाद दिया है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को क्योंकि उनकी कमिटमेंट के लिए, जहाँ पर $20 बिलियन ऑफ private investment न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है ये करेंगी इंडिया में विद इन 15 ईयर्स. तो इस बात को लेकर लोकल मीडिया काफ़ी बात उठा रही है और RNZ की एक रिपोर्ट में मीडिया ने पूछा प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन से कि आपको इस क्लोज को लेकर क्या कहना है. इस पर काफ़ी सरल और स्ट्रेट जवाब देते हुए क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि ये एक FTA अग्रीमेंट की कमिटमेंट है, एक क्लोज है जिसे दोनों देश समझती है और साथ में मिलकर इसको कंप्लीट करने का पूरा इरादा है. ये सभी कुछ कल बातें हुई हैं और इस पर जो अपडेट्स है आपके लिए ब्रीफली लेकर आते हैं ताकि आप भी हम के द्वारा बिल्कुल समझें कि क्या कुछ हो रहा है देश में या फिर क्या कमिटमेंट है इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत और इस पर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का क्या अंडरस्टैंडिंग है, और ये आपके साथ में हम शेयर कर रहे थे.

0: listening to Avineet.
1: हमारे स्टूडियोज में 2:02 हो रहे हैं, ऐसे में आपका खास स्वागत करते हैं इस आवा पर। आप हमें सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर। तो चलो शुरुआत करते हैं इस आवा की विद द एपिक बॉलीवुड चैलेंज जो हर वीक आपके साथ में खेलते हैं। तो आप बिल्कुल तैयार है, फ्लेक्स योर फिंगर्स, क्योंकि आज का जो गाना है आइकॉनिक है और बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोगों को ये फिल्म भी याद होगी और ये गाने भी याद होंगे। ऐसा करेंगे, आपको ट्रिविया बताएंगे और रूल सिर्फ इतना है कि आपको क्लूज सुनने पर अंदाज़ा लगाना है, फिगर आउट करना है किस गाने के बारे में बात हो रही है, और उस गाने को अपने जवाब के साथ में, अपने नाम के साथ में 5599 पर टेक्स्ट करना होगा। जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करके भेजता है अपने जवाब, वही विनर ठहराता है। और उतना ही समय आपके पास में रहता है, जैसे ही हम क्लूज बताना शुरू करते हैं वहाँ से लेकर गाना बजाने से पहले ही आपके पास में समय होता है कि इस बीच में आपको गाना आइडेंटिफाई करना होता है। बड़ा ही सिंपल लेकिन मज़ेदार खेल है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीक की आइकॉनिक गाने के बारे में बताने की शुरुआत करते हैं। 5599 इज़ द नंबर एंड हियर इट गोज। आज का जो गाना है 1993 में आई हुई फिल्म का टाइटल ट्रैक है, जिसमें आपने SR के साथ में काजोल को एक साथ काम करते हुए देखा था। ये जो फिल्म है इंस्पायर्ड थी फ्रॉम हॉलीवुड मूवी अ किस बिफोर डाइंग। इस फिल्म की ढेर सारी ट्रिविया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको

0: एक मज़ेदार ट्रिविया ये भी है कि जो ओरिजिनल कंपोजर्स थे इस मूवी के, वो थे नदीम श्रवण, लेकिन उनको कुछ अनबन हुई थी काजोल के साथ और फिर उन्होंने इस फिल्म में म्यूज़िक देने से इनकार कर दिया. एंड देयर लॉस बिकेम अनु मलिक्स गेन. उन दिनों नदीम श्रवण काफ़ी फेमस थे 1990s में फिल्मों में म्यूज़िक देने के लिए, और अनु मलिक का जो समय है थोड़ा ख़राब चल रहा था. इस गाने की रिकॉर्डिंग की भी एक अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है. 100-piece ऑर्केस्ट्रा और साथ में 40 वायलिंस के साथ इस गाने को रिकॉर्ड किया जा रहा था. सोचिए, उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी. अनु मलिक ने इस गाने की बिगनिंग को लेकर काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनको लग रहा था जो जिस तरीके से गाना ओरिजिनली स्टार्ट हो रही थी काफ़ी फ्लैट लग रहा था सुनने में. और फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग को रोक कर ओपनिंग पीस को रीअरेंज किया और फिर जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ. ओवर द ईयर्स SRK और काजोल को की एक जोड़ी बन गई, लेकिन इस फिल्म के लिए शाहरुख से पहले यह फिल्म ऑफर की गई थी अनिल कपूर, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स को, लेकिन उन सभी ने ना कह दिया इस फिल्म को, क्योंकि कहानी काफ़ी बोल्ड और अनकन्वेंशनल थी और यही रीज़न देकर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया. और फिर SRK स्टेप्ड इन. इस फिल्म से शिल्पा शेट्टी ने डेब्यू भी किया. इनका रोल काजोल की बहन का था एंड वही है जिसको बेल्कनी से नीचे फेंका गया फिल्म में. अब तो और आसान हो गया आपके लिए. इस फिल्म में एक डायलॉग भी है जिसमें फिल्म का टाइटल है हार कर जीतने वालों को डैश कहा जाता है. रिलीज होने पर इस फिल्म के लिए SRK को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया और अनु मलिक को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड भी दिया गया. गाना सुनवाने से पहले आपको अनु मलिक का एक इंटरव्यू सुनवाता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड किया था और वो अपने ज़बानी इसको शेयर करते हैं. 5599 पर आपको अंदाज़ा लगाकर भेजना होगा अपने जवाब को. इन द मीन टाइम आपको चलो सुनवाते हैं अनु मलिक की एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इस गाने को कैसे कंपोज किया गया था.
1: अब्बास मस्तान खड़े हुए हैं, रतन जैन है, कि इतना गाना जबरदस्त हो रहा है. ओरिजिनल ऐसा बना था, इतना ही था. बाजी करो बाजी, मैं बड़ा गाना गाया. अरे गाना मुझे नहीं करना है. सो व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन द सॉन्ग, देयर इज समथिंग मिसिंग इन द सॉन्ग, देयर इज समथिंग मिसिंग. एक अलाप चाहिए. ओ मैंने सुरेश जी को बोला आप एक सोलो बजाओ, मेरा मुखड़ा बजा दो. ये वॉयलिन जो आएगा सोलो आएगा दारा रा रा रा रा रा रा रा रा रा. सो वी ग्रो अप ऑन शंकर जी एंड देन टर धारन दन दन धारन दन. बम बम बम दन दन दन दन दन दन दन दन दन दन. और यहां से मैंने अलका को बोला बाजीगर ओ बाजीगर.
0: ऐसे जाकर ये गाना बना है. काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको सुनवा रहे थे अनु मलिक के एक इंटरव्यू का एक्सट्रैक्ट. और अब सुनवाते हैं आपको गाना. 5599 पर अभी भी आप मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन अब ये गाना सुनने का मौका आ गया है.

हाँ बस यही था इस वीक का आइकॉनिक गाना, अपने फिल्म, अपने जमाने की एक अच्छी फिल्म, अगर जो आपने काफी दिन हुआ इसे रिविजिट नहीं किया, मे बी दिस इज अ गुड टाइम, आप वापस जाकर इसे देख सकते हैं, या फिर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इट्स अ मस्ट वॉच, क्योंकि यहाँ पर शाहरुख खान ने कमाल ही कर दिया था और अपने ज़माने की एक चौंका देने वाली फिल्म थी। जिस तरह से इस फिल्म की ओपनिंग होती है और स्टोरी जिस तरह से खुलती है, ये चौंका देने वाली फिल्म थी। लेकिन वापस आते हैं, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। फाल्गुनी ने सबसे पहले थोड़ा फिसली लेकिन उसके बाद में सही जवाब भेजा है, उसके साथ साथ श्वेता ने अपना जवाब भेजा, फिर उससे पहले सोनाली आपका भी जवाब आया, थैंक यू सो मच। फिर 7558 आपने भी सही अंदाज़ा लगा, उसके बाद पल आपका भी जवाब हमको मिला, थैंक यू इसके लिए। और सिद्धार्थ आपने फिल्म तो सही पहचाना लेकिन गाना आपने गलत चूज़ कर लिया है। इसके साथ साथ जी हाँ 9533 आपने भी सही फिल्म पहचाना लेकिन गाना आपने गलत चुना। और इसके अलावा एश वेलिंगटन से आपने भी सही पहचाना, थैंक यू सो मच, आपने भी पार्टिसिपेट किया है। और सबसे पहला पहल जो जवाब हमारे पास में आया है, क्वीन ने पहचाना था, आपने आइडेंटिफाई किया बाजीगर और आपका जवाब सबसे पहले आया था, इसीलिए आप हुई इस वीक की विनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके साथ साथ जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। नेक्स्ट वीक आपके लिए एक और एक नया गाना लेकर आएंगे एंड वी विल ट्राई एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। और आप सभी को शामिल करते हैं अगले इस गीत में, जिसमें अरिजीत सिंह ने बड़ी ही बेखूबी से इस गाने को निभाया।

0: brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
1: All right, हमारे स्पॉन्सर्स की ओर से मैं हूं अभी आपके साथ में और ये है हम आप सुन रहे हैं जस्ट चिल और स्पॉन्सर्स की ओर से जो फीफा वर्ल्ड कप की अपडेट है यहां पर अभी भी अर्जेंटीना की जीत स्विट्जरलैंड के खिलाफ 1-0 से हो रही है जबकि खेल को 63 मिनट्स हो चुके हैं अर्जेंटीना इज स्टिल लीडिंग एलेक्सिस मैकलिस्टा ने 10th मिनट में गोल बनाया था और यही डिफरेंस है दोनों टीम के बीच में मूविंग ऑन आपको बता दें कि हमारे प्लेटफॉर्म में एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है और बहुत दूर पामडेल लॉस एंजलिस यूएसए में हमको सुन रहे हैं जबकि न्यूजीलैंड से हमारे अपने उमेश गए हैं एक वेडिंग अटेंड करने के लिए तो आप उमेश आपका स्वागत करते हैं पामडेल में जबकि आप वेडिंग में बिजी होंगे और साथ में आपके काफ़ी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आपस में आज घुल मिलेंगे और बातें हो रही होगी हंसी मजाक हो रही होगी और साथ में वेडिंग का प्रिपरेशन भी चल रहा होगा थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन फ्रॉम पामडेल यही तो रोवा का पावा है कि आप दुनिया में किसी भी कोने में रहे आप हम के साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे अगर जो आप चाहें तो और ऐसे में जबकि आपने मैसेज किया था कि वेडिंग में आप हो और आप न्यूजीलैंड से स्पेशली गए हैं वेडिंग अटेंड करने के लिए तो जो अगला गाना था ये कुछ और बजने वाला था लेकिन आपने जब कहा है कि आप वेडिंग अटेंड करने गए हैं तो इसीलिए हमने सोचा चलो गाने को थोड़ा सा चेंज करते हैं आपके लिए और आप सभी को शामिल करते हैं इस अगले गीत में जिसे गाया है सोनू निगम ने उमेश आपको खास करके और जो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं आप सबको सभी को हैव अ ग्रेट टाइम इन्जॉय द वेडिंग और जल्द वापस आइएगा न्यूजीलैंड और आपसे फिर बातें होंगी और पामडेल लॉस एंजलिस यूएसए में जितने भी लोग आपके रिश्तेदार सुन रहे हैं खास आप सभी के लिए ये अगला तराना

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और वेटाकरे।
2: अच्छा, Hunua west में।
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: हम पर हमारे स्पॉन्सर्स की ओर से जो लेटेस्ट अपडेट है, स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना के बीच में जो क्वार्टर फाइनल का मैच है, इसमें स्विट्जरलैंड ने इक्वलाइज कर लिया है 67th मिनट में, जबकि उनके खिलाड़ी डेन डोए ने गोल बनाया है. और इसी तरह से दोनों टीमें अब 1-1 से बराबर ठहरी हैं.

अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: हार्ट बीट

हम पर आपके लिए कुछ कम्युनिटी न्यूज़ भी है जिसे आप तक शेयर कर लेते हैं। श्री राम मंदिर जो कि 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में है, आयोजित कर रहे हैं अखंड रामायण पाठ जो 1st और 2nd अगस्त को रहेगी। सैटरडे यानी कि 1st अगस्त को सुबह 7 पर रोड पूजा के साथ में ये आरंभ होगी और इसी तरह से प्रोग्राम चलती रहेगी। फिर 8:45 यानी कि 8:45 रामायण पाठ स्टार्ट होगी। उसके बाद में संडे को सुबह 10 पर रामायण पाठ समाप्त होगी और उसके बाद में हवन एंड आरती रहेगी। महाप्रसाद थ्रू आउट द प्रोग्राम दिया जाएगा और जानकारी के लिए 09836-4647 पर आप कॉल करें। इसके साथ में न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्री रामलीला जो रहेगी 8th अगस्त को। अगर जो आपको स्टॉल के लिए और इंक्वायरीज करनी है तो मास्टर अशोक को 02117954599 पर कॉल करें, 02117954599 पर कॉल करें। और जो डिटेल्स इस पर और भी है रामलीला को लेकर आप तक बाद में पहुंचाया जाएगा।

0: के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना चाइल्ड केयर, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो, हम हमेशा आपके पास हैं।
2: गो बनाना चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
1: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना चाइल्ड केयर बीचलैंड इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 800-46-26-26 टुडे।
2: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। T's and C's apply.
3: Skeegee. It's a word now. Verb. To stop in Fiji on your way to or from skiing. Because why fly straight to the snow when paradise is on the way? Soak up the sun in Fiji and then go shred the slopes. Or relax and recover in Fiji on your way back home. Skeegee flights are on sale now. Fly to Vancouver return from $1,799 or Japan from $1,299. FijiAirways.com.
4: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
5: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
4: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
6: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
7: आपके सामने एक रेड बटन है, नहीं दबाना था।
8: The madness is back, धमाल 4।
9: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
8: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
10: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
8: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
11: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता।
12: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
13: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
14: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
15: The beat of Bollywood.
16: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
17: हम पर, मैं हूँ अभी आपके साथ में और कुछ 22 मिनट बाकी है 3 बजने में। ऐसे में आज सुबह सुबह साउथ आइलैंड में किसी एक शहर में, टाउन में, सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है अकॉर्डिंग टू मेट सर्विसेज। जी हाँ, पूरे के पूरे विंटर नेशन वाइड सबसे मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, -12.5 तक आज सुबह यहाँ पर टेम्परेचर थी। इसके बारे में आपने न्यूज़ में भी सुना था। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपने ध्यान दिया था कि कौन सा ये शहर है? ये शहर जो है, ये फेमस है फॉर इट्स ब्लू वाटर्स, ग्लेशियल ब्लू वाटर्स, और लगभग 3 घंटे साउथ ऑफ क्राइस्टचर्च है। तो अगर जो आपको पता है कि कौन सी ऐसी टाउन है जहां पर आज सुबह सुबह बहुत ठंड थी, -2.5 degrees तक। मैं जब कल काम पर आ रहा था सुबह सुबह आपके लिए सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो लेकर, अराउंड 5 AM मैंने घर छोड़ा था और देन इट वाज अराउंड 4 to 5 degrees। मुझे बहुत कड़ाके की ठंड लग रही थी, लेकिन -12.5 degrees तक अगर जो टेम्परेचर हो इतना गिर जाए, तो फिर तो बीनी वगैरह 3-4 लेयर्स लगाकर ग्लव्स पहनकर निकलना पड़ेगा मेरे ख्याल से। लेकिन सवाल हमारा यही है, क्या आपको पता है कि किस टाउन में ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है -12.5 डिग्री सेल्सियस? 5599 पर भेजिए अगर जो आपको मालूम है।

हाँ, तो हमने बात किया था कि सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है जो शहर है, इसके बारे में पूछा था, तो रियाज आपका भी जवाब आया, इसके साथ में मंदीप आपने भी टेक्स्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है आज सुबह सुबह मेट सर्विस द्वारा -12.5 डिग्रीज तक, ये था लेक तेकापो जो कि क्राइस्टचर्च से लगभग 3 आवर्स ड्राइव पर है, और यहाँ पर आज एज कोल्डेस्ट -12.5 डिग्रीज टेम्परेचर थी।

0: दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में जबकि 3 बज रहे हैं ऐसे में वी आर हाफ वे थ्रू द शो जबकि 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। इस हवा पर आपको बता दूं कि अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच में जो खेल जारी है बीच में ये अभी भी 1-0 से बराबर है और कुछ 9 मिनट्स का इंजरी टाइम होने को है, शायद ये खेल एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगी। इसके साथ साथ एक स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया है 72nd मिनट में और इसी के साथ साथ वन नेशंस चैंपियनशिप का जो रिजल्ट है जो रग्बी मैचेस हुई कल जहां पर न्यूजीलैंड और इटली के बीच में वेलिंगटन में खेल हुआ इसमें न्यूजीलैंड 47-17 से इटली को हराया लेकिन इट वाज अ गेम ऑफ टू हाफ। जबकि पहले हाफ में ऑल ब्लैक्स काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, इटली वाज पुटिंग अप अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, वहीं पर हाफ टाइम ब्रेक के बाद में न्यूजीलैंड ने खेल को बदला और ऐसे ही कन्विंसिंगली 47-17 से इसकी जीत हुई। उधर इंग्लैंड और फिजी के बीच में जो खेल हुआ इंग्लैंड ने ट्राउंस किया है फिजी को 73-8 से और इसके साथ साथ फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 42-26 से हराया, ब्रिस्बन में ये खेल था। आयरलैंड ने 36-20 से जापान को हराया और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना के बीच में भी खेल हुआ, वहाँ पर साउथ अफ्रीका की जीत 42-35 से हुई। ये सभी कुछ जो लेटेस्ट अपडेट्स वन नेशंस चैंपियनशिप से लेकर आ रहे थे आपके लिए।

ऑन द एयरवेव्स ऑफ हम, मैं हूँ आपका साथी अभी और चेतक हमारा और आपका साथ रहेगा। आपको बता दूँ, राहत फ़तेह अली खान, इनकी अपनी अलग अंदाज़ है गाने की। काफ़ी अच्छा सूफ़ी गाते हैं, कव्वाली भी बहुत ही बढ़िया गाते हैं और इनको लाइव देखने का मौका आपको है, जबकि 25 जुलाई को ये परफॉर्म करने वाले हैं एट दी ट्रस्ट अरीना इन ओकलैंड। जी हाँ, हमारे अपने शहर में ही ये आने वाले हैं और एक इवनिंग जो रहेगा मैजिक ये क्रिएट करेंगे ऑन स्टेज। इनको प्रेजेंट कर रहे हैं जेके स्टार प्रोडक्शन, साथ में गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन। आपको टिकट्स चाहिए अभी से ही आप बुक कर सकते हैं, जबकि 25 जुलाई यानी कि कुछ 12 ही दिन बाकी है, तो जाइए जल्द से जल्द dryticketsdotcom पर और इनका जो टिकट है आप ले लीजिए, क्योंकि बार बार इतना सुंदर और अच्छा कॉन्सर्ट देखने को नहीं मिलता है। राहत फ़तेह अली खान जो बहुत ही बढ़िया गाते हैं, और dryticketsdotcom पर आप इनका जो टिकट्स है आप अभी से ले सकते हैं।

rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: Make long weekend lie-ins longer with Beds R Us. Save on selected sleepy head beds with 55% off the Sublime Serenity Breeze queen size now from 1687. Find your best sleep in our long weekend sale at Beds R Us Medical and Pokekohe, where dreams begin.
3: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan, a home loan top up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do. How.
4: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
8: No way.
9: We in trouble?
7: Nah, it's BP Plus.
8: What is that?
7: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
10: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
11: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
12: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
13: हाँ, पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जो खेल अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच में हो रही है, यहाँ पर जो पहले हाफ का एक्स्ट्रा टाइम है ये समाप्त हो चुका है। दोनों टीम अभी ब्रेक पर चली गई है। इसके बाद में जो सेकंड एक्स्ट्रा टाइम का स्पेल है ये रहेगा, और अभी भी नथिंग कैन बी सेपरेटेड। अर्जेंटीना भी एक और स्विट्जरलैंड भी एक। हालांकि स्विट्जरलैंड एक खिलाड़ी कम खेल रही है, जबकि उनके एक प्लेयर को 72nd मिनट में रेड कार्ड दिखाया गया था। तो अभी भी काफ़ी हद तक जो खेल है बिल्कुल लाइवली है और वन ऑल ही स्कोर है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो हमारा हम म्यूज़िक स्टेशंस है, यहाँ पर हम रिवाइंड जो 60s और 70s के गाने हैं आप सुन सकते हैं। इसके साथ साथ 80s जुक बॉक्स, जहाँ पर 80s के टॉप टॉप नंबर्स आपके लिए स्टोर किए गए हैं रोवा पर, और फिजी भजन्स भी हैं, जहाँ पर 24/7 एक फ्री प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आप फिजी भजनों को सुन सकते हैं। इसके साथ साथ पंजाबी हिट्स, जो चढ़दी कला है, यहाँ पर आपके लिए स्टोर किया गया है। फिजी कीर्तन संग्रह भी है, जो फिजी के प्रमुख आर्टिस्ट इनके आवाज़ों में फिजी कीर्तन को स्टोर किया गया है इस प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ राहत फ़तेह अली खान का एक अलग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप उनके सूफ़ी को, गाए हुए सूफ़ी को, साथ में कव्वालियों को भी आप सुन सकते हैं। ये सभी कुछ आपकी पसंद को ध्यान में रखकर हम म्यूज़िक स्टेशंस पर रखा गया है।

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

104.2 FM साथ में रोवा पर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं हूं अभी आपके साथ में और यह है जस्ट चिल। अगला गाना जो कुमार शानू और साथ में अनुराधा पौडवाल की आवाजों में है, इसको बजाने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता दूं। एक समय की बात है जबकि टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने समन किया था, यानी कि बुलाया था नदीम श्रवण और साथ में उनके लिरिसिस्ट समीर अंजान को कि आप कुछ गाने बनाएं और आपके बनाए हुए गानों को हम एक एल्बम की तरह रिलीज करेंगे। ये गाने बनाए गए और फिर जब रिकॉर्ड हुआ, अपॉन रिकॉर्डिंग इनको पता लगा कि इस गाने में बहुत सारा दम है, यानी कि पूरा का पूरा एल्बम एकदम ब्लॉकबस्टर साउंड किया। और सुनने के बाद में फिर वहाँ पर महेश भट्ट को बुलाया गया, गाने फिर से दोबारा सुनवाए गए और सुनने के बाद महेश भट्ट ने भी अग्री किया कि ये जो गाने हैं ये तो फिल्म के गाने होने चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट एल्बम के। और वही हुआ, इन गानों को लेकर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था आशिकी, जिससे डेब्यू किया था राहुल रॉय ने और साथ में अनु अग्रवाल ने। और उसी फिल्म से अगला ये गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं।

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: Have you heard? It's your final day to shop Briscoe's for massive 70% off dream big deals, plus 20 to 70% off the entire store. The days are cold, but the savings are hot. Dream shop save for one final day at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mold Killer, only $9.90. Or an all-set 50-litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Lowest prices are just the beginning.
5: Imagine you're a snowboarder looking down a mountain. Zero crowds, zero noise, zero wind, zero ice, and zero things to worry about. It's just you, your fellow compadres, and at the end of the run, an ice cold Zero by Corona. Corona Zero, zero alcohol, served everywhere this winter with a lime.

go.nz. हम पर लेटेस्ट अपडेट्स जो है अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच में जो क्वार्टर फाइनल का मैच है, अब अर्जेंटीना की जीत स्विट्जरलैंड के खिलाफ 3-1 से होने लगी है, जबकि 112th मिनट में जूलियन अल्वारेस ने गोल बनाया था। फिर उसके बाद में लौटारो मार्टिनेज ने 125th मिनट में एक और गोल बनाकर अब अर्जेंटीना को 3-1 से ऊपर कर दिया है। ऐसा लगता है कि स्विट्जरलैंड इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट और अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में एक माउथ वाटरिंग सेमीफाइनल बिल्डअप हो रही है।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में समझ से नहीं दिल से प्रोग्राम लेकर आया हूं, जबकि जस्ट आफ्टर 4:00 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। 12 से आपने साथ दिया है, बस 2 घंटे और भी हमारा साथ देते रहिएगा, साथ मिलकर इस सफर को तय करेंगे।

हम पर मैं अभी आपको रिमाइंड कर देता हूं कि राज गढ़वी आ रहे हैं हमारे ओकलैंड के शहर में विद गरबा नाइट. इनको ला रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेन न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांशी ग्रुप. आप जानते हैं कि गरबा खेलने में कितना मज़ा आता है और ये मज़ा और भी डबल हो जाएगा जबकि आप इसे सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे विद राज गढ़वी लाइव इन ओकलैंड. तो इनको देखने का मौका रहेगा सैटरडे 1 अगस्त को. आप जा सकते हैं महात्मा गांधी सेंटर जहां पर राज गढ़वी परफॉर्म करने वाले हैं. अभी से ही आप अपने टिकट्स ले सकते हैं eventstickets.co.nz से. याद रहे eventstickets.co.nz पर जाकर आप अपने टिकट्स ले सकते हैं या फिर स्वप्निल को और जानकारी के लिए 022-439-4736 पर कॉल कर सकते हैं.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
2: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papatoetoe, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
3: Have you heard? It's your final day to shop Briscoe's for massive 70% off Dream Big Deals, plus 20 to 70% off the entire store. The days are cold, but the savings are hot. Dream Shop Save for one final day at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: हाँ, अच्छा?
7: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह।
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: नॉनस्टॉप बॉलीवुड।
12: हम जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
11: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
13: 104.2 FM साथ में रोवा पर आप सुन रहे हैं। हम लेकर आया हूं मैं अभी आपके लिए जस्ट चिल। अक्सर हमारे दिल या मन में ये बातें होती हैं, वेदर इट्स मनी या फिर लाइफस्टाइल, कि आप किसको प्रेफरेंस देना पसंद करते हैं, एक अच्छे लाइफस्टाइल को या फिर पैसों को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो एक ऐसी कहानी है उज्ज्वल पटेल की, जो न्यूजीलैंड से गए थे ऑस्ट्रेलिया फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल या फिर बेटर पे कह सकते हैं। और इनका ये शुरू में मानना था कि वो वहाँ जाकर काफ़ी अच्छा सेटल डाउन होकर करेंगे। स्टफ ने रिपोर्ट किया है, जबकि उज्ज्वल पटेल से इन्होंने बातें की हैं, कि उज्ज्वल शुरू में क्राइस्ट चर्च में रहते थे और वहाँ से इन्होंने मूव किया मेलबर्न को, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा पे इनको ऑफर किया गया था। एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी थी जिन्हें उज्ज्वल ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन वहाँ जाकर रहने पर उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये भी एक रेट रेस ही है। जब ये मेलबर्न में रह रहे थे तो इनको 3 घंटा सुबह सुबह सफ़र करना पड़ता था, कम्यूट करना पड़ता था, और उसी तरह से आफ्टर वर्क भी ट्रेवल करके घर को आना पड़ता था, तो इतना ही समय लग जाता था। उज्ज्वल बताते हैं कि वहाँ पर रहने पर उनको रियलाइज़ हुआ कि जब ये घर को आते थे, इनके पास में एक छोटी सी बच्ची है प्यारी सी, कोई एनर्जी या फिर कोई ऐसा पूरा का पूरा बर्न आउट हो जाते थे और एनर्जी बाकी नहीं रहती थी, और ये खास क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को नहीं दे पाते थे। इसी कारण से उज्ज्वल ने डिसाइड किया कि ये वापस न्यूजीलैंड आकर एक बार फिर रीस्टार्ट करेंगे। अभी ये रिकार्टन क्राइस्टचर्च में एक पिज्ज़ा फ्रेंचाइज को चलाते हैं और लुकिंग बैक ये कहते हैं कि इनका जो डिसीजन था ये किसी तरह से रिग्रेट नहीं करते, क्योंकि इनका ये मानना है कि न्यूजीलैंड में लोगों के पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल होती है और लाइफस्टाइल को इन्होंने प्रेफरेंस दिया है और इसी कारण से अब ये वापस न्यूजीलैंड आ गए हैं। एक कुछ स्टेट्स है जहां पर 2024 में मिस माइग्रेशन के को चलते, मिस माइग्रेशन की चलते कुछ 30,000 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को एक नया घर बनाया था। आप किस साइड हो? आप लाइफस्टाइल की साइड हो यानी कि न्यूजीलैंड में रहना पसंद करते हो, या फिर एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में आप भी ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हो? लेट मी नो 1559।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में. आपको बता दूं कि ट्राई विजन इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहा है द ग्रेट कॉमेडी नाइट, जहां पर आप कृष्णा अभिषेक साथ में राजीव ठाकुर को देख सकेंगे एक साथ परफॉर्मिंग लाइव ऑन स्टेज. अभी तक आपने सिर्फ इनको स्क्रीन पर देखा होगा, लेकिन लाइव एक्सपीरियंस करने का एक अलग मजा रहेगा, जबकि दोनों माहिर है और अपने अपने तरह से कॉमेडी पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं आपके लिए. इनकी कॉमिक टाइमिंग पर कोई क्वेश्चंस नहीं उठा सकते. लेकिन अगर जो अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए तो bookmyevent.co.nz से आप टिकट्स ले लीजिए, क्योंकि इनका जो शो है ये 18 जुलाई को रहेगा, विच इज़ फॉलोइंग सैटरडे एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. हंसने हंसाने का एक अलग मौका आपको मिल रहा है. ट्राई विजन इवेंट्स लेकर आए हैं तो यहाँ जाकर आप इनको देख सकते हैं परफॉर्म करते हुए. bookmyevent.co.nz पर जल्द से जल्द टिकट्स ले लीजिए. इसके साथ साथ आपको हमारे जो रिस्पेक्टिव RJs है ओनेया, आपको मौका देंगे डबल पास जीतने के लिए. और ये सभी कुछ रहेगा मंडे टू फ्राइडे, जहां पर व्हेन गिवन अ चांस आपको सिर्फ एक क्लीन ऑन एयर फ्रेंडली जोक सुनाना है, और आपके जोक सुनते ही अगर जो RJ हंस पड़े तो आपको डबल पासेस मिल जाएगा. इसी तरह से आप जीत सकते हैं और जाकर इनको देख सकते हैं. लेकिन इसके अलावा bookmyevent.co.nz पर जाकर अभी ही टिकट ले लीजिए, क्योंकि जो टिकट्स है ये बहुत फास्ट बिक रहे हैं.

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के।
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही, सब यहाँ थे।
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.

0: a proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
1: Indelible Homes, your building expert.
2: Playing Bollywood's biggest hits.
3: हम पर आपके लिए कम्युनिटी न्यूज लेकर आते रहते हैं ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रहें आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है. अगर जो आपकी इंटरेस्ट कैरम खेलने में है तो दिस विल ब्राइटन यू अप. द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो रहेगा. मार्क द डेट्स 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल. और आप किसी भी लेवल पर आप कैरम खेलते हो, आपकी स्किल लेवल जैसी भी हो, आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट करें. रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए आप जा सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर या फिर प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को आप 0210908 5067 पर 0210908 5067 पर कॉल कर सकते हैं.

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

हम पर आपको बताते आए हैं और बताते रहेंगे कि गरबा नाइट लेकर आ रहे हैं राज गढ़वी, और राज गढ़वी को प्रेजेंट कर रहे हैं लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांशी ग्रुप। और एक ऐसा मौका जहां पर आप गरबा नाइट को बिल्कुल एंजॉय कर सकेंगे, गरबा विद राज गढ़वी लाइव इन ओकलैंड। तो इनको देखने का मौका रहेगा सैटरडे 1 अगस्त को, और ये परफॉर्म करने वाले हैं महात्मा गांधी सेंटर पर। तो अभी से ही आप अपने टिकट्स है ले सकते हैं इवेंट्स टिकट्स न्यूजीलैंड पर, और दैट इज eventstickets.co.nz। एक बार फिर से eventstickets.co.nz पर जाकर आप अपने टिकट्स है ये ले सकते हैं टू एक्सपीरियंस एंड एन्जॉय गरबा नाइट विद राज गढ़वी। स्वप्निल को भी आप कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए 0224394736 पर।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दूसरी तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Playing Bollywood's biggest hit.

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर इस जस्ट आफ्टर फाइव एंड ये है फाइनल आवर ऑफ द शो. छह तक हमारा और आपका साथ रहेगा 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे सुनते रहिएगा एंड कीप हमिंग. इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हम फेसबुक पेज आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा. हम 104.2 FM का जो फेसबुक पेज है यहाँ पर काफ़ी अपडेट्स भी हम डालते रहते हैं.

हम पर आपके लिए एक म्यूजिकल ट्रिविया लेकर आया हूँ। आपको याद होगा अभिजीत एक ऐसे रिनाउंड सिंगर जिन्होंने 90s में काफ़ी अच्छे गाने को गाए और साथ ही साथ में एक ऐसा वक्त था जहाँ पर इनको शाहरुख खान की वॉइस माना जाता था, जबकि ये प्लेबैक अक्सर शाहरुख खान के लिए ही करते थे। तो ऐसे एक दिग्गज कलाकार सिंगर, इन्होंने अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में ये बताया कि स्ट्रगल के दिनों में इन्होंने, जबकि ये कानपुर से आए थे मुंबई, और मुंबई आकर काफ़ी जगह पर इन्होंने परेशानी का सामना किया जस्ट टू मेक अ स्टार्ट और टू गेट अ फुट होल्ड इन द इंडस्ट्री। तो एक ऐसा वक्त था जहाँ पर इन्होंने, आपको याद होगा रामानंद सागर की एक क्लासिक टेलीविजन सीरीज आती थी रामायण, और उनके म्यूज़िक कंपोज़र थे रविंद्र जैन, एक ऐसे माने जाने कंपोज़र जिन्होंने क्लासिकली काफ़ी म्यूज़िक को कंपोज किया है। तो रविंद्र जैन के यहाँ पर इन्होंने 2 साल तक स्ट्रगल किया है, उनको असिस्ट किया और साथ ही साथ में उनके साथ में काफ़ी काम को सीखा, यही उम्मीद में कि उनको आगे चलकर रविंद्र जैन से ब्रेक मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं। और फिर आखिरकार ये हार कर अभिजीत वहाँ से निकल पड़े और लगभग आरडी बर्मन के पास में इनको एक ब्रेक मिल ही जाता, लेकिन वो भी रही गया। तो ये इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि संघर्ष काफ़ी इन्होंने किया है और काफ़ी लुक फोर्ड कर रहे थे कि इनका जो लॉन्च होगा म्यूजिकली ये रविंद्र जैन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

0: breakfast show with VJ and Pooja.
1: बुरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with
2: क्या?
3: The cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: Have you heard? It's your final day to shop Briscoe's for massive 70% off dream big deals, plus 20 to 70% off the entire store. The days are cold, but the savings are hot. Dream shop save for one final day at Briscoe's. See online for T's and C's.
7: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers. Buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
8: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
9: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
10: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
11: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
12: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी, और आपको बता दूं हर सुबह जब कि आप विजय और पूजा को सुनते हैं, ब्रेकफास्ट शो ये आपके लिए खास लेकर आते हैं. और अगर जो किसी कारण से आप इस शो को मिस कर देते हो क्योंकि आप ऑलरेडी एट वर्क होते हो या फिर किसी और रीज़न से आप इस शो को सुन नहीं पाते, तो आपके पास में एक मौका है, आप ब्रेकफास्ट कैचअप सुन सकते हैं, जहां पर कुछ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन जो विजय और पूजा हर सुबह अपने शो पर डिस्कस करते हैं, काफ़ी हार्ड हीटिंग टॉपिक्स को ये रिसर्च करके लेकर आते हैं आपके लिए. तो आप सिर्फ BF लिखकर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्रेकफास्ट, BF लिखकर 5599 पर टेक्स्ट कीजिए. यहां से आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आप जाकर ब्रेकफास्ट कैचअप कर सकते हैं, यानी कि उनके शो को एक बार फिर आप सुन सकते हैं.

हम पर हमारे साथी आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं, और जैसे सिंडी और रुजबे आपके लिए लेकर आते हैं अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। यहाँ पर अभी हाल ही में इन्होंने बात की है AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या से, और AI को ब्रेक डाउन करते हुए क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है इसके बारे में बात करते हुए दर्शित ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर जो आप इस पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजिएगा ज़रूर, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा जो लोग के समझ से परे है AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो काफी अच्छी तरह से दर्शित ने इसको ब्रेकडाउन किया है। तो ड्राइव लिखे 5599 पर जरूर भेजें।

जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

0: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
1: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
0: Saturday, 18th July, 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
1: Mashallah, bahut acha, very nice.
2: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
3: ले ले तुम
4: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
5: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा जबकि 12 से आपके साथ में इस सफर को तय करते आ रहे हैं और 6 तक साथ तय करने का वादा किया है 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं

हमारा आज का सफरनामा बस यहीं तक था. आपने हमारा साथ दिया 12 बजे से जस्ट चिल प्रोग्राम के साथ में. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और यही वादा किए जा रहे हैं, आपसे मुलाकात होगी अब अगले वीकेंड पर. लेकिन कल से एक नए हफ्ते की शुरुआत है, इसके लिए आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं. हैव अ वंडरफुल वीक अहेड. मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, चॉइसेस भी आपकी होनी चाहिए. तो इसी बातों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ. डू टेक केयर, आपसे फिर मिलेंगे. बाय.

0: दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: Good evening, everyone, and welcome to the show. Sunday night melodies लेकर मैं आ जाता हूँ काफी time आपके लिए, और आज भी long weekend के दौरान भी हमारा साथ है, और Sunday night melodies लेकर 12 तक मैं क्रिश हाजिर खिदमत हूँ. आपका इस्तकबाल है. बहुत प्यारे प्यारे गाने मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए, जो मैं आपको सुनाऊंगा. सुनते रहो हम. वेलकम टू द शो एवरीवन. संडे नाइट मेलोडीज़ में सारे मेलोडियस गाने आपके नाम करेंगे, आपको सुनाएंगे, आपको डेडिकेट करेंगे.

ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे। हम सांप।

बैक टू बैक सॉन्ग्स हमारे साथ होंगे. काफ़ी लाइट कंटेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम हमारा होता है ऑन संडे नाइट्स, क्योंकि आपके लिए आराम करने का टाइम है, मो म्यूज़िक सुनने का टाइम होता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेकर आते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक भी आपके लिए हम प्ले करते हैं. तो आप इन्जॉय करते रहो योर फेवरेट सॉन्ग्स जो एक के बाद एक हम लेकर आएंगे ऑन हम, बिकॉज वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

आप सुन रहे हैं आपके नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। आज अगर आपका जन्मदिन है अ वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से आपको हम विश करना चाहेंगे। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी बधाइयां हम आपको देना चाहेंगे। कुछ स्पेशल हो रहा है, कुछ प्लान किया गया है या आगे चलकर भी कुछ होने वाला है आपके लिए, तैयारियां हो रही है, तो इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हम देना चाहेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनते रहो हम, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. याद रहे म्यूजिक स्टेशंस को भी आप रोवा के जरिए सुन पाएंगे. हम रिवाइंड में आप 60s और 70s हिट्स सुनेंगे. 80s जूक बॉक्स में काफी 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स आप सुनेंगे. फीजी भजन में 24/7 फ्री भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें फिजीज बेस्ट आर्टिस्ट के कीर्तन आप सुन पाएंगे. चढ़ती कला है पंजाबी हिट्स, फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइसेस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट यहाँ पर होंगे आपके लिए इनके गाने सुनने का मौका. और राहत फतेह अली खान फॉर द लव ऑफ सूफी एंड कवालीज, आप इनके म्यूजिक स्टेशन जो है राहत फतेह अली खान नाम के वो आप चेकआउट करें. इट इज़ गोइंग टू गिव यू रियली नाइस सॉन्ग्स. तो ये म्यूजिक स्टेशन सुनना ना भूले, रोवा के जरिए आपको सुनने को मिलेगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūruki. All together, Auckland.
2: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
3: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
2: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
3: Mashallah, bahut acha, very nice.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
4: दिल से, दिल से, दिल तक.
6: आप सुन रहे हैं आपके नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. ओकलैंड गेट रेडी फॉर अ नाइट ऑफ अनस्टॉपेबल लाफ्टर. ट्राइविजन इवेंट्स प्रेजेंट्स द ग्रेट कॉमेडी नाइट फीचरिंग कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर. ये दोनों लाइव ऑन स्टेज परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं. डबल द कॉमेडियंस, डबल द लाफ्टर. Watch two of India's biggest comedy stars. एक साथ में ये परफॉर्म करेंगे for one unforgettable evening. इनका magic of live comedy experience कीजिए beyond the TV screen. इनका laugh out loud moments को experience कीजिए. Hilarious stories सुनिए. Razor sharp punchlines भी सुनने का मौका मिलेगा, हंसने का मौका मिलेगा और काफ़ी audience interaction भी होगा इनके show में. तो bring your family and friends for the perfect night out. Unforgettable memories create करने के लिए आप आ जाइए. और VIP tickets बिक चुके हैं तो आप जल्दी से tickets जो रह गए वो आप ले ले. Auckland is buzzing, so don't wait until remaining seats disappear. After pay option भी available है. आप easily book कर पाएंगे अपने लिए seats. Tickets बहुत ही जल्दी से बिक रहे हैं. Grab your tickets now at bookmyevent.co.nz before they are gone. 18th July को ये होने जा रहा है. Victory Convention Center में होगा. अगर आप 0800-004-866 पर कॉल करते हैं एंड इफ़ यू क्रैक अ जोक ऑन एयर, इफ द आरजे ऑन एयर लाफ्स, आपको डबल पास मिल सकता है. ओनली क्लीन ऑन एयर फ्रेंडली जोक्स होने चाहिए प्लीज़. तो आप ये कर सकते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 6 PM के बीच. और ऐसे ही आप जीत पाएंगे डबल पास हमारे साथ होकर. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: It is Sunday night and 12th July aaj hai. Long weekend ka aakhri din hai. Umeed karta hoon ki aapka long weekend bahut hi achi tarah gaya hoga. Abhi recharge, rejuvenate karne ka time hai, chill karne ka time hai. To aise mein Sunday night melodies perfect shift aapke liye banta hai, jisme gaane bahut mazedar hote hain aur baatein bhi utna hi mazedar hote hain kyunki aapke liye bahut light topics hum lekar aate hain. Aaj hum ek बॉलीवुड सेलिब्रिटी को सलाम करना चाहते हैं, एक ऐसा सितारा जिन्होंने बहुत सालों तक हमें फिल्मों में एंटरटेन रखा. और कौन है ये सितारा, कौन है ये बहुत ही खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने प्यारे गानों में परफॉर्मेंस दिए, अच्छे अच्छे फिल्मों में अच्छे अच्छे किरदार को निभाया, लेकिन अभी हमारे बीच ये नहीं रही है. इसके बारे में जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए. सुनते रहो हम. वेलकम बैक एवरीवन. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: संडे नाइट मेलोडीज में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। आज एक ऐसा बॉलीवुड सितारे को हम सलाम करने जा रहे हैं या फिर ऐसे हस्ती और फनकार के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो हर किसी को पता है। इनके फिल्में गाने बहुत मज़ेदार है, बहुत ही आइकॉनिक रोल्स इन्होंने निभाया है। हम बातें कर रहे हैं नन अदर देन श्रीदेवी का। श्रीदेवी का फुल नाम है, असल नाम है वो है श्री अम्मा यंगेर अयप्पन, लेकिन स्क्रीन नेम इन्होंने श्रीदेवी रखा एंड आई थिंक इट जस्ट सूटेड हर सो मच। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 में हुआ था मिनामपत्ती तमिलनाडु इंडिया में। ये पास्ड अवे, मतलब इनकी डेथ हो गई ऑन 24 फरवरी 2018 इन दुबई UAE में। और शी वॉज एन इंडियन एक्ट्रेस प्रोड्यूसर जिन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नडा फिल्मों में काम किया था। और भी जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Happy Road! In just 23 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
3: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
4: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Sunday Night Melodies आप सुनते रहो, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। आज एक ऐसे हस्ती को सलाम कर रहे हैं जिन्होंने हमें बहुत यादगार फिल्मों को दिया है। श्रीदेवी के बारे में हम बातें कर रहे हैं। इनको वाइडली रिगार्ड किया गया था एज द फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। इन्होंने एक्टिंग स्टार्ट किया एट जस्ट एज 4 इन द तमिल फिल्म कंधन करुणाई 1967 में, और इन्होंने फिल्म्स में काम किया फॉर ओवर 50 इयर्स 1967 टू 2018। इन्होंने मोर देन 300 फिल्मों में काम किया अक्रॉस मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, और इन्होंने ट्रांजिशन किया फ्रॉम चाइल्ड आर्टिस्ट टू लीडिंग हीरोइन इन साउथ इंडियन सिनेमा इन हर टीन्स। और इनका फर्स्ट मेजर अडल्ट रोल रहा है इन द तमिल फिल्म मुंद्रू मुडिचू 1976 में ये रिलीज हुई। और भी जानकारी बहुत ही जल्दी मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। संडे नाइट मेलोडी जारी है।

0: the moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ सामाजिक सूचनाएं भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे. श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन की ओर से सूचना है कि अखंड रामायण पाठ यहाँ पर होने जा रहा है सैटरडे 1 और संडे 2 अगस्त को. सैटरडे को रोट पूजा होगा, आरती और रामायण पाठ भी होगा 8:45 AM. संडे को सुबह 10 बजे रामायण पाठ ख़त्म होगा, 10:30 AM हवन और आरती भी होगी. महाप्रसाद भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम. और भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 09-836-4647 पर. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।

0: फिल्म तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना. बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz. फॉर स्पॉन्सरशिप्स कॉल करम हुंडल ऑन 02751464777.
1: Rebel's long weekend sale is nearing the finish line with deals too hot to miss. It's the final days to score epic half-price deals on clothing, shoes and more. Plus, get a scorching 20 to 40% off store-wide. Hurry, sale ends Monday, only at Rebel Sport. See you for T's and C's.
2: The Cooperative Bank has shared over $25 million in profit with our customers. Switch to the Cooperative Bank today and get a share of $25,000.
3: Better.
2: Bank better, New Zealand. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
4: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
5: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, Krish के साथ है. New Zealand Art and Culture Charitable Trust की ओर से एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है. श्री राम लीला आपके लिए आयोजित किया जा रहा है. स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से बातें कर सकते हैं 021-179-5459 पर. रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने जा रहा है. सेव द डेट, ये डेट आपको मार्क करके रखना है. 8 अगस्त को होगा और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8 अगस्त. क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे.

संडे नाइट मेलोडीज जारी है और बातें हो रही है श्रीदेवी के बारे में, एक ऐसे सितारे को हम सलाम कर रहे हैं जो हर किसी को पता है। इनका बहुत ही वंडरफुल रोल्स रह गए हैं जो ये छोड़ गई है, इनका लेगेसी अभी भी याद रहेगा लोगों को। शी बिकेम अ मेजर स्टार इन साउथ इंडिया विद फिल्म्स लाइक 16, वायांथिनेले एंड मुंड्रम पिराई, और ये बॉलीवुड में आई विद सोलवा सावन 1979 में, और शी रोज टू सुपर स्टारडम इन हिंदी सिनेमा विद हिम्मत वाला 83 में, इस फिल्म को रिलीज किया गया था। इन्होंने आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस डिलीवर किया इन मिस्टर इंडिया, चांदनी, नगीना और चालबाज। आपने अगर नगीना मूवी देखी है तो उसमें ये एक नागिन का किरदार निभाती है, एक इच्छाधारी नागिन जो अपना रूप बदल लेती है, और अमरीश पुरी उसमें एक सपेरे के किरदार में नज़र आए थे। ये फिल्म बहुत ही आइकॉनिक फिल्म बना है, और इसके लिए श्रीदेवी को बहुत बाद में, अभी रिसेंटली इनफैक्ट, उनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था, एक्नॉलेजिंग हर वंडरफुल एंड रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन नगीना। और असली सांपों का इस्तेमाल करके उस फिल्म को बनाया गया था, और बहुत ही प्यारा स्टोरी लाइन था। फिर उसका पार्ट टू भी बना, क्योंकि इस फिल्म का बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा है, इसके लिए वजह से पार्ट टू बना जिसका नाम निगाहें रखा गया था। और भी जानकारी बहुत ही जल्दी

0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi branch nahi hai.
4: Dil se, dil se, dil tak. Aapka moment. Krishka Magic, only on Hum.
6: Welcome back everyone, you are listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. It is 12 July, long weekend ka aakhri din hai aaj, aur aaj kafi log abhi recharge kar rahe hain. I'm sure it must have been a very long and a big long weekend for you. Kuch logon ne bahut man bhar ke party kiya hoga, ya phir khana peena hua hoga, ya phir bahut sare socializing. Abhi aapko bas shant ekant mein ya phir chup rahke ya aram karna hai, chill karna hai aur recharge karna hai, rejuvenate करना है, एंड सो दैट यू आर रेडी फॉर द वर्क वीक जो मंडे टू फ्राइडे होने को है 5 दिनों के लिए. हमेशा अक्सर मंडे को छुट्टी रहता है तो शॉर्ट वीक रहता है, वर्किंग वीक ट्यूसडे टू फ्राइडे, लेकिन इस बार फ्राइडे को हमें पब्लिक हॉलीडे मिला. लास्ट वीक वॉज अ वेरी शॉर्ट वीक, लेकिन इस बार अब यहाँ से कल से लेकर फ्राइडे तक नॉर्मल 5-day वीक होगा हमारे लिए. मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम बैक टू द शो.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम संडे नाइट मेलोडीज जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। बातें हो रही श्रीदेवी के बारे में, उनके कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में, उनकी जो जीवन काल में उन्होंने जो उपलब्धियों को हासिल किया है, आई एम श्योर उन्होंने उन उपलब्धियों को अपने फैंस को समर्पित किया है थ्रू आउट, लेकिन उनके बारे में बात करना, उनको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि बॉलीवुड में सोलवा सावन से इन्होंने एंटर किया और शी वॉज नोन फॉर बोथ कॉमेडी टाइमिंग और इंटेंस इमोशनल एक्टिंग। ये दोनों किरदारों में बखूबी अपना एक्टिंग स्किल्स दिखाती थी। वर्सेटाइल एक्ट्रेस थी और ऑफन प्राइज फॉर हर स्ट्रॉन्ग विल्ड फीमेल कैरेक्टर्स। इनके पास एक रेपुटेशन था फॉर बींग वेरी प्राइवेट और इंट्रोवर्टेड,

स्क्रीन, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता था इनका एक्टिंग और इनका अलग पर्सनैलिटी, पर्सना ये बाहर निकल के आता था. और जैसे कैमरा ऑफ होता था, मतलब शॉर्ट्स के इन बिटवीन, शी गोज बैक टू हर बीइंग वेरी प्राइवेट और इंट्रोवर्टेड टाइप जो पर्सनैलिटी इनके पास था. कृषि का साथ है और भी जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत ही जल्दी.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं. ओकलैंड गेट रेडी. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान ओकलैंड आ रहे हैं फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. इनका मैजिक आप एक्सपीरियंस कीजिए ऑफ हिज टाइमलेस हिट्स, साउल स्टरिंग कवाली, पावरफुल वॉइस जो इनका होता है, जिन्होंने ऑडियंस को कैप्टिवेट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड. इनके गाने इतने मज़ेदार होते हैं. ट्रस्ट अरिना में ये शो होने जा रहा है 25 जुलाई को. प्रेजेंटेड बाय जयका स्टार प्रोडक्शन, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन और शहजादा प्रोडक्शन. आपके लिए टिकट्स आप dry.com से ले सकते हैं. राहत फतेह अली खान लाइव देखने का मौका है ऑन 25 जुलाई ट्रस्ट अरिना. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं. यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.

संडे नाइट मेलोडीज जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम बैक एवरीवन. इट इज 12th जुलाई. आपका अगर स्पेशल डे है, सेलिब्रेशन घर पर है, तो इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ टीम हम की ओर से हम आपको देना चाहेंगे. हम पॉडकास्ट बहुत ही ज़रूरी मुद्दों पर बातें करता है रुजबे और सैंडी के साथ, और साथ में ब्रेकफास्ट कैचअप को लेकर अगर बातें किया जाए तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पर बातें होती है. और कौन सा टॉपिक पर बातें हुई है और पॉडकास्ट कैसे आप एक्सेस कर पाएंगे, इस पर जानकारी मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए. इनफैक्ट अगले ब्रेक में जब मैं आपसे बातें करूँगा तो ये जानकारी आपके लिए डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि इस बार जो टॉपिक है वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और मिडनाइट तक हमारा साथ रहेगा संडे नाइट मेलोडीज़ में.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. AI सभी जगहों पर है तो हम podcast सुनना ना भूले क्योंकि इसमें रुजबे और सैंडी बहुत ही interesting बातें करते हैं with AI specialist दर्शित पांड्या. ये एक senior principal engineer है platform at Zerko and an AWS community builder जो बहुत ही बारीकी से breakdown करते हैं the world of artificial intelligence in a way that actually makes sense. चाहे ChatGPT हो या AI at work हो to job security, privacy concerns, opportunities या कोई भी skills that you need for the future, ये conversation ये सारे questions का जवाब देता है और discuss करता है इन मुद्दों को. चाहे आप excited हो, curious हो या फिर little nervous about AI, ये episode आपके लिए एक practical guide है to understand कि technology किस दिशा में जा रही है और कैसे आप technology के साथ साथ चल सकते हैं. तो AI is everywhere, लेकिन इसका क्या मतलब हमारे ज़िंदगी के लिए होता है, हमारे काम के लिए होता है, ये एपिसोड आप सुनना ना भूले. 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव फॉर द फुल ऑडियो. इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी आप हमारे पास 5599 पर BF भेजे, जहां पर फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय एंड पूजा होता है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. तो हमारे पॉडकास्ट को आप सुने क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए यहां पर डिस्कस किया जाता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.
2: अच्छा.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम.

0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back, everyone. You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Sunday Night Melodies jari hai, long weekend show jari hai. More music, less talk, ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा आपके लिए अभी से लेकर 12 बजे तक भी. लेकिन बीच बीच में ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आपको बताना ज़रूरी है जो आपको एंटरटेन रखेगा अबाउट योर फेवरेट स्टार्स. ऐसे ही हम ऐसे सितारों को सलाम कर रहे हैं जो इन दिनों काफ़ी मशहूर हो रहे हैं, और न्यू एक्टर्स हो या फिर बहुत पुराने एक्टर्स, उस पर भी जानकारी. जो हमारे बीच नहीं है उनको भी हम याद करेंगे. आज हम श्रीदेवी के बारे में बातें कर रहे हैं और इसी घंटे पर उनके बारे में काफ़ी जानकारी और भी शेयर करेंगे जो शायद आपको नहीं पता है या आपको जानने में दिलचस्पी है, तो वो भी लेकर आए हैं आपके लिए. वेलकम बैक, कृष का साथ है.

बताने के लिए. इनको मल्टीपल फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. इस पर जानकारी ईच एंड जो अवार्ड है इस पर जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा. इनको पद्मश्री भी मिला था 2013 में, इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. और इनको नेशनल अवार्ड मिला है फॉर द फिल्म मम, और शी मेड अ मेजर कमबैक विद इंग्लिश विंग्लिश इन 2012 आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक विच आई एब्सोल्युटली लव्ड. इंग्लिश विंग्लिश का स्टोरी लाइन बहुत मज़ेदार था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था. क्योंकि असल में होता है, जैसे हमें मैंने देखा है कि कुछ लोगों को जिनको अंग्रेज़ी शायद अच्छी तरह से नहीं आती है, कितना मजाक उनके बारे में बनाया जाता था. लेकिन खैर अभी तो काफ़ी एक्सेप्टेंस है, काफ़ी सिखाया जाता है लोगों को और लोग सीखते भी हैं अंग्रेज़ी. तो शायद उनको पता है, ये सेल्फ अवेयरनेस होता है कि ये सीखना ज़रूरी है उनके लिए ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए प्रॉपर्ली. लेकिन मूवी ने बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे को छेड़ा है और सही तरह से पोर्ट्रे भी किया है. और उसमें सबसे बड़ा हाथ श्रीदेवी का रहा है टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर लाइक दैट और बखूबी निभाना. क्रिश के साथ है, बहुत और भी बातें करेंगे आपके साथ में बहुत ही जल्दी.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: संडे नाइट मेलोडीज जारी है और क्रिश का साथ है, हमारा साथ मिड नाइट तक रहेगा। हौले हौले धीरे धीरे हम मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं। 12th जुलाई है आज। इनफैक्ट बैकवर्ड्स क्यों जाना है भाई, अभी तो बहुत तेजी से समय आगे बढ़ता जा रहा है। अभी मिड जुलाई तक हम पहुंचने वाले हैं। कुछ ही दिनों में मिड जुलाई हो जाएगा और फिर विंटर ख़त्म हो जाएगा, होपफुली अगस्त तक आई थिंक विंटर रहता है। और फिर फेस्टिविटीज़, स्प्रिंग की शुरुआत, नाइस ब्लॉसम्स, ये सभी कुछ देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। एंड अगेन लाइक आई सेड बिफोर, इट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर जब स्प्रिंग शुरू हो जाएगा। क्रिश के साथ है।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
4: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
5: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
4: Saturday, 18th July, 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
5: Mashallah, bahut acha, very nice.
6: Farmer's Long Weekend Sale is now on with 10% off fragrance and selected beauty, up to 40% off women's, men's and kids' clothing, plus up to 40% off lingerie and men's underwear. Farmer's Long Weekend Sale now on. Conditions and exclusions apply.
7: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian designed award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
8: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
10: संडे नाइट मेलोडीज जारी है, बहुत ही जल्दी आपके लिए हम पेश करेंगे कुछ और भी जानकारी अबाउट श्रीदेवी, उनके लिस्ट ऑफ अवार्ड्स इन्होंने जीता है और इनका जो फाइनल फिल्म कौन सा रहा है, इस पर जानकारी आपके लिए रहेगा। नाइट शिफ्ट वर्कर्स, आपको याद करते हैं अभी जितने भी हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, ऊबर ड्राइवर्स हैं, आप काम करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सर्विस। क्योंकि आप काम करते हैं तो इसलिए बाकी चीज़ें चल रही है, लोगों को सर्विसेज मिल रहे हैं, तो थैंक यू, आपको याद करते हैं। साथ ही में ऑनलाइन लिसनर्स, आपका भी बहुत लॉयल, ज़्यादा लॉयल्टी होता है हमारे साथ होकर, क्योंकि आप जुड़ जाते हैं हमारे साथ, कम्युनिकेट करते हैं हमारे साथ होकर। थैंक गॉड अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो कहीं पर से भी आप हमें सुन रहे हैं, अ बिग शाउट आउट टू यू। सुनते रहो हम क्रिश का साथ है।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: संडे नाइट मेलोडीज आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इट इज पास 10 और 12 तक हमारा साथ रहेगा. टू मोर आवर्स टू गो. इस हफ्ते सातों दिन मैं आपका साथ दे रहा था और बहुत ही मज़ेदार ये एक्सपीरियंस रहा है. थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट कंपनी. बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका साथ हमें मिलता है. और अभी दो घंटे के लिए और आपको हमारा साथ देना है. इस घंटे पर मेजर अवार्ड्स जो मिले हैं श्रीदेवी को, इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. आज हम श्रीदेवी के बारे में बातें कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं और उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनके जो उपलब्धियां हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं. तो जितने भी पुरस्कार उनको मिले हैं और उपलब्धियां जो मिली है, इस पर जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा. वेलकम बैक टू द शो एवरीवन. क्रिश का साथ है.

श्रीदेवी के बारे में बातें हो रही है. इनका फाइनल फिल्म रहा है मॉम 2017 में. इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं इस फिल्म को देख रहा था एंड शी इज डन अ वंडरफुल जॉब. दुख लगा कि इतना जल्दी ये खूबसूरत अदाकारा चली गई. कम बैक के बाद इंग्लिश विंग्लिश और फिर मॉम में धमाल मचा रही थी, धूम मचा रही थी और ऐसे और भी फिल्मों में इनको देखना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए. शी वॉज मैरिड टू फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर. इनके दो डॉटर्स हैं, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर. दोनों को फिल्मी पर्दों पर आपने देखा है लेकिन जाह्नवी कपूर को ज़्यादा ही देखा है आपने क्योंकि उन्होंने काफ़ी फिल्मों को किया है अब तक. और शी स्टिल रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्ट्रेसेस इन इंडियन सिनेमा हिस्ट्री. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और भी साथ आपको हमें देना है क्योंकि मिडनाइट तक हमारा साथ रहेगा.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Henderson in just 35 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
2: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277 6644. T's and C's apply.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, एक एक करके आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स मैं पेश करता रहूंगा। श्रीदेवी पर जानकारी भी आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। मेजर अवार्ड्स की बात किया जाए तो सिविलियन अवार्ड्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनको पद्मश्री दिया गया है 2013 में। इट्स फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया फॉर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट्स। और ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान भी दिया गया था 1991 में फॉर परफॉर्मेंस इन खुदा गवा। तो बहुत ही वंडरफुल इनका परफॉर्मेंस रहा है, और ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान 1991 में इसको दिया गया था। नेशनल फिल्म अवार्ड्स कौन कौन से रह चुके हैं, बेस्ट एक्ट्रेस इन 2018, पोस्ट ह्यूमस इनको मिला है फॉर मॉम, और बेस्ट बैकग्राउंड्स को 2018 में इनको दिया गया था फॉर मॉम। इस फिल्म को इनफैक्ट अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड्स में हिंदी और साउथ में कौन कौन से मूवीज़ है इस पर जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा।

संडे नाइट मेलोडीज जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। आज श्रीदेवी के बारे में हम बातें कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं, उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या लेसन नोन फैक्ट्स भी आपको बता रहे हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स में देखा जाए तो बेस्ट एक्ट्रेस तमिल 1992 में मिंडम कोकिला को मिला। फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस हिंदी 1990 में चालबाज में काम करने के लिए मिला। फिर बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगू में मिला 1991 में शाना शनम, और फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस 92 में लम्हे के लिए इनको दिया गया। फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिस्टर इंडिया और नगीना के लिए दिया गया, और ये अवार्ड इनफेक्ट 2013 में इनको दिया गया था। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि नगीना में काम करने के लिए इच्छाधारी नागिन का किरदार इन्होंने निभाया था, बखूबी निभाया। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्नेक डांसेस जो अभी तक फिल्मी पर्दे पर देखा गया है। मैं तेरी दुश्मन जो गाना था उस गाने पर इन्होंने परफॉर्म किया, और अभी तक के लिए वो बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है। और जिस तरह से पिक्चराइज किया गया था, कोरियोग्राफी से लेकर श्रीदेवी के लुक्स और परफॉर्मेंस एक आइकॉनिक बन के रह गया है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट सीनियर आइकॉन ऑनर ये इनको दिया गया है। और स्टेट फिल्म अवार्ड्स में कौन कौन से फिल्मों में शामिल किया गया है इनका नाम, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी

0: with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Craving हो रही है उस thick और creamy दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
3: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
4: आपके सामने एक रेड बटन है.
5: दबा दिया.
4: नहीं दबाना था.
6: The madness is back. धमाल 4.
7: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
6: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
8: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
6: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
9: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता.
10: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
11: Trade Depot celebrates Matariki this week with two exceptional deals. Huge Vogue side-by-side fridge freezers, just $5.99. 7-star heat pump dryers, just $4.99. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
0: TradeDepot.co.nz. Hitting the open road these school holidays? Refuel at Zed with Afterpay. Shop snacks, fuel and more, and pay in four. Shop now with Afterpay at Zed. Fees, TCs and eligibility criteria apply.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। श्रीदेवी के बारे में बातें हो रही है आज। स्टेट फिल्म अवार्ड्स में केरला स्टेट फिल्म अवार्ड बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट 1971 में इनको दिया गया था पूम्बट्टा के लिए। तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस 1981 में दिया गया था मुंद्रम पिराई के लिए। फिर नंदी अवार्ड आंध्र प्रदेश 91 में दिया गया शाना शनम के लिए। जो आदमेजा अवार्ड्स है इस पर जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा। स्पेशल ऑनर्स रिकॉग्निशन पर भी जानकारी है और लेगेसी रिकॉग्निशन पर।

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Moment, Krish ka magic, only on Hum.
5: वेलकम बैक एवरी वन, संडे नाइट मेलेडीज का ये फाइनल आवा है और बहुत ही मज़ेदार ये टाइम आपके साथ हो रहा है। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर योर ग्रेट कंपनी। लॉन्ग वीकेंड जारी है और बस एक घंटा इनफैक्ट रह गया है फॉर दिस लॉन्ग वीकेंड टू बी ओवर और कल बैक टू वर्क। एवरी वन तैयारियाँ हो चुकी है और आराम कर रहे हैं अभी और साथ दे रहे हैं और म्यूज़िक का मज़ा ले रहे हैं, तो सुनते रहो। स्कूल स्टूडेंट्स भी घर पर है तो काफ़ी लोगों ने छुट्टी लिया है टू एंटरटेन जो बच्चे हैं घर पर अभी, उनको घुमाने फिराने के लिए भी आप लेकर जा रहे हैं यहाँ वहाँ, तो उनको भी हम याद करते हैं अगर देर से वो भी जाकर हमें सुन रहे हैं। श्रीदेवी के बारे में जानकारी इसी घंटे पर और भी रहेंगे और ये हमारा फाइनल आवा है तो कुछ ही देर तक और आपके लिए हम कुछ ये इन्फॉर्मेशन पेश कर पाएंगे, लेकिन म्यूज़िकल जर्नी आपके लिए चलता रहेगा। कृष का साथ है

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: श्रीदेवी के बारे में बातें हो रही संडे नाइट मेलोडीज में. आज उनको हम उनके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं उनको. एक ऐसी सितारा जो बहुत ही बड़ी स्टार है और अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आई एम श्योर बहुत ही तेज़ी से चमक रही होगी जहां पर भी होगी वो. आधा मेजर इंडियन अवार्ड्स में देखा जाए तो स्टारडस्ट अवार्ड इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इंग्लिश विंग्लिश. स्क्रीन अवार्ड्स मल्टीपल नॉमिनेशंस मिले फॉर बेस्ट एक्ट्रेस. जी सैनी अवार्ड्स ज्यूरी रिकॉग्निशन फॉर इंग्लिश विंग्लिश. आईफा अवार्ड इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मॉम इन 2018. NDTV इंडियन ऑफ द ईयर एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2013 में मिला है. हेलो हॉल ऑफ फेम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर 2012 में इनको दिया गया है. स्टार गिल्ड अवार्ड स्पेशल ऑनर फॉर इंग्लिश विंग्लिश भी इनको दिया गया है. स्पेशल ऑनर्स एंड रिकॉग्निशन पर भी जानकारी आपके लिए हम लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी.

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West West side है ना, West side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा Hunua West में?
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ke saath hai aur hamara saath midnight tak rahega, kuch hi der tak aur hamara saath. Shridevi ke baare mein baatein ho rahi hai, special honors and recognition par agar baatein kare, FICCI Living Legend in Entertainment Award diya gaya tha 2008 mein, Vogue Timeless Beauty Award in 2013 mein inko, Mami Award, a contribution to Indian cinema in 2003, Giants Award, contribution to Indian cinema, 1994 में ये दिया गया था. डॉक्टर केनेनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2004, ऑनर्ड एट कैरो इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2009 में इनको ये दिया गया था. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेडलियन ऑफ ऑनर 100 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा 2013 में ये अवार्ड इसको दिया गया था. लेगेसी रिकॉग्निशन पर बातें करेंगे बहुत ही जल्दी. क्रिश का साथ है, संडे नाइट मेलोडीज जारी है, 12th जुलाई है और 12 तक मैं आपका साथ दूंगा.

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम
2: संडे नाइट मेलोडीज में स्पेशल रिकॉग्निशन और बातें कर रहे हैं हम श्रीदेवी के बारे में। लेगेसी रिकॉग्निशन की अगर बात किया जाए तो शी वाज वोटेड इंडियाज ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम CNN IBN पोल 2013 में हुआ था। फ्रिक्वेंटली रैंक्ड नंबर वन बॉलीवुड एक्ट्रेस इन मल्टीपल पॉपुलैरिटी पोल्स 2012 टू 2013 में ये पोल किए गए थे और साथ ही में रिगार्डेड एज द फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। ये लेगेसी रिकॉग्निशन में कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो श्रीदेवी के बारे में मैंने आपके लिए शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा ये सेगमेंट और श्रीदेवी पर काफ़ी जानकारी आपको मिला होगा। अगले हफ्ते पर एक और सितारा एक और स्टार पर बातें करेंगे, उनके लाइफ और अचीवमेंट्स और फिल्मी करियर पर्सनल लाइफ के बारे में भी आपको बताएंगे। कृष का साथ है।

0: देखें जैक बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: You're listening to Krish.
3: Let's go!
4: संडे नाइट मेलोडीज यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है एक बार फिर कल मंडे नाइट को। हम आ जाएंगे आपके लिए नाइट कैफे लेकर। अपना बहुत ही ख्याल रखें, हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर वीक, और उम्मीद करता हूँ कि आपका वर्किंग वीक बहुत ही अच्छी तरह से जाए। कृष का बहुत सारा प्यार, नमस्ते, गुड नाइट एवरीवन।
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
5: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़ ना।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, मैं

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
3: आपके सामने एक रेड बटन है
4: दबा दिया
3: नहीं दबाना था
5: द मैडनेस इज बैक धमाल 4
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
5: स्टारिंग अजय देवगन अर्शद वारसी रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी रिटर्न इन धमाल 4 डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी
5: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमास नाउ
8: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता
9: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
10: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से
11: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
12: Sorry about that.
11: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
13: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
14: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
15: And award goes to Indelible Homes.
14: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
16: कहानी of Indelible Homes.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
4: G'day, Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
5: Sorry about that.
4: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
6: आपके सामने एक रेड बटन है। नहीं दबाना
7: था। The madness is back. Dhamal 4.
8: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
7: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
9: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
7: Watch the biggest family entertainer Dhamal 4 in cinemas now.
10: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता?
11: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
12: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
13: The beat of Bollywood.
14: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
13: Night Flight.

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश हीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77 हीरा नॉर्थ एंड वेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइस provider.
3: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
4: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
5: Sorry about that.
4: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
6: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Henderson in just 35 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
7: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: आपके सामने एक रेड बटन है,
5: दबा दिया।
4: नहीं दबाना था।
6: The madness is back, धमाल 4।
7: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
6: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
8: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
6: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now।
9: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता।

0: बहुत बहुत आएगा।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम हाँ।

0: दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: मीडिया वॉइस कंप्लेंट्स, हाउ कैन आई हेल्प?
3: माय किड्स वोंट शट अप।
2: आई एम नॉट श्योर दैट्स आवर प्रॉब्लम।
3: They keep reciting lines from one of your radio ads.
2: Aww, cute!
3: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times...
4: What do you want, son?
5: I want me some of that real southern chicken.
3: 28 times.
2: So where are you now?
3: Eating chicken.
6: Advertise with...
7: Media Works!
6: New Zealand listens to us.
8: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Karangahape station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Puhinui in just 32 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
9: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर। यार
10: क्यों, क्या हुआ?
9: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
11: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
12: What if your next holiday wasn't just a holiday,
11: but the adventure everyone talks about?
12: Imagine chasing waterfalls,
11: wandering lush rice terraces,
12: catching unforgettable sunsets,
11: and relaxing at iconic beach clubs.
12: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
11: discovering incredible temples,
12: tasting world-famous street food.
11: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
13: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
14: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
13: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
14: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
13: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
15: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
8: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
9: Sorry about that.
8: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
10: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए। Smile.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: आपके सामने एक रेड बटन है,
1: दबा दिया।
0: नहीं दबाना था।
2: The madness is back, धमाल 4।
3: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
2: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
4: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
2: Watch the biggest family entertainer, Dhamaal 4, in cinemas now.
5: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।

0: हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स। क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance presents The Great Indian Comedy Night featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
2: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
1: Saturday 18th July 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
2: Mashallah, bahut acha, very nice.
3: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured up front. Even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
5: अच्छा
4: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साडा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
9: Bollywood.
10: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
9: Night Flight.

0: भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: डिब्बा खुल गया
2: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे।
3: संजना का डिब्बा खुल गया।
4: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
3: डिब्बा खुल गया।
4: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
6: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey! Noodles with friends on Karanga Happy Road! In just 23 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
10: What if your next holiday wasn't just a holiday,
11: but the adventure everyone talks about?
10: Imagine chasing waterfalls,
11: wandering lush rice terraces,
10: catching unforgettable sunsets,
11: and relaxing at iconic beach clubs.
10: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
11: discovering incredible temples,
10: tasting world-famous street food.
11: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 55599 for the all-inclusive tour price.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
7: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
8: मुझे भी।
7: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
9: Being fussy is just knowing what you want, so be more fussy.
10: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches, because your cat deserves meals created just for them. Meow! Fussy Cat is made with the meaty taste cats love, delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough, serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat, be more fussy.
11: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
12: तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shahzaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships call Karam Hundal on 0275146477.
13: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
0: Time check.
14: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Police are reminding people that only experienced climbers should attempt Mount Taranaki at this time of year. 3 people needed rescuing yesterday, 2 of whom were seriously injured while another got stuck in icy conditions. Police say had the weather not cleared in time, it was very likely the situation would have ended tragically. The impact of earlier fuel price hikes is now being felt at the supermarket checkout. Infometrics Foodstuffs data found supplier costs were up 2.1% in June, with half of the increases linked to fuel adjustments. But economist Brad Olson says it's not the only factor.
16: Other inputs have also increased, not just fuel. In particular, we expect the likes of plastics costs going up will have started to ripple through supply chains.
15: The Christchurch skyline is being reshaped by a wave of new apartment and townhouse developments. Councillor Jake McLellan says they want to bring 20,000 more people into the CBD.
6: Coming to the end of the earthquake rebuild, we've had a great result. You know, we've opened the stadium recently and we're going from strength to strength.
15: There are conflicting reports about the Strait of Hormuz. Iran has declared it's closed, while the US says it's open and traffic is flowing. Iranian state media is reporting renewed explosions this morning in the south of the country near Keshem Island. In sport, Brendan McCullum has been sacked as England Test cricket coach. The former All Blacks captain introduced an ultra-aggressive style known as Bazball. Ex-England skipper Nasir Hussain says it had run its course.
17: Losing, seven of their last nine Test matches, I think it's about the right time.
15: And it's one set apiece in the men's Wimbledon final between world number one Jannik Sinner and second seed Alexander Zverev.
14: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
18: Hum par shok suchnaye aap tak laate hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
19: Suchit kiya jata hai ki Tuatua Lambasa ke Santa Prasad aur Swargiye Shantivati ke putre, yani Sandhya Sharma ke pati, और सृष्टि तथा प्रशांत शर्मा के पिता मैंगरी के महेंद्र शर्मा की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंड फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0204-963-723 पर संपर्क कर सकते हैं. तुअतुअ लंबासा के संत प्रसाद और स्वर्गीय शांतिवती के पुत्र संध्या शर्मा के पति यानी सृष्टि और प्रशांत शर्मा के पिता मैंगरी के महेंद्र शर्मा की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंड फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0204-963-723 पर संपर्क कर सकते हैं.
18: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
14: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
20: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
14: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
19: 5.5 डिग्रीज टेम्परेचर अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 16, ओवरनाइट कम से कम 10 डिग्रीज होने वाला है. आज बादल छाए रहेंगे, रह रहकर कुछ हल्की बारिश होगी. सनराइज 7:31 AM पर और सनसेट आज का शाम 5:23 पर होगा.
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
14: Breakfast Catch-Up.
19: 5 मिनट हो रहे हैं, 6:00. नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका. वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज सोमवार है, 13 तारीख जुलाई. आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग, नमस्ते. आप सबको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग. आज के सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से. वैसे जहां कहीं भी आप हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, और सुबह सुबह साथ हमारे जुड़ चुके हैं आपके साथ और आपके समय के लिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच.
19: 3 दिनों की छुट्टी होपफुली आप सभी के लिए अच्छी गई हो, और लॉन्ग वीकेंड अच्छी तरह से रिफ्रेश होने के बाद अब नई एनर्जी के साथ आप एक नए हफ्ते के लिए तैयार होंगे.
3: Absolutely. छुट्टियाँ बहुत जरूरी होती है ना, चाहे वो आपको 1 दिन की हो या 2 दिनों की हो, और अगर ज्यादा मिल जाए, जितनी की नॉर्मली होती है उससे ज्यादा मिल जाए तो खुशी तो और ज्यादा हो ही जाती है, पर आराम हो जाता है. एक बोलते हैं ना, रिचार्ज जैसा आप फील करने लगते हैं. तो डेफिनेटली इफ यू हैव हैड अ गुड लॉन्ग वीकेंड छुट्टी, आज मंडे है और 13th of July, आज की सुबह को भी आप वेलकम कर रहे हैं अपने अंदाज में. हो सकता है आज शायद कुछ लोगों ने एक एक्स्ट्रा दिन की छुट्टी जो है ये अगर ली हो, तो आप सबको भी आज की छुट्टी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. उम्मीद करते हैं व्हाटएवर यू आर प्लानिंग फॉर इट टू हैपन टुडे, या फिर आप जो भी करने के बारे में सोच रहे हैं, वो डेफिनेटली वैसा ही वर्कआउट हो जैसा कि आप सोच रहे हैं.
19: तो अब आगे हैं और चार घंटों तक आपके साथ रहेंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जिस दौरान आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें होंगी, स्टार्टिंग ऑफ विद आवर सनी साइड अप स्टोरी और उसके बाद ग्लोबल हेडलाइंस आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे।

0: professional. Sunnyside
1: Up. 16 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर और आज का हमारा जो सनी साइड अप स्टोरी है हिंदुस्तान टाइम्स पर ये रिपोर्ट जब मैंने पढ़ा तो थोड़ी देर के लिए इसके बारे में मैं सोचता रह गया. इनफैक्ट उन्होंने भी ये स्टोरी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से हासिल किया. एक यूज़र है

0: की वजह से उनको बहुत गंभीर चोट आई और फिलहाल गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती हैं। और उन्होंने कहा कि उनके घर के लिए अगली ट्रेन जो है रात को 11 बजे निकलेगी और घर पहुंचने में उसे तकरीबन 30 घंटे लगेंगे और उसे पता भी नहीं है कि क्या वो वक्त पर घर पहुंच पाएंगे या नहीं। तो लड़के ने अंकित को ये बताया। फिर अंकित ने बताया कि उन्होंने लड़के से पूछा कि क्या उसने खाना खाया है, तो लड़के ने कहा नहीं। फिर जो खाना वो लड़का डिलीवर करने के लिए लाया था वही खाना अंकित ने उसके साथ शेयर किया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद अंकित ने ऑनलाइन जाकर फ्लाइट्स ढूंढे और पाया कि उसके शहर के लिए फ्लाइट्स 4,000 रुपीज में मिल रही है। तो उन्होंने एक फ्लाइट जो है ये इमिडिएटली उस लड़के के लिए बुक कर दिया। फिर उस लड़के ने बताया कि वो आज से पहले कभी भी एयरपोर्ट भी नहीं गया है।
1: वो एयरपोर्ट भी नहीं गया, फ्लाइट में नहीं बैठा था।
0: तो पांडे ने उसे आश्वासन दिया कि उसका एक दोस्त है जो उसको हेल्प करेगा। फिर कुछ घंटे बाद जो डिलीवरी पार्टनर है अपने घर पहुंच गया, अपनी माँ से मिला और फिर वहां से उसने अंकित पांडे को फोन किया और बताया कि उनकी माँ की तबीयत पहले से ठीक है और अगले 24 घंटों में वो काफी रिकवर करने वाली है।
1: That is amazing, you know, it's very important कि आपके आसपास कोई अजनबी भी हो तो आप उनके साथ कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन में यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से पेश आए, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो शख्स किस चीज़ से गुजर रहा, किस दौर से गुजर रहा अपनी लाइफ में ना। एंड एट टाइम्स इस मामले में तो चलो उस लड़के ने इस शख्स अंकित से काफ़ी चीज़ें शेयर कर ली, पर कई लोग इतना अपसेट होते हैं या इतना डिस्ट्रेस्ड होते हैं कि वो शायद अपनी परेशानियां किसी अनजान व्यक्ति से बोलते भी नहीं है, दे जस्ट कीप इट टू देमसेल्व्स। और अगर ऐसा होता है तो इस केस में जैसे इसकी मदद हुई है बाय अ स्ट्रेंजर, नॉर्मली हो भी नहीं पाती है ना, एंड दैट पर्सन जस्ट खुद में ही उस चीज़ को लेकर परेशानी से जूझ रहा होता है। तो इसीलिए अपने आस पास जब भी आप किसी से भी मिले, नॉट जस्ट पीपल यू डोंट नो, इनफैक्ट पीपल यू नो एट टाइम्स उनके साथ भी ऐसा ही होता है, वो किस परेशानी से गुजर रहे होते हैं आपको नहीं पता। एंड इफ यू गिव योर टाइम, इफ यू टॉक टू देम, इफ यू आर बींग काइंड, यू नेवर नो कि कब वो कैसे आपके सामने खुल जाए, अपनी परेशानी बांट ले और फिर आप कैसे उनकी परेशानी को खत्म करने का जरिया बन जाए, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट।
0: एग्जैक्टली, बस पहला कदम उठाना होता है, जैसे अंकित ने लिखा है, समटाइम्स चेंजिंग समवन्स लाइफ डजंट टेक मिलियंस ऑफ रुपीज, समटाइम्स इट टेक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, अ मील एंड अ टिकट होम, बी काइंड, यू नेवर नो व्हेन यू माइट बिकम समवन्स मिरेकल।
1: एब्सोल्युटली।
0: 20 मिनट हो रहे हैं फिलहाल 6 बजकर।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: हे देखो आ गए।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन,
5: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Tāmaki Tūtaki, Altogether Auckland.
1: Ski G. It's a word now. Verb. To stop in Fiji on your way to or from skiing. Because why fly straight to the snow when paradise is on the way? Soak up the sun in Fiji and then go shred the slopes. Or relax and recover in Fiji on your way back home. Ski G flights are on sale now. Fly to Vancouver return from $1,799 or Japan from $1,299. FijiAirways.com.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzora Smugco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
5: Global Headlines.
6: Aaj subah ke mukhya samacharon mein. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक मैचेंशिप पर हमले के बाद यूएस ने डजन्स ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स किए हैं, जिसके जवाब में तेहरान ने भी कई यूएस मिलिट्री साइट्स को टारगेट करने का दावा किया है। स्ट्रेट के स्टेटस को लेकर दोनों देशों के दावे अलग हैं, जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस ने ईरान पर कल रात भारी हमला किया है, पर स्ट्रेट अभी खुला है। वहीं पर ये वोटरवे तेहरान के लिए नेगोशिएशंस में अहम लेवल बन गया है। इस रीजनल टेंशन में एक इंडियन नागरिक गायब है, जबकि कतार ने ड्रोन अटैक्स को इंटरसेप्ट करने के दौरान 3 लोगों के जख्मी होने की बात कही है। ओमान, जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी उन पर फायरिंग होने का दावा किया है। कतार के भूतपूर्व अमीर शेख हमाद बिन खलीफा अल थंज के 74 साल की उम्र में इंतकाल पर इंडिया ने सम्मान के तौर पर आज एक दिन के नेशनल मोर्निंग की घोषणा की है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक इस शोक के दौरान पूरे देश में सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग आधा रहेगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक विजनरी लीडर और सच्चा दोस्त बताया था। फिजी में फाइनेंस परमानेंट सेक्रेटरी श्री गाउंडर ने किसानों को झूठे वादे मिलने पर दुख जताई और कहा कि शुगर इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, इसलिए टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद करने के बजाय किसानों को दूसरी इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार डायलॉग फिजी के एक सेशन में उन्होंने साफ किया कि फिजी शुगर कॉरपोरेशन के पास नया मिल बनाने का पैसा नहीं है और बिना किसी ठोस प्लान के इस इंडस्ट्री को रिवाइव करना नामुमकिन है, जिससे टैक्स पेयर्स पर भारी बोझ पड़ेगा। इसके जवाब में एफएससी के सीईओ भान प्रताप सिंह ने इंडस्ट्री का बचाव करते हुए कहा कि पहले के डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स कामयाब नहीं रहे हैं और गन्ना क्लाइमेट रेजिलिएंट होने की वजह से आज भी फार्मिंग कम्युनिटीज के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। नेशंस रग्बी चैंपियनशिप के अंतर्गत दूसरे राउंड के मैचेस जो है सप्ताह अंत खेले गए। ऑल ब्लैक्स की शानदार जीत इटली के खिलाफ 47-17 से हुई। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 42-21 से हराया। आयरलैंड की जीत जापान के खिलाफ 36-20 से हुई। इंग्लैंड ने फिजी को बुरी तरह 73-8 से हराया। साउथ अफ्रीका की जीत स्कॉटलैंड के खिलाफ 42-28 से हुई और अर्जेंटीना ने वेल्स को 35-21 से हराया। इस सप्ताह मैचेस की ओर देखें, शनिवार को ईडन पार्क पर ऑल ब्लैक्स और आयरलैंड का मैच खेला जाएगा। जापान फ्रांस से खेलेगा और साथ में वल्बिस की भिड़ंत इटली से होगी। फिजी इस सप्ताह अंत स्कॉटलैंड का मुकाबला करेगा। साउथ अफ्रीका वेल्स से खेलेगा और अर्जेंटीना की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स इसे बुधवार और बृहस्पतिवार को खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल बुधवार की सुबह 7 बजे फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा, जिसके बाद बृहस्पतिवार की सुबह 7 बजे इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच दूसरा सेमीफाइनल का मैच खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल अगले सोमवार की सुबह 7 बजे खेला जाना है। मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
7: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL.

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है। अभी 27 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी खबर जो है ये आई है और ये रिलेटेड है अबाउट द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर।
1: ये क्या है?
0: ड्रीम गर्ल इंडिया टूर जो है ये जैस्मिन सैंडलर्स का इंडिया टूर है जो वो कर रही है अलग अलग शहरों में जहां पर इनके परफॉर्मेंस है और ओवर द वीकेंड इनका एक परफॉर्मेंस जो है काफ़ी डिफरेंट रहा और फैंस जो हैं उनका कॉन्सर्ट देखने के लिए गए थे लेकिन कॉन्सर्ट के साथ उन्हें कुछ और भी देखने को मिला वहां पर।
1: ऐसा क्या देखने को मिल गया? इट हैज एक्चुअली यू नो बिकम अ न्यूज।
0: जैस्मिन सैंडलर्स किसी बहुत ही खास को लेकर आई थी इस कॉन्सर्ट में और वहां पर उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी सगाई हो चुकी है। यस, और उनके फियोंसे शेखर चौधरी को वो स्टेज पर लेकर आई थी।
1: Very interesting. That is amazing, yaar. It's a good news, na, for all the Jasmine Sandler's fans. And in fact, ek celebrity agar apni life ki personal cheezon mein aapko is tarah se involve kare, it is definitely a big thing. Because wo bhi fir aapko apni life ka wo hissa samajhte hain, jahan par they feel the needful ki aapko inform karna, aapko uske saath jode rakhna us information ke saath, jo unki personal life ka hissa hai. Is important for them. So it is very interesting. And congratulations to the newly engaged couple of the industry. But on the other hand, ek aur ek khabar, Ranbir Kapoor star Ramayan film, iske trailer ke baare mein kuch khabrein aayi hain. Apparently, 24th of July is the date, jabki ye particular film ka trailer worldwide launch hoga.
0: और कई तैयारियां जो है ये चल रही हैं। वहीं पर धमाल 4 ये भी फिल्म रिलीज हुई है और ये फिल्म जो है इसने 3-4 दिनों में वेलकम टू जंगल का जो इनकम है उसे बीट कर दिया है।
1: दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैंने तो अभी तक एक दोनों में से एक भी फिल्म नहीं देखी है। वेलकम टू द जंगल के बारे में मैंने सुना इज लाइक अ ब्रेन रॉट, लाइक अगर आप वो देखोगे इट वुडंट मेक मच सेंस टू यू बट यू वुड एंजॉय द कॉमेडी इन इट। और धमाल के बारे में ज्यादा बात तो भी मैंने नहीं सुनी है, रीजन बीइंग शायद अभी तक किसी ने देखी नहीं इन माय फ्रेंड सर्कल। बट लेट्स सी, अगर आपने देखी है और आपके पास अगर कोई भी रिस्पॉन्स हो या रिव्यू हो टू शेयर विद एवरीवन, डू लेट अस नो 5599 पर आप अपने मैसेजेस जो है हमें जरूर भेज सकते हैं।
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: Accurate traffic.
5: Switch to AMI car insurance.
6: High of 17, should be a mostly fine one all day today. Looking okay on motorways into the city. Southern, slowing to Papakura to Manurewa, 24 minutes Manukau to town, 42 in from Drury. Southwestern, little slow northbound through Woody. Northwestern, a bit of traffic at Massey and close to the city, 21 minutes Massey to town. Northern, 21 from Constellation, building there and back at Silverdale.
5: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
7: Professional by ninjas has saad aapke. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
9: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
10: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
9: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
10: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
9: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
11: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
12: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या चना मसाला, recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian, Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए। Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए।
13: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
4: At Bunnings, we can make your paint project easy with a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74, or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: 21 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में, तो ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आज सुबह सुबह आपने हमें याद किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले मिस्टर मटर मटर, राम राम, हैप्पी मंडे टीम, हैव अ गुड डे। आपको भी इस दिन, इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं।
3: और इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुड मॉर्निंग मैसेज जो है कि आपका भी आया है, थैंक यू सो मच विमलेश एंड प्रिया। गुड मॉर्निंग विजय जी, पूजा जी, जय भोलेनाथ, विशिंग यू बोथ अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे, आपने कहा है। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए।
2: गुड मॉर्निंग एंड नमस्कारम विजय, पूजा एंड ऑल लिसनर्स ऑफ हम, हैव अ हैप्पी डे। रवनेश मुदलियार, रवनेश थैंक यू सो मच आपके वक्त और मैसेज के लिए, आपको भी इस दिन और इस सुबह की शुभकामनाएं।
3: गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, शिवाज ब्लेसिंग्स, हैव एन अमेजिंग वीक अहेड, आपने कहा है। बॉबी मान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी साथ और आपके भी मैसेज के लिए और सुबह सुबह हमें याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, जहां पर आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ब्रेकफास्ट कैचअप, जहां पर हम कैचअप तो कर रहे हैं आप सभी के साथ। खबरों में क्या कुछ हो रहा है ये तो आपको डेफिनेटली हम बता रहे हैं, सुना रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रखते हैं जो आपको थोड़ा और इंटरटेन रखे, हमारे साथ इंटरेक्टेड बनाए रखे। और ऐसे में ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके लिए। व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिल्म, और ये डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है कि इट्स बेसिकली एज इट इज डिस्क्राइब्ड विकिपीडिया पर, इसका जो प्लॉट है उस तरह से नहीं, एकदम छोटा सा होगा इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म, एंड इफ यू कैन फिगर आउट कि ये कौन सी फिल्म का नाम है, तो आपको क्या करना है, बीएफ लिखना है, फिल्म का टाइटल लिखना है और फिर अपने पास मतलब हमारे पास अपना जो जवाब है ये आपको सेंड करना है 5599 पर। सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिल्म इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई लीड्स अ डबल लाइफ सो दैट ही कैन इम्प्रेस हिज प्रोफेसर्स डॉटर, हिज ओन वाइफ एंड ऑल्सो विन अ टैलेंट शो। एक सरकारी कर्मचारी है जो कि दोहरी जिंदगी जी रहे हैं ताकि वो अपने प्रोफेसर की बेटी, अपनी खुद की पत्नी को इम्प्रेस कर सके और एक टैलेंट शो भी जीत सके। किस फिल्म की कहानी लगी ये आपको?
2: मुझे तो पता नहीं भाई कौन सी फिल्म की कहानी लग रही है,
3: शायद आपने देखी भी नहीं होगी ये फिल्म, इसलिए यू हैव नो आइडिया। पर अगर किसी ने देखी है उनके लिए आसान होगा ये आइडेंटिफाई करना कौन सी फिल्म है। और अगर आपको आसानी से पता चल चुका है कि जवाब क्या है, तो जवाब आप हमारे पास बीएफ लिखकर अपने नाम के साथ 5599 पर भेज दीजिए। आपको दे रहे हैं हम करीबन 5 मिनटों का समय, उसके बाद देखेंगे आप में से कितने लोगों ने हमें सही या कितने लोगों ने गलत आंसर्स दिए हैं।
2: तो अपने जवाब अब आप हमें भेज सकते हैं। और किसी का मैसेज है, ओम नमः शिवाय, विजय जी, पूजा जी, महादेव की असीम कृपा आप दोनों पर बनी रहे, आपका सोमवार मंगलमय हो, हर हर महादेव। जया जी का ये मैसेज है, जया जी थैंक यू सो मच आपके टाइम और मैसेज के लिए, आपको भी इस दिन और इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Traffic. Support NZ Burn Survivors.
2: Fine today, just a bit of cloud, a high of 17. Coming into the city, northwestern, a bit of traffic at Massey. Slow from St. Luke's to the city, a bit heavy through Western Springs, 24 minutes Massey to town. Southern, 28 minutes in from Manukau. We're slow from Papakura on and off through to Mount Wellington. Some areas are faster. Northern, 21 in from Constellation. Slow on and off there to the bridge. Southwestern, slowing northbound at Whitty.
1: Text Burn to 4499 for a $3 donation to help the Burn Support Group.
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
4: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
5: Sorry about that.
4: But it's about time you got a taste of Aussie style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
6: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Karanga Ahape station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Puhi Nui in just 32 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
7: Breakfast Catch-Up. Throwback.
9: दस मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 7:07 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे। लगता है बहुत मुश्किल सवाल आज सुबह सुबह आपने पूछ लिया।
10: हाँ, मैंने सवाल तो काफी सिंपल पूछा, पर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि थोड़ा डिफिकल्ट हो, बिकॉज दे आर नॉट सीन द मूवी या फिर दे आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि कौन सी फिल्म हो सकती है। ऐसे में मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि आपने जैसे कि कहा कि आपको नहीं पता कि कौन सा फिल्म है, मतलब यू हैड डिफिकल्टीज, सो इवन द लिसनर्स कैन हैव इट एज अ डिफिकल्टी एज वेल, और आप भी शायद नहीं फिगर आउट कर पा रहे। तो इसी वजह से एक बार वापस से आपके लिए मैं बता देती हूँ कि क्या सवाल था। बेसिकली एक फिल्म का प्लॉट जो है ये मैंने आपको बताया इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, इन द मोस्ट ब्रीफ वे आई कुड, और फिर आपको बस अनुमान लगाना है कि कौन सी फिल्म है। सो द प्लॉट इज दिस, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु ट्राइज टू इम्प्रेस हिज प्रोफेसर्स डॉटर, हिज ओन वाइफ एंड ऑल्सो विन अ टैलेंट शो। तो एक सरकारी कर्मचारी है जो कि एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं ताकि वो अपनी अपने प्रोफेसर की बेटी यानी अपनी पत्नी को इम्प्रेस कर सके और साथ में एक टैलेंट शो जीत सके। ये बहुत पॉपुलर फिल्म आई थी, जैसे ये एक ऐसी फिल्म है जिस साल ये आई थी उस साल एक अभिनेत्री को लॉन्च भी किया गया था इस मूवी के साथ, और साथ ही साथ काफी पॉपुलर भी हुई थी। और दूसरी ओर ये भी मैं बता सकती हूँ आपको कि ये जो फिल्म है इससे काफी मजाक भी उड़ाया गया था इस अभिनेत्री का, थिंकिंग कि ये कितनी भोली है, कितनी नादान है इनका कैरेक्टर, बेसिकली नॉट द एक्चुअल एक्ट्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट। कुछ मैसेजेस आए हैं पर अनफॉर्चुनेटली गलत आंसर है। रवि का जवाब आया है, इन्होंने कहा है आई थिंक द आंसर पति पत्नी और वो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में जो बातें हुई है लीडिंग अ डबल लाइफ। और नेहा ने भी सेम जवाब दिया है। अमित है माउंट रॉस्किल से, इन्होंने कहा कि इनका भी आंसर पति पत्नी और वो है, बट द टैलेंट पार्ट शो इज अ बिट कंफ्यूजिंग इनके लिए. राज ने हेंडरसन से मैसेज किया है पति पत्नी और वो दैट्स माई बेस्ट गेस. तो अनफॉर्चुनेटली अभी रोनल्ड का भी आंसर आया बाय द वे. तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक अगर देखा जाए आई थिंक सिर्फ एक ही सही आंसर आया है, बाकी सारे गलत आंसर्स है.
9: ओके सो लेट्स सी, आप 5599 पर अपने जवाब जो है ये हमारे पास भेज सकते हैं और 7 बजे न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद देखेंगे कि सही जवाब क्या है.
10: और क्लू के तौर पर आपको जैसे कि मैंने बताया कि 2008 में मेरे ख्याल से फिल्म आई थी और एक बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री को इस फिल्म के साथ लॉन्च भी किया गया था.
9: तो अब BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेजें. जब तक आज का हमारा पहला थ्रोबैक आप एंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सेंट्रल ऑकलैंड में 4.5 डिग्रीज टेम्परेचर अब फील कर रहे हैं। आज का हाई 16, ओवरनाइट कम से कम 10 डिग्रीज रहेगा। बादल छाए रहेंगे, कुछ हल्की बारिश सुबह और शाम के वक्त हो सकती है। सनराइज 7:31 AM पर, सनसेट 5:23 पर होगा।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The morning madness.
1: Welcome to Morning Madness on Hum, playing Bollywood's biggest hits 104.2 FM और रोवा पर आप हमारे साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। अगर कुछ देर से आप हमारे साथ शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम में,
3: वैसे इस घंटे जहां मॉर्निंग मैडनेस की शुरुआत आप सभी के साथ हम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके समय के लिए। और मॉर्निंग मैडनेस में मैडनेस तो हर ओर लगी हुई है, लेकिन साथ ही साथ पिछले घंटे हमने जो सवाल पूछा था उसका कुछ अंजाम जो है ये सामने आया, तो वो भी देख लेते हैं। रोनाल्ड जैसे कि हमने कहा ये आखिरी नाम था जिसका हमने पढ़ा था, जिन्होंने अपना जवाब दिया था। उसके बाद जया जी का मैसेज आया, 1400 इन्होंने नाम नहीं लिखा लेकिन मैसेज भेजा है। गुंजन, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए।
1: वंदना है, समीर, प्रियंका, इन्होंने अपना जवाब भेजा है। जिया, थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए भी।
3: और रमीन जी है ऑटो हुहू से, इन्होंने भी अपना आंसर जो है हमें भेजा है, 8626, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए। नाम आपका भी नहीं आया है पर आपका मैसेज हमें मिला, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो जैसे कि हमने कहा कि एक फिल्म जहां पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं ताकि वो अपने प्रोफेसर की बेटी यानी अपनी खुद की पत्नी को इम्प्रेस कर सके और साथ में एक टैलेंट शो भी जीत सके। सो द ओनली पर्टिकुलर मूवी जो इस डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर सकता है इज रब ने बना दी जोड़ी। 2008 में ये फिल्म आई थी और साथ में आपको बता दें कि ये जो फिल्म है इसी से अनुष्का शर्मा का डेब्यू जो है ये हुआ था बॉलीवुड इंडस्ट्री में।
1: ओके, तो अगर सही जवाब आपने भेजा है, थैंक यू सो मच। फिलहाल याद रखें इसी घंटे आपको वेरी हैप्पी बर्थडे भी हम विश करने वाले हैं। आज 13th of July है, किसी का जन्मदिन है या किसी की शादी की सालगिरह है, उन्हें अभी तक आपने विश नहीं किया है, गिव देम अ सरप्राइज। 5599 पर अपने मैसेजेस जो है ये आप हमारे पास जरूर भेज सकते हैं।
3: वैसे इस घंटे की शुरुआत आपके लिए एक और एक बहुत ही जरूरी खबर से हम लेकर आए हैं और वो है ये कि आपको तैयार रहना है एक बहुत ही अमेजिंग नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए। लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांशी ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर, गरबा विद राज गढ़वी, जो कि लाइव इन ऑकलैंड होने वाला है
1: और ये रहेगा सैटरडे फेस्ट ऑफ अगस्त को। तो अभी से अगर देखिए तकरीबन 2 हफ्ते ही हैं जिसके बाद ये गरबा नाइट राज गढ़वी के साथ आप एंजॉय कर सकेंगे। महात्मा गांधी सेंटर में ये होने जा रहा है। आप एक्सपीरियंस करेंगे जब गरबा की बात आती है किस तरह का एनर्जी होता है, रिदम होता है, और उसके साथ अब उस पर सोने पे सुहागा राज गढ़वी जो है ये लाइव ऑन स्टेज रहेंगे।
3: बिल्कुल, तो आपको भी मौका मिलेगा कि आप इनके साथ एक बहुत ही एंटरटेनिंग नाइट जो है इसका मजा उठा सके। यू कैन डांस द नाइट एंड टिकट्स जो है दे आर सेलिंग क्वाइट फास्ट, इसीलिए अगर आपको भी एक टिकट चाहिए इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए तो आप इवेंट टिकट्स न्यूजीलैंड यानी कि eventtickets.co.nz ये विजिट कर सकते हैं, टिकट्स ग्रैब कर सकते हैं। और जानकारियों के लिए आप स्वप्निल शाह को कॉल भी कर सकते हैं 02243947436 पर।
1: फिलहाल 7:30 न्यूज हेडलाइंस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आज के आपके राशि वाइब्स।

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: तो सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज आपके लिए कहा गया है क्रिएटिव कामों में आज आप काफी सक्सेस हासिल करेंगे, आपके काम को प्रेज किया जाएगा। बिजनेस में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स या ट्रायल्स आप कर सकते हैं, समय अच्छा है, फायदा उठाना आपके हाथ में है।
3: इसके अलावा वृष ने टॉरस, आज आपके लिए वैसे बताया जा रहा है कि आज का दिन आपके लिए सबसे पहले ये कहा गया है कि किसी ट्रिप पर आपका जाने का बन सकता है, हो सकता है कि ये आपके काम से आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, बट व्हाटएवर द सिचुएशन इज, ये अचानक से होगा। किसी शुभ काम में भाग लेने का मौका भी आपको मिलेगा और स्वादिष्ट भोजन का आनंद आज आप जरूर उठाएंगे।
2: और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, दौड़ धूप कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी जिसमें आपका समय बर्बाद होगा, काम में मन नहीं लगेगा, लेन देन करते समय जल्दबाजी ना करें और किसी खास व्यक्ति के साथ आज कुछ अनबन आपकी हो सकती है।
3: कीमती चीजों को संभाल कर रखें, शारीरिक कष्ट भी संभव है, इसलिए खुद का ख्याल रखें। परिवार में किसी सदस्य के हेल्थ को लेकर थोड़े से वरीड आज आप रहेंगे और ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें किसी की किसी को आपको नीचा दिखाने को पड़े और तभी जाकर आपका काम जो ये बने। अगर ऐसा कुछ आप करने वाले हैं आज तो इससे दूर रहे, ऐसा कर कहने कैंसेरियंस के लिए बताया गया है।
2: उसके बाद सिंह यानी लियो, आज अपने बोल चाल पर कंट्रोल रखें, कहीं से कोई अच्छी खबर मिलेगी जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। घर पर मेहमानों का भी आना हो सकता है जिससे आपके खर्चे आज बढ़ सकते हैं।
3: कन्या यानी कि वर्गो, किस्मत साथ देगी आपका आज, जो भी आप सोच रहे हैं वैसा अंजाम आपको मिलेगा आपके काम में आज। वैसे ये भी आपके लिए बताया गया है, बहुत अच्छा दिन है, काफी अच्छी चीजें होंगी आपके साथ, बिजनेस वाइज भी यू विल सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, किसी बड़ी समस्या का हल भी आज आपको मिलेगा।
2: तुला यानी लिब्रा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अगर कंट्रोल नहीं किया तो लोन लेना पड़ेगा आपको, किसी अनजाने पर आप ऐसे ही आग बंद करके जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, कुछ चीजों को लेकर आप टेंस रहेंगे, स्पेशली काम में कुछ डिलेज जो है ये हो सकते हैं।
3: और उसके साथ साथ आपको याद दिला दें कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले में आज चीजें थोड़ा आपको यू नो होल्ड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है रिलेशनशिप आपका जो है थोड़ा डामाडोल हो रहा है, इसीलिए भी पेशेंट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मेन प्रॉब्लम, सॉर्ट दैट आउट फर्स्ट, ऐसा आपके लिए कहा गया है। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है और साथ में लेन देन के मामले में आपको केयरफुल रहना है, ये सलाह आपको दी जा रही है आज।
2: धन यानी सेजिटेरियस, आराम का टाइम आज आपको मिलेगा, मेक श्योर यू रेस्ट अप प्रॉपर्ली, वैल्यूएबल चीजें संभाल कर रखे, काम में कुछ सुधार आप नोटिस करेंगे, इनकम बढ़ेगा आपका और सोशल वर्क करने के लिए आप काफी इंस्पायर्ड रहेंगे।
3: और उसके अलावा आज मकर यानी कैप्रिकॉन, आपके लिए कहा गया है जल्दबाजी या आर्ग्यूमेंट, इन दोनों चीजों से आपको बचना है आज, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें और किसी भी मामले

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: HBO Max is the all-killer, no-filler.
3: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
2: Exactly.
3: Right, we'll see. What have they got?
2: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
3: Whoa, okay, I get it. Fair call.
2: HBO Max, all killer, no filler. Stream now.
4: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
5: JB Hi-Fi's long weekend price frenzy on now. Save big on phones, TVs, computers and more. Get a whopping $500 off the Samsung 65-inch smart TV. Ends 15th July. JB, you've done it again.
6: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vogue 442-litre side-by-side fridge freezers, $699. Midea heat pump dryers, $499. Comfy 12-place dishwashers, $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: Each season, our growers bring you only the freshest seasonal produce, like New Zealand-grown loose avocados, a fresh deal at just $2 for $3.50. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
8: Feed the faith with the 1NZ Warriors range, exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players, only at Wendy's. T's and C's apply.
9: The Breakfast Show with Weetie and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
11: Celebrity Alarm. Hit it.
12: 21 मिनट हुए हैं 7 बजकर और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आज के सेलिब्रिटी अलार्म का वक्त हो चुका है, तो आप तैयार हैं?
13: मैं तो तैयार हूँ. आई डोंट नो अबाउट यू, आप बताइए.
12: मैं भी तैयार हूँ. सबसे पहले आवाज जो है ये आप सुन लें.
14: पहले नहीं पता था, पहले तो मुझे फेमस होना था. सो जब थोड़ा थोड़ा फेम मिला मुझे बड़ा अच्छा लगता था, सब लाइक कर रहे हैं, राइट. एंड देन यार ना मिले जब गाना आया, आई थिंक दैट वाज 2014.
12: तो ये है आज की सेलिब्रिटी.
13: कोशिश आपकी पूरी थी कि लोगों को पता ना चले कौन है, पर थोड़ा सा आपका मामला गड़बड़ हो गया.
12: हाँ, पर फिर भी चलेगा. अभी देखिए ना,
13: अभी भी शायद कई लोग जो ये नहीं पहचान पाए कि ये कौन है. बट लेट्स सी, मुझे तो पता चल गया कि ये कौन है. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मैं इनिशियली नहीं पहचान पाई थी, बट दैट वन क्लू गेव इट अवे फॉर मी. बट अगर आपने पहचान लिया कि ये कौन है तो हमें भी बताइए. जानना है हमें कि आप में से कितने लोग सही और कितने लोग गलत आंसर्स दे रहे हैं. ऑल यू नीड टू डू इज BF लिखना है. और आपको क्या लगता है कौन है ये सेलिब्रिटी, इनका नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, और हमारे पास 5599 पर आपको ये सेंड कर देना है.
12: आज तो सिंपल, आज तो सेलिब्रिटी ने खुद क्लू दे दिया.
13: हाँ, कि ये कौन है, इन्होंने खुद रिवील कर दिया.
12: तो आप कितने ध्यान से सुन रहे थे अभी पता चलेगा. BF आंसर और नाम ये 5599 पर आप हमें भेजें.
14: पहले नहीं पता था, पहले तो मुझे फेमस होना था. सो जब थोड़ा थोड़ा फेम मिला मुझे बड़ा अच्छा लगता था.
12: तो ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी. BF आंसर और नाम ये आप हमारे पास भेजें. थोड़ी देर बाद न्यूज हेडलाइंस हम आपके लिए लेकर आएंगे.
15: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
16: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
17: Brought
18: to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: headlines. सुबह के मुख्य समाचारों में माउंट तारानाकी पर बर्फ और खराब मौसम में फंसे तीन ट्रैम्पर्स को एक बड़े सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया है, जिनमें से दो को गंभीर चोटें आई हैं। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर सीधे नहीं पहुंच सका, इसलिए एक अल्पाइन रेस्क्यू मेंबर को ऊपर विंच से उतारा गया, जो पैदल चल के उन तक पहुंचा और मौसम साफ होने पर सभी को सेफ निकाला गया। न्यूजीलैंड और इंडिया ने काउंटर टेररिज्म पर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया है, ताकि टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कोऑपरेशन को मजबूत और इंटेलिजेंस एक्सचेंज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके। दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके जीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनाने की बात कही है। नेशंस रग्बी चैंपियनशिप के अंतर्गत इस सप्ताह अंत दो अनबीटन टीमों का मुकाबला होने को है। इसी शनिवार को रात 7 बजे ईडन पार्क पर ऑल ब्लैक्स और आयरलैंड का मैच खेला जाएगा। इसके अलावा फिजी में एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग के मैचेस जो है ये सप्ताह अंत खेले गए। बाकी जीत सुवा के खिलाफ 2-1 से हुई। उसके अलावा लंबासा की जीत नांदी के खिलाफ हुई। रेवा ने नसीन को 5-2 से हराया, जबकि नावुआ की जीत लौटोका के खिलाफ हुई। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। विजिट indelibleholmes.co.nz.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
1: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living. Hum, accurate traffic.
3: Would you trade in your house?
4: Final day today, high of 17 degrees. Coming in, Southern Motorway, 34 minutes, Manukau to town, 55 from Drury. We're slow, Papakura on and off to Mount Wellington, then Patchy to Rimuera. Southwestern, bit slow northbound through Whitty. Northwestern, 26 minutes in from Massey, bit slow there, and then slow all the way from Point Chev, heavy at times. Northern, 25 in from Constellation, heavy there to Sunnynook, slow to the bridge.
3: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
5: Right now, many of NZ Blood's regular donors can't donate due to sickness, school holidays and the short week. So please, come off the bench and give blood and help save up to 3 lives. Book now at nzblood.co.nz.
6: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get 2 pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
7: From Christopher Nolan.
8: No one could stand between me and home.
7: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, with Zendaya and Charlize Theron. The Odyssey, in cinemas July 16. Rating TBC.
9: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
10: Maddie didn't think she needed a DVS system.
11: I've got a heat pump.
10: That should do, but it didn't do it, did it, Maddie?
11: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
10: So Maddie got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
12: Parents, I see you. You need to make a quick pop to the shops? Then boom! One kid has a last minute birthday invite, another kid has gum in their hair, and you've got work calls up the wazoo. That quick trip to the shops? Not happening. Don't go out. Tap in. Get prezzies, cards and hair stuff from the warehouse, and dinner from your local, delivered to your door with DoorDash. Now that's a good call.
13: Dash!
14: Bollywood.
15: World's best. Hamari good brands nahi hai.
14: The
2: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Birthday greetings.
13: Iska birthday bhai?
14: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
13: Happy birthday to you.
0: मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज का दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. आज एंजेला प्रसाद जी अपनी सालगिरह आप मना रही हैं. खुशी के इस मौके पर अश्नील हैं, मोनिका हैं, साथ में शाइनल है और आपके जितने भी परिवार वाले हैं, संजू हैं, दीप्ति हैं, श्वेता हैं, सभी ने आपको याद किया है और सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं. हम सभी की ओर से भी आज का ये स्पेशल डे आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.
15: वैसे अगर आज आपका भी बर्थडे है या आपकी शादी की सालगिरह है, हमारी हम टीम की ओर से आपको ढेर सारे बेस्ट विशेस आज आपकी खास दिन पर.
0: मॉर्निंग मैडनेस. अभी देखिए 25 मिनट रह गए हैं 8 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज का हमारा जो सेलिब्रिटी अलार्म है, जिस तरह से क्लू आज के सेलिब्रिटी ने खुद दे दिया था, मुझे तो लगा था कि ये बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा.
15: हाँ, डिफिकल्टी तो फिर भी हुई है बहुत से लोगों को शायद आवाज पहचानने में कि किनकी आवाज है. But the sad part for us that we've got a few people जिन्होंने कहीं ना कहीं आवाज़ पहचान ली है, so which is why we cannot get the same voice tomorrow. Now we have to reveal कि ये कौन है.
0: हाँ, तो रिवील करेंगे अराउंड थ्रोबैक. तो आपको हम 5-4 मिनटों का टाइम उन लोगों को देना चाहेंगे जिनको शायद अभी तक पता नहीं है कि ये कौन है.
16: पहले नहीं पता था, पहले तो मुझे फेमस होना था. सो जब थोड़ा थोड़ा फेम मिला मुझे बड़ा अच्छा लगता था सब.
0: तो बताइए कि ये कौन सेलिब्रिटी है और अगर आपको क्लू देना हो तो आप कौन सा क्या क्लू देंगे इनके बारे में.
15: आज सुबह ही हमने इनके बारे में बातें की थी.
0: हाँ, लो भाई, पिछले घंटे ही हमने इनके बारे में बातें की थी. तो आप बताइए कि ये हमारी ये सेलिब्रिटी कौन है. BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेज सकते हैं.
15: और जब तक कि आप अपना जवाब भेज रहे हैं हमारे पास, आपको ये भी याद दिला दें कि बहुत सी चीजें जो है ये सुपर सिटी ऑकलैंड में हो रही है और इनका हिस्सा बनने का मौका भी आपको श्योरली मिल रहा है. वैसे रिमाइंडिंग यू ऑल दैट दिस सैटरडे यानी 18th ऑफ जुलाई को, इट्स नॉट फार अवे. अब तो दिन उंगलियों पर ही गिन सकते हैं. आज मंडे है, फिर ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन कम्स सैटरडे. 18th ऑफ जुलाई को ऑकलैंड में होने जा रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडी इवेंट्स ऑफ दिस ईयर, क्योंकि कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड एंड दे आर ऑल सेट टू एंटरटेन यू. कह सकते हैं कि इंडिया के जो टेलीविजन इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स हैं और राइट या इन फ्रंट ऑफ यू जब ये परफॉर्म करने वाले हैं तो आपको मौका मिलेगा अपने लव्ड वंस के साथ इनको एक्सपीरियंस करने का, इनके कमाल की कॉमेडी का मजा जो है ये लेने का, इनको इंजॉय करने का. और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अगर जो आप अपने टिकट्स समय पर ले लेते हैं तो,
0: क्योंकि अब बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स जो है ये बाकी रह गए हैं फॉर द ग्रेट कॉमेडी नाइट इसी सैटरडे को जो होने जा रहा है. ऑल यू हैव गॉट टू डू इज जल्द से जल्द टिकट्स ले ले बिफोर इट सोल्ड आउट. bookmyevent.co.nz, रिमेंबर bookmyevent.co.nz से अपने टिकट्स आप ले ले और तैयार हो जाए हंसी भरी एक रात के लिए. यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि ये ऑडियंस से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं ना.
15: हाँ, आपको भी मौका मिल सकता है. ये नेवर नो, क्योंकि इनका जो तरीका ही है इज बेसिकली कहीं ना कहीं नॉट जस्ट इंटरेक्टिंग विद द फेलो कॉमेडियन और विद ईच अदर, लेकिन ऑडियंस के साथ भी कहीं ना कहीं इनका इंटरेक्शन जो है हिलेरियस मोमेंट बन ही जाता है. एक ऐसा अनफॉरगेटेबल नाइट जहां पर नॉन स्टॉप लाफ्टर हो, बहुत सारे हिलेरियस लाइव परफॉर्मेंसेस तो होंगे ही और इंटरेक्शन की बातें जो हमने की, हु नोज यू ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द आर्टिस्ट्स. एक ऐसा मोमेंट जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरी जो है ये बन जाए. परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट है ये, बच्चों के लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके बुजुर्गों के लिए भी है. और ऐसा एक मोमेंट जहां पर आपको अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ एक बहुत ही हिलेरियस नाइट अगर स्पेंड करने को मिले देन व्हाई नॉट. एंड अनदर वेरी गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर शो इज कि इसके टिकट्स जब आप ले रहे हैं यू वोंट फील द बर्डन ऑन योर पॉकेट, क्योंकि आफ्टर पे ऑप्शंस भी अवेलेबल है.
0: So remember, bookmyevent.co.nz विजिट करें अगर टिकट्स नहीं लिए हैं. जल्द से जल्द द ग्रेट कॉमेडी नाइट फीचरिंग कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर, इसके लिए अपने टिकट्स आप ले लें एंड गेट रेडी फॉर दिस सैटरडे.

0: Show. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Traffic.
2: Kitchen mania. 17th birthday.
3: A high of 17 should stay mostly fine today. Into the city, not too horrible this morning. Southern a bit slow. 39 minutes Manukau to town. We're slow on and off all the way from Papakura to Rimuera. The northwestern 24 minutes in from Massey fairly quick. We're slow from Point Sheep, a bit heavy at times. Northern 22 in from Constellation. Heavy there to Sunny Nook and slow patches to the bridge. Southwestern slow northbound through Whitty.
2: You could win 10k when you order your new Kitchen Mania kitchen. T's and C's apply.
4: First impressions happen before customers walk through the door. If your signage looks faded or hard to read, people assume more than you think. Speedy Signs creates sharp, professional shopfront signage that makes your business look open, confident, and ready for business. Sometimes the quickest way to lift foot traffic is simply to upgrade your signage. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के
6: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
7: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
8: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Tūriki, all together Auckland.

0: 13 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। सबसे पहले तो आज के हमारे सेलिब्रिटी को अब रिवील करने का टाइम आ चुका है।
1: बिल्कुल, जैसे कि हमने ऐसे कहा था कि अराउंड थ्रोबैक हम आपको बताएंगे कि आज की सेलिब्रिटी कौन है, लेकिन उससे पहले कुछ कोशिशें जरूर की गई हैं। थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए। दिव्या है, साथ में अरफाज है, और 8 या 9 7 4 9 आपका मैसेज आया है, 0164 आपने भी अपना मैसेज भेजा है। शालिनी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। चरीशा है, फ्रांसिना ने जवाब भेजा, अनफॉर्चुनेटली इनका आंसर गलत हो गया। इन्होंने कहा थैंक्स फॉर द हिंट्स, हैव अ नाइस वन। थैंक यू सो मच फ्रांसिना, हैव अ नाइस वन टू यू टू। कहीं ना कहीं हिंट इसलिए गलत हो, मतलब जवाब आपका गलत हो गया क्योंकि आपने हिंट पे फोकस नहीं किया, आपने नहीं हिंट पे फोकस किया बट इवेलुएट नहीं किया शायद इनकी आवाज,
0: गलत गलत चीज
1: गलत शख्स को पकड़ लिया आपने,
0: आपने गलत चीज को हिंट समझ लिया।
1: हाँ,
0: खैर जो भी हो, थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए। और आज सेलिब्रिटी अलार्म में हमारी सेलिब्रिटी थी
1: जैस्मिन सैंडलेस, जिनके बारे में आज हमने बातें की थी कि इनकी सगाई हो चुकी है और अपने जो टूर के तहत, ड्रीम गर्ल टूर के तहत इन्होंने रिवील भी किया एंड अपने जो मंगेतर हैं इनको लोगों को मिलवाया भी, इंट्रोड्यूस भी किया इन्होंने।
0: तो कुछ देर बाद दिस इन स्पोर्ट्स अपडेट, अगले घंटे आज का व्हाट्स योर टेक में भी हिस्सा लेने का मौका हम आपको देंगे। शादियों में खाने को लेकर झगड़ा जो है ये कोई नई बात नहीं है,
1: नॉट एट ऑल।
0: और एक और नई कहानी जो है ये आई है और ये भी बिहार की है, जहां पर मोहम्मद अब्दुल्ला यानी चांद का निकाह जो है पिछले थर्सडे को मोतो की बेटी से हुई।
1: किसकी बेटी?
0: मोतो, मोहम्मद मोहम्मद जावेद उर्फ मोतो की बेटी।
1: ओके,
0: तो मोहम्मद अनवर और मोतो के बच्चों का निकाह जो है ये हुआ। सब कुछ बहुत ही शांति से हुआ, पीसफुल था, पीपल थरली एंजॉयड द वेडिंग। और उसके बाद जब बाराती खाना खाने बैठे तब मामला उठ खड़ा हुआ।
1: क्या हो गया?
0: खाने से वो खुश नहीं थे, उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने कहा था कि खाने में मटन होगा,
1: हाँ,
0: लेकिन यहाँ तो चिकन है।
1: ओ अच्छा, इस बात पे।
0: हाँ, उसके बाद गर्मा गर्मी हुई लड़की वालों के बीच और लड़कों वालों के बीच। हाँ, और उसके गर्मा गर्मी के चलते डंडे निकाले गए।
1: ओहो,
0: और दोनों ओर से जमकर लड़ाई
1: हो गया क्या?
0: हाँ, जमकर लड़ाई हुई। और जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें तो ये भी कहा गया है कि कुछ लोग तलवार भी लेकर आ गए।
1: ओह गुडनेस, मतलब इतना क्या यार, अगर खाने का सिर्फ यही था कि मटन वादा किया गया, चिकन आ गया, तो व्हाट्स द बिग डील? आई जस्ट डोंट गेट इट, लाइक उसके चलते इतनी क्या मार कुटाई चलने लगी यार, लाठी हो गई, तलवार हो गई, ये सारी चीजें लेकर वैसे भी शादी में कौन जाता है।
0: अब जो दूल्हे के रिश्तेदार हैं उन्होंने बताया कि जब प्लेट सेव किए गए उनको चिकन मिला और उनको मेन्यू में बताया गया था कि मटन होगा, और उसके बाद गर्मा गर्मी हुई और वीडियोस जो है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए हैं। जो लोग घायल हुए, तकरीबन एक दर्जन लोग घायल हुए हैं, उनको बख्तियारपुर के एक अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ा।
1: ओह वाओ, दिस इज,
0: ये कैसा हुआ था,
1: लाइक शॉकिंग वाला हुआ, दैट आई एम शॉक्ड कि मतलब ऐसा भी होता है।
0: ये झगड़ा तभी रुका जब पुलिस जाकर वहां पहुंची, तब पुलिस ने जाकर मामले को ठंडा किया,
1: तब जाकर सब आराम हुआ।
0: हाँ, सब आराम नहीं हुआ, झगड़ा खत्म हो गया,
1: काम हो गया। काम तमाम हुआ कहीं ना कहीं, बट आई एम लाइक रियली शॉक्ड क्योंकि आई थिंक आई हैव नॉट विटनेस्ड एनीथिंग लाइक दिस, मैंने तो कभी ऐसा विटनेस नहीं किया है, एंड ग्लैडली आई कैन से कि आई हैव नेवर विटनेस्ड समथिंग लाइक दिस। बट इट्स बेसिकली, अगर आपने कभी कुछ ऐसा विटनेस किया हो जहाँ पर शादी में इतनी छोटी सी बात की वजह से भी क्या झगड़े हो जाते हैं, इट्स शॉकिंग टू मी। मैंने सिर्फ खबरों में ही सुना है ये चीज,
0: मैंने भी खबरों में ही सुनी है, उसके अलावा और कभी तो कहीं शादी में यू नो खाने को लेकर झगड़ा ये मैंने देखा नहीं है। हाँ,
1: लाइकवाइज
0: जितनी भी जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, वो भी वो बस खबरों तक ही लिमिटेड है। आपका अगर कभी लाइव ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो डू लेट अस नो।
1: और आपने किस तरह का झगड़ा विटनेस किया शादियों में, किस कारण से झगड़े हुए वो का आपने विटनेस किया? मैंने तो विटनेस किया हुआ ऐसे जहाँ पे रिश्तेदार नाराज हो जाते क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता ना, द इम्पोर्टेंस दे थिंक दे डिजर्व वो नहीं मिलता, तो इस हिसाब से झगड़े मैंने विटनेस किए हुए, बट नॉट खाने को लेकर।
0: अच्छा, सो अगर आपके पास अपना खुद का कोई एक्सपीरियंस है तो वो 5599 पर हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं. फिलहाल आज का हमारा अगला थ्रोबैक आप एंजॉय करें, इसके बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम पर आपकी खातिर हम लेकर आने वाले हैं. उदित नारायण और अलका याग्निक से ये गाना हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, और ये जो गाना है 2000 में आई थी फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा. अभी से कैन यू इमेजिन इट्स 26 ईयर्स ओल्ड.
1: अरे इससे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये फिल्म जो है इट्स नॉट ए ओरिजिनल स्टोरी, ये एक इंग्लिश फिल्म की हिंदी रीमेक है. बाय द वे एक स्टोरी से सैंड्रा बुलक ने इस फिल्म में काम किया था जिसको हिंदी में रीमेक किया गया था. सो द कैरेक्टर प्लेड बाय सलमान खान इन दिस मूवी, हॉलीवुड वाली फिल्म में सैंड्रा बुलक ने वो कैरेक्टर प्ले किया था.
0: है?
1: मतलब मेल और फीमेल कैरेक्टर्स को सेंट्रिक जो कहानियां हैं हॉलीवुड में इट वॉज अ फीमेल कैरेक्टर सेंट्रिक मूवी, और बॉलीवुड में इट वॉज अ मेल सेंट्रिक कैरेक्टर मूवी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग.
0: एंजॉय द सॉन्ग.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 6.5 degrees ho chuka hai Auckland mein aaj ka high, 16 overnight kam se kam 10 degrees. Subah aur sham ke waqt kuch halki barish ho sakti hai. Sunset aaj ka sham 5:23 par hoga.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: So, आज ट्रेंड पेट्रोल में आपके लिए हम लेकर आए हैं एक अपडेट, एंड दिस पर्टिकुलर अपडेट इज अबाउट यू नो व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ इन न्यूजीलैंड. बहुत सी चीज़ें जो है जिसके बारे में बातें हो रही हैं फिलहाल, बट आई थिंक ओवर द वीकेंड जो इवेंट हुआ विच वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स, जहाँ पर 40 सालों में पहली बार भारत के कोई प्रधानमंत्री जो है ये न्यूजीलैंड दौरे पर आए, और ये जो इवेंट हुआ इसके बारे में काफ़ी बातें जो ये हो रही है. डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर ट्रेंडिंग, बट देयर इज वन क्लिप विच इज ट्रेंडिंग राइट नाउ ऑनलाइन. और ये पर्टिकुलर क्लिप जो है ये आई थिंक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्पीच दे रहे थे उस दौरान उसका एक कट है, ये वायरल हो रहा है. अपेरेंटली इस क्लिप में उन्होंने कहा कि ये उनका पहला विजिट नहीं है टू न्यूजीलैंड, दो दिस इज द फर्स्ट विजिट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लेकिन आज से कई सालों पहले, आई थिंक 25-30 साल पहले जब ये आए थे न्यूजीलैंड, जब उस समय पर शायद ये इतने जाने माने नहीं थे और उस समय पर ये भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तब ये न्यूजीलैंड एक दौरे पर आए थे. एक ऑफिशियल आई थिंक इवेंट था जिसकी वजह से ये यहाँ पर आए थे, और उस दौरान इनको किसी ने तीन चीज़ें जो है ये दी थी न्यूजीलैंड से. एक तो ग्लव्स था, एक मैं भूल गई क्या था, और एक मफला लाइक गले में पहनने के लिए. यस, तो ये इनको मिला था, और वो पहनकर उस दिन इवेंट पर आए थे, स्टेज पर अपना स्पीच दे रहे थे. तो उन्होंने गले का अपना मफला जो है ये भी उतार कर दिखाया सभी को कि ये 25 साल पुराना है, जब मैं पहली बार आया था न्यूजीलैंड तब मेरे को किसी ने दिया था, एंड आई हैव केप्ट इट, अभी भी अच्छा है, अच्छा खासा है. एंड ही शोड इट टू एवरीवन. एंड ऑफकोर्स देयर आर सम अदर इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस व्हिच हैपेंड ओवर द वीकेंड, जिसके बारे में भी ज़्यादा हमें बोलने की जरूरत है नहीं, बिकॉज यू मस्ट हैव डेफिनेटली सीन इट एवरीवेयर online, on your social media pages, or different logo ko update jo hai iske bare mein dete hue, but this particular clip is quite trending right now.
1: Bilkul, aur sath hi mein ek aur cheez jo abhi trend kar raha hai, ye Bharat ke Andhra Pradesh ka ek parivar hai.
3: Aisa kya hua wahan pe?
1: Ye family jo hai inhone एक्सटेंडेड फैमिली जो है उसको एज एन एग्जाम्पल जो है अब पेश किया है पूरी दुनिया में. और इनका जो एक्सटेंडेड फैमिली में है, फैमिली है, इसमें कुल मिलाकर 83 मेंबर्स हैं.
3: वाओ, व्हाट,
1: 83 मेंबर्स, 6 जनरेशंस. ये सभी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में रहते हैं, और हेडेड बाय हनुमंत रायदू और मुतियालप्पा. इसमें 6 सास हैं, 14 बहू, 20 चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डरली मेंबर्स. इस साइज और द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि 4 घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.
3: ओह, दैट्स हाउ द 83 फैमिलीज मेंबर्स आर लिविंग देयर.
1: या पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फैमिली जो है कई जनरेशन से एक साथ रह रही है, शेयरिंग मील्स, फाइनेंसेस, एवरीडे हाउस होल्ड ड्यूटीज. और वाइल दे यू नो 4 घर ऑक्यूपाई करते हैं, वो अपने आप को एक फैमिली कंसीडर करते हैं, एंड हर एक मामले में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं.
3: दैट इज अमेजिंग यार. आई मीन आजकल के जमाने में स्पेशली जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज एंड नॉट जस्ट न्यूक्लियर फैमिलीज, ओनली द कपल्स जो है ये एक साथ रहना प्रेफर करते हैं, दैट इज़ वट अ लॉट ऑफ पीपल आर यू नो टॉकिंग अबाउट. तो वहीं पर एन एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ 83 मेंबर्स, इट्स लाइक अ वेरी बिग डील, यू नो.
1: एग्जैक्टली. थोड़ी देर बाद आज का व्हाट्स योर टेक भी हम आपके लिए लेकर आएंगे.

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Coffee? The usual?
2: How about the unusual?
3: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
4: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
5: What if your next holiday wasn't just a holiday,
6: but the adventure everyone talks about?
5: Imagine chasing waterfalls,
6: wandering lush rice terraces,
5: catching unforgettable sunsets,
6: and relaxing at iconic beach clubs.
5: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
6: discovering incredible temples,
5: tasting world-famous street food.
6: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
7: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. We have trade specialists in store dedicated to you and your trade. Whether it's sourcing supplies, quoting on jobs, or arranging delivery direct to site. And our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Plus, you can call our 134 trade team on 0800 134 872 for quick quotes on a wide range of supplies, saving you time and hassle. Bunnings Trade, helping business is our trade.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: What's your take?
13: 17 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. अब व्हाट्स योर टेक का वक्त हो चुका है और आज एक ऐसा टॉपिक हम लेकर आए हैं जिससे हम एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर सकते हैं बाय शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस.
14: ओके,
13: अपना खुद का एक्सपीरियंस. टाइम्स ऑफ इंडिया पर आज सुबह मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसके बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि इसके बारे में बातें करना काफी जरूरी है. एक चीज होती है इम्पल्सिव बाइंग. इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं जब टेंडेंसी होती है कि आप गुड्स खरीदें या सर्विसेज खरीदें अचानक से ही बहुत कम या नो प्री प्लानिंग के साथ, या फिर उसका नतीजा क्या होगा वो आप नहीं सोचते हैं,
14: उसको बिना सोचे समझे बेसिकली आप अपना परचेज करते हैं.
13: तो इम्पल्सिव बाइंग उसे कहते हैं. और क्यों ये होता है, इसके लिए पीछे कुछ ट्रिगर्स जो है ये दिए गए हैं. एक है इमोशनल ग्रैबिंग. इमोशनल ग्रैबिंग हम करते हैं टू चेंज आवर मूड, चाहे रिटेल थेरेपी हो, या फिर कुछ लोग उदास होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं, या फिर कुछ लोग सेलिब्रेशन के लिए इम्पल्सिव शॉपिंग जो है ये करते हैं. दूसरा जो ट्रिगर है फोमो,
14: फियर ऑफ मिसिंग आउट.
13: यस, कि आपने कहीं देखा डिस्काउंट ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, सोचा समझा कुछ नहीं खरीद लिया.
14: राइट.
13: तीसरा है डोपामाइन हिट्स, जब ब्रेन जो है

0: गौर करते हैं।
1: ओके, तो आप अपनी अपनी राय जो है हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, और आपको बस सबसे पहले तो कॉल करना होगा 0800 004866 पर, और फिर हमें बता सकते हैं आप आपकी राय क्या है इस मामले में,
0: आपका एक्सपीरियंस कैसा है जब आप शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, या फिर क्या इन ये जो रीजंस दिए गए हैं इमोशनल ग्रैबिंग, फोमो, डोपामाइन हिट्स, या फिर अवेलेबिलिटी, डिजिटली सब कुछ अवेलेबल होना, क्या हैव यू फॉलन टू ओ एनी ऑफ दीज, क्या आपने कभी ऐसे शॉपिंग की है और वो अचानक ही होता है, आप एकदम फील गुड करने लगते हैं कि भाई ये तो मुझे लेना ही पड़ेगा, और आप शॉपिंग कर लेते हैं फिर बाद में उसके बारे में शायद सोचते हैं, तो क्या आपने कभी इम्पल्सिव शॉपिंग की है, और इम्पल्सिव शॉपिंग से बचने के लिए आप क्या करते हैं? 0800 हम, लगता है कि हमारे बीच में किसी ने भी
1: कभी किया ही नहीं इम्पल्सिव शॉपिंग,
0: हाँ, और उससे बचने के लिए भी कुछ नहीं किया। गुड मॉर्निंग एफास।
2: गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग?
0: हम तो ठीक
1: है, बढ़िया है, आप सुनाइए एफास, आप कैसे हो?
2: मैं भी अच्छा हूँ। वैसे इस काइंड ऑफ शॉपिंग मैंने तो ऐसे की नहीं है, मैं हमेशा बचता हूँ, तो मैं यूजुअली मैं एड्स देखना ही अवॉइड करता हूँ पहली बार।
1: एड्स देखना अवॉइड करते
2: हैं? हाँ, मतलब मैं वो सब चीजों की एड्स या ऐसे जैसे ऑनलाइन जाकर कुछ चेक करना वो सब मैं अवॉइड करता हूँ। और मेरे वाइफ का भी सिमिलर है, तो बट हाँ वंस इन द ईयर ऐसा होता है कि आपने कुछ खरीदा अगर नहीं है और ऐसा कुछ टाइम हो जाता है ना काफी, तो फिर यू फील फ्रॉम इनसाइड कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, एंड देन वी जस्ट गो। और पर वो टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि खरीदा नहीं है मतलब खरीदना जरूरी है, इफ यू लाइक समथिंग एंड इफ यू फाउंड दैट द प्राइस इज वर्थ ऑफ इट तो हम वो खरीदते हैं, या तो फिर वी जस्ट लेफ्ट देयर यू नो, बस ऐसे ही। तो बट वो बात है, जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल में मैंने ऐसे देखा है कि काफी ऐसा होता है कि दे जस्ट लाइक एक टाइम पीरियड के बाद दे जस्ट वांट टू बाय समथिंग और समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज होती है वो बीमार।
0: ओके,
2: तो मैंने तो ऐसे नहीं किया कभी।
0: थैंक यू एफास अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपने भी अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा, या कुछ तरीके जो है ये आपने अपनाए होंगे कि कैसे आप अवॉइड करें इम्पल्सिव बाइंग, और क्या आपने हैव यू एक्चुअली फॉलन टू एनी ऑफ दिस, इमोशनल ग्रैबिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, डोपामाइन हिट्स, या फिर जो फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग जिसको डिजिटल वॉलेट, वन क्लिक ऑर्डर, बाय नाउ पे लेटर, इन सारी चीज़ों को फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग कहते हैं, क्या आपने ऐसा कुछ किया है और उसके बाद उसका नतीजा क्या था, और फिर इम्पल्सिव बाइंग से बचने के लिए आप क्या करते हैं, ये बताने का मौका है आपके पास। 0800 हम, टाइम कम होता है इसीलिए प्लीज़ जल्दी से आप कॉल करें और अपना एक्सपीरियंस जो है ये आप शेयर कर सकते हैं। और जैसे एफाज ने बताया कि वो तो एडवर्ट्स देखना जो है ये अवॉइड करते हैं,
1: राइट,
0: एंड जब ज़रूरत हो तब जाते हैं, और फिर जब रियलाइज करते हैं कि अरे हमने तो इस साल कुछ खरीदा ही नहीं, और जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि कुछ खरीदेंगे भी।
1: बिल्कुल, तो आप भी हमें बता सकते हैं 0800 हम, 0800 004866 पर आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं अबाउट हाउ यू टैकल दिस सिचुएशन ऑफ इम्पल्स बाइंग, या फिर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है दैट यू लाइक टू शेयर विद अस, वो भी आप जरूर हमें बता सकते हैं। इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं लोगों के अपने अपने, और मेरा तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है, लाइक स्पेशली ऑनलाइन जो परचेज होता है, आप एक चीज आप ट्राई कर सकते हो, यू कैन, अगर आपको एक चीज है आपने ऑनलाइन देखी है कहीं पर, आप उसे एड टू कार्ट कर रहने दो, एंड देन यू सिट एंड थिंक अबाउट इट, डू यू रियली नीड इट, इवैल्यूएट द सिचुएशन। आई स्पेशली डू दैट विद अ लॉट ऑफ जो शॉपिंग होती है ऑनलाइन, अगर मेरे को करनी होती है, बिकॉज विच एवर वेबसाइट आई फॉलो और आई गो टू, स्पेशली कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं उसको लेकर, मैं एड टू कार्ट कर उस चीज़ को वहीं पर छोड़ देती हूँ, आई डोंट स्ट्रेट अवे बाय इट, एंड देन इट सिट देयर एंड आई इवैल्यूएट, इट सिट देयर एंड आई इवैल्यूएट, एंड सर्टेन दिनों बाद आई विल प्रोबब्ली फॉरगेट अबाउट इट, आई विल गो बैक एंड आई विल सी, एंड देन मुझे ऐसा लगेगा कि शायद अब इसकी ज़रूरत मुझे है नहीं, तो आई विल रिमूव इट। There are so many things in certain websites अभी तक मेरे add to cart पे मतलब it's still sitting there, I haven't bought it, it's just there, उसे देखकर मेरे को खुशी हो रही है कि

0: selected this, but I haven't spent money buying it, you know.
1: Okay.
0: Actual पैसे मैंने खर्च नहीं किए.
1: तो हुआ क्या है कि Instagram पर एक वीडियो जो है ये ब्लो अप हुआ है, बहुत सारे कमेंट्स एंड ऑल पॉजिटिव. और सुजी वेल्च ये 3 times न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर और साथ में NYU 10 प्रोफेसर हैं. इन्होंने एक फ्रेमवर्क जो है ये डेवलप किया और ये फ्रेमवर्क है 10-10-10.
0: ओके.
1: और कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. तो टाइम्स ऑफ इंडिया पर इसे पब्लिश किया गया है कि 10-10-10 रूल क्या है. कोई भी चॉइस के लिए कमिट करने से पहले और बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को 10-10-10 में डिवाइड करके डिसाइड करें. सबसे पहले कि जो फैसला आप ले रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस 10 मिनट्स बाद क्या होगा.
0: ओके.
1: फिर 10 महीनों में 10 महीनों में उसका नतीजा क्या होगा और 10 सालों में उसका नतीजा क्या होगा.
0: वेरी इंटरेस्टिंग.
1: एंड देन यू विल बी एबल टू मेक अ वेरी गुड डिसीजन
0: कि वो जरूरी है या नहीं है.
1: यस,
0: इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ गेटिंग इट डन. और डेफिनेटली अगर आपको ये प्रॉब्लम है या फिर यू नो समवन, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं. इट विल डेफिनेटली हेल्प देम, इट विल हेल्प देम मेक अ डिसीजन जो उनके लिए फाइनेंशियली सही हो. आई नो कि आप अभी कॉल नहीं कर रहे हैं ड्यू टू वट एवर रीजन्स यू हैव, बट अगर आप चाहें तो हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं. 5599 हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है, इस पर आप अपने मैसेजेस हमें जरूर भेज सकते हैं.
2: Hollywood's most wanted.
3: गुड्डी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: रश आवर आपके लिए जारी है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। चार बस्टर्स में आज आपके लिए दे दे प्यार दे टू, उसी फिल्म का ये गाना हम शामिल कर रहे थे। और इधर समय की ओर देखें तो बस 30 मिनट हो चुके हैं अभी 8 बजकर। अभी थोड़ी देर बाद आपके लिए न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये भी रहेगा, जिसके बाद द वर्ड्स गोइंग ऑन ये आपके लिए हम लेकर आएंगे।
1: By the way, आपको हम हमने 6:30 बजे के वक्त जैस्मिन सैंडलेस के बारे में बातें की। सेलिब्रिटी अलार्म में आज जैस्मिन सैंडलेस की आवाज आपको सुनाई। उसके बाद अभी आपने एक गाना सुना और आपको तो पता है कि करण औजला अपना पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर ऑकलैंड आ रहे हैं। स्पार्क अरेना में 25 अगस्त के रहेंगे और उनके साथ स्पेशल गेस्ट 21 जो है ये भी आ रहे हैं। और इसके लिए टिकट्स जो है बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं। आप hum.rover.nz विजिट कर सकते हैं या livenation.co.nz टिकट्स जो है ये जीतने के लिए। करण औजला पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर जो है इसके लिए अभी हम आपको एक डबल पास जीतने का मौका भी दे रहे हैं।
0: ओके,
1: तो हमने क्या किया है, अब हम देखेंगे कि आपने कितने केयरफुली या कितना ध्यान से सब चीजें जो है ऑन द ब्रेकफास्ट शो सुन रहे थे। तो आपको करना क्या होगा, अभी हमारे पास टेक्स्ट करना होगा। सबसे पहले कै ऐ आपको लिखना होगा, कै और ऐ के बीच में कोई स्पेस नहीं चाहिए, कै ऐ। उसके बाद करण औजला का कौन सा गाना आपने सुना, अपना नाम और अपना लोकेशन।
0: ओके,
1: ये चीजें आपको लिखकर भेजनी है। सही अगर आपने पकड़ लिया तो आपका नाम ड्रो में शामिल होगा, जहां एक डबल पास आप जीतेंगे। एंड यू कुड बी एट स्पार्क अरेना 25 अगस्त को करण औजला का पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर के दौरान।
0: राइट, तो ऑल यू नीड टू डू इज कै लिखना है सबसे पहले, फिर गाने का टाइटल लिखना है और हमारे पास 5599 पर आपको ये टेक्स्ट कर देना है।
1: हाँ, अपना नाम अपना लोकेशन भी आप लिखें।
0: राइट, तो आप जल्दी से हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड करें। लेट्स सी क्या आप हमारे साथ विजेता होते हैं या नहीं।
1: तो अभी पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों ने बहुत ही केयरफुली इस घंटे हमारा प्रोग्राम जो है ये सुना, और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ क्योंकि गाना तो अभी अभी हमने आपको सुनाया है। लेट्स सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई इट करेक्टली एंड गो इनटू द ड्रॉ।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
4: Accurate traffic.
5: Experience fun at Snow Planet.
6: Patchy cloud, final day with a high of 17. Motorways not too bad this morning. Southern, 40 minutes Manukau to town. Fine to Otahu, slow from there. Heavy at times to Remuera. Southwestern, fairly quick both ways. Just slow northbound at Whitty. Northwestern, 24 in from Massey. Slow from Point Chev. Just a few heavy spots. Northern, 24 in from Constellation. A bit heavy there, then slow patches to the bridge.
5: Ski, board, slide, tube. Fun for the whole family at Snow Planet. Not a million miles away.
7: Slide.

0: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
0: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply.
2: If you're at the finished stage of a build, Bunnings Trade is here to help. Shop our wide range of paint and accessories, lighting and final fixtures from leading brands. Call 134 Trade on 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
3: Farmers Long Weekend Sale is now on with 30 to 50% off kitchen, dining, bedding and towels. Up to 50% off furniture plus super deals and half price sleepyhead beds. Farmers Long Weekend Sale now on. Conditions and exclusions apply.
4: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
5: Lots.
4: Will they word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
5: Probably.
4: Am I paying for this free coffee?
5: Definitely.
4: Will they talk me into an upgrade?
5: Oh.
4: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
6: Cheer, Midas!
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
7: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Arbitoy and Hamilton.
9: 22 मिनट रह गए हैं 9 बजने में और ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग केयरफुली सुन रहे थे कि क्या हो रहा है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो हमने आपको दे दी है. अब डबल पास अगर आपको चाहिए, करण औजला और इनका पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर जो है, इसके लिए तो पार्टिसिपेट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा.
10: हमने आपको एक गाना सुनाया था करण औजला का, और वो गाना जो है आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो बस कुछ ही देर पहले प्ले हुआ. हमने आपसे ये पूछा कि वो जो गाना प्ले हुआ उसका टाइटल क्या था, और अगर आपको जवाब पता है तो आपको बस के ए लिखना है, फिर उसके बाद में गाने का टाइटल लिखना है, अपना नाम और पता लिखकर 5599 पर हमारे पास आपको ये भेज देना है.
9: तो अभी नव है, नवीन है, सिमरन, साथ में चरिशा है, ग्रीष्मा है, सिमरन है, निलेश हैं और विशाल. इतने लोगों ने अपने आंसर्स भेजे हैं. सही है या गलत ये तो हम अभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये गाना जो है हमने आपको तकरीबन 4-5 मिनट पहले सुनाया, और वो कौन सा गाना था. तो कै आई, उसके बाद करण औजला का कौन सा गाना आपने सुना, गाने का टाइटल आप लिखें, अपना नाम और अपना लोकेशन, इतनी चीज़ें लिखकर 5599 पर. अब बहुत ज़्यादा टाइम हम आपको नहीं देंगे, जब तक ये अगला गाना आप सुनेंगे तब तक का ही टाइम होगा आपके पास अपने आंसर्स जो है ये हमारे पास भेजने के लिए. इन द मीन टाइम आपको हम बताएं I-23 के बारे में. कभी आपने इसके बारे में कभी सुना है?
10: नहीं, मैं I-23 पहली बार सुन रही हूँ.
9: you know, लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी जिनके बारे में हम ये सोच लेते हैं कि भाई ये तो हमेशा रहेगा. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. और जो साइंटिस्ट एंटार्क्टिका पर रिसर्च कर रहे थे, वहाँ के जो आइसबर्ग्स हैं उनका उन पर रिसर्च कर रहे थे, उन्हीं में से एक आइसबर्ग था I-23.
10: आइसबर्ग का नाम था.
9: हाँ,
10: I-23.
9: और ये इतने लंबे समय से था, तकरीबन 40 सालों से, कि वो बस लैंडस्केप का हिस्सा ही बन चुका था. एंड आफ्टर अबाउट 40 years, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग हैज ब्रोकन इनटू टाइनी पीसेस एंड मेल्टेड अवे.
10: वो
9: इसका साइज कहते हैं कि बिगर देन लंदन, लार्जर देन गोवा.
10: आओ,
9: इतना बड़ा.
10: क्वाइट बिग.
9: या ऑब्वियसली. और उस नंबर से इस आइसबर्ग को साइंटिस्ट जो है ये आइडेंटिफाई करते थे. और अब इसने शुरू में कवर किया था 3,500 square kilometers. इट्स बिगर देन गोवा, रफली ट्वाइस द साइज ऑफ लंदन एंड 3 times द साइज ऑफ न्यूयॉर्क सिटी. इसका वेट एस्टिमेट किया गया था टू क्लोज टू 1 trillion tons.
10: वो
9: और 30 ईयर्स तक इट बेली मूव्ड. और जब अपने फाइनल जर्नी में इट वॉज अराउंड 2300 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स, धीरे धीरे धीरे धीरे फेड होता होता गया. एंड बाय मार्च दिस ईयर वो छोटा होकर 170 स्क्वायर किलोमीटर्स हो गया था, जस्ट अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इट वाज वंस. और अप्रैल में सैटेलाइट्स ने उसको आखिरी बार जो कैप्चर किया था, और अब देयर इज नथिंग टू कैप्चर क्योंकि It has melted away, na? Broken into tiny pieces and melted away.
10: Goodness, imagine something that was so big at a time. Ab hai hi nahi, exist hi nahi karta, kyunki wo samay ke saath melt ho chuka hai. And of course, it's basically because of the reasons, the obvious reasons, climate change and all. But something to really think about, na?
9: Yeah, ab D15 duniya ka sabse bada iceberg ho chuka hai. And let's see D15 jo hai ye kab tak hamare beech rehta hai. Kuch mila hum to iske bare mein research karke zarur aapko batayenge. But right now abhi to aapko hame batana hai, aapke batana hai.
10: करण औजला का वो गाना जो हमने आपके लिए आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो प्ले किया. गाने का टाइटल चाहिए हमें, अगर आपको याद हो कौन सा गाना बजा था, गाने का टाइटल लिखे, अपना नाम लिखे और अपना पता लिखकर 5599 पर हमारे पास आप सेंड कर दें. जब हम बोल रहे हैं अपना पता लिखना है आपको, वी डोंट मीन योर एक्चुअल एड्रेस विद एवरीथिंग. बेसिकली आपको सबर्ब जो है ये लिखना है कि किस सबर्ब से आप हमें सुन रहे हैं. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू.
9: सो यू हैव गॉट 4 मिनट्स. 4 मिनटों के अंदर अगर आप अपना जवाब सही सही भेज देते हैं तो आपका नाम ड्रो में शामिल होगा, जहां पर आप डबल पास जो है ये जीत सकते हैं. रिमेम्बर, कॉल्स पर आप आंसर्स नहीं दे सकते. कुछ लोग कॉल कर रहे हैं ना,
10: नहीं आपको टेक्स्ट करना है. दिस इज अ टेक्स्टिंग कंपटीशन.
9: तो कई आई आंसर, नाम और अपना लोकेशन, इतनी चीजें. 4 मिनटों का वक्त बहुत होता है, आप आराम से हमें भेज सकते हैं.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Standard traffic.
1: The warehouse is now on DoorDash.
2: Mostly fine one all day today, a high of 17 degrees. Motorways really good into the city. Northern quick, 22 minutes from Constellation Drive. Just a bit slow there to Sunnynook and then Esmond to the bridge. Northwestern, 24 minutes in from Massey. Fighter Point Chev, patchy there to the city. Southern, just under 40 minutes, Manukau to town. Fine to Otahu, a bit heavy there to the city. Southwestern, fine both ways.
1: DoorDash now delivers everything you need from the warehouse. Make a good call, get it delivered.
3: Trade Depot brings you New Zealand's lowest prices in home improvement. Midea 16-litre dehumidifiers, $219. Espresso machines, $109. Cordless stick vacuums, $99. Air fryers, $79. Save hundreds on beautiful home improvement products. Only at Trade Depot in Onehunga. Or shop online.
4: Hitting the open road these school holidays? Refuel at Zed with Afterpay. Shop snacks, fuel and more, and pay in four. Shop now with Afterpay at Zed. Fees, TCs and eligibility criteria apply.
5: Spark Satellite, powered by Starlink satellite to mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite-ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
6: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down and still earn Smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
7: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Arab 9 minute rahe hain, 9 bajne mein 9 minuton ke baad latest news and sports update aapke liye is program mein hum lekar aayenge.
10: तो तैयार रहिएगा इसके लिए हमारे साथ. और फिलहाल जितने लोगों ने हमारे पास अपने अपने मैसेजेस भेजे हैं फॉर द करण औजला डबल पास गिव अवे, जहां पर हमने आपसे कहा था ऑल यू नीड टू डू इज आपको बस के ही लिखना है, फिर उस गाने का टाइटल जो आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो आपके लिए प्ले हुआ, करण औजला का वो गाना, और अपने नाम और एड्रेस के साथ आपको हमारे पास टेक्स्ट करना है. तो जितने लोगों ने हमारे पास अपने अपने मैसेजेस भेजे हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए. सही तरीके से एंट्रीज आपकी आई हैं, तो आपके पास एक ऑटो रिप्लाई आया होगा अबाउट द शो, विच मीन्स योर नेम इज इन द ड्रो. और अगर आपका नाम ड्रो से निकलता है, विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू, जहां पर यू विल रिसीव अ डबल पास टू गो एंड वॉच नन अदर देन करण औजला.
9: सो स्टे ट्यून्ड, और भी कॉम्पिटिशन आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. वैसे थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में एक पब में लगी आग में कम से कम 27 लोगों के मारे जाने की खबर है. थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि आग के पीछे जो कारण है उसका अभी पता जो है ये लगाया जा रहा है. रॉयटर्स ने इसके बारे में रिपोर्ट जो है ये दी है, तो और भी डिटेल्स हम आपको देंगे. और क्या किसी ने कभी सोचा होगा कि मिस्ड कॉल्स के पीछे किसी का करियर जो है ये छुपा हो सकता है?
10: मिस्ड कॉल के पीछे कैसा करियर हो सकता है,
9: आपको बताएंगे आज हम ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, अगर वक्त रहा. इसीलिए बहुत ध्यान से आपको सुनना है.
10: वैसे आज का क्या बकते हो, ये अगले घंटे आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं. और ये स्टोरी कहीं और की नहीं बल्कि यही न्यूजीलैंड की स्टोरी है. और क्या हुआ है, क्या बकते हो में जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, जानने के लिए सुनते रहिएगा.
9: फिलहाल आपको वापस हम लेकर चल रहे हैं 25 साल पीछे. गोविंदा की फिल्म आई थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, आई थिंक लोया का किरदार इन्होंने निभाया था.
10: नहीं, मैंने देखी नहीं फिल्म, तो मुझे ज्यादा याद नहीं है.
9: इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सुष्मिता सेन के साथ उन्होंने इस फिल्म में काम किया था, और ये गाना भी मेरे ख्याल से उन्हीं दोनों पर पिक्चराइज किया गया था. तो आइए लेट्स गो बैक एंड रिफ्रेश दोस मेमोरीज, और आपके लिए उसी फिल्म का ये गाना आज का हमारा अगला थ्रोबैक, जिसके बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम पर आपके लिए हम लेकर आएंगे.

0: Accurate traffic.
1: Step up and give blood.
2: Mostly fine one all day today, a high of 17 degrees. Motorways really good into the city. Northern quick, 22 minutes from Constellation Drive. Just a bit slow there to Sunnynook and then Esmond to the bridge. Northwestern, 24 minutes in from Massey. Fighter Point Chev, patchy there to the city. Southern, just under 40 minutes, Manukau to town. Fine to Otahu, a bit heavy there to the city. Southwestern, fine both ways.
1: Give blood, save lives. Book now at nzblood.co.nz.
3: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
4: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: Rebel's long weekend sale is nearing the finish line with deals too hot to miss. It's the final days to score epic half-price deals on clothing, shoes and more. Plus, get a scorching 20 to 40% off store-wide. Hurry, sale ends Monday, only at Rebel Sport. See you later for T's and C's.
7: The Cooperative Bank has shared over $25 million in profit with our customers. Switch to the Cooperative Bank today and get a share of $25,000.
8: Better.
7: Bank better, New Zealand. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
9: You've known us as Fujitsu. We're now General. We've changed our name, but not who we are. Take control of your home comfort with this great offer. Right now, when you install any eligible General Airstage heat pump with Cool Finance, you'll pay no deposit and no interest for up to 36 months. Just get a General. It's New Zealand's favourite air.
10: Get a General.
11: Purchase by 31st August 26. Install by 30th September 26. Approved applicants only. T's and C's, lending criteria, fees and minimum spend apply. Credit by Qcard. See generalairstage.co.nz.
12: When you see them on the road, you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting her back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
13: Home. Time check.
14: Good morning, is samay theek 9 baj rahe hain.
13: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. The next phase of a coronial inquest into the Newland Mall attacker in Auckland gets underway today. Ahmed Samsuddin stabbed six people at a supermarket after taking a knife from the shelves in 2021 before being shot dead by police. Survivors gave evidence last year during the first phase of the inquest. Nearly two dozen firefighters have been tackling a blaze at a Kainga Ora property in South Auckland. Fens says the home was well alight when crews arrived at just after 4 a.m. Everybody got outside safely and it has now been extinguished. More people are being drawn back into the Christchurch CBD. Building consents for apartments reached a five-year high last year as the council pushes to bring 20,000 more residents into Central City. Councillor Jake McLellan says he's optimistic.
16: We're doing a pretty good job so far. I mean, every event we've had has gone flawlessly. So I think our infrastructure is modern, new and more than able to keep up.
15: At least 27 people have been killed after a huge fire tore through a Bangkok bar. Many of the dead were trapped in the venue's bathroom. The cause of the fire is under investigation. In sport, to tennis with Davis Cup Auckland, five Grand Slam titles for Jannik Sinner. The men's at number one, beating Alexander Zverev in four sets to earn back-to-back Wimbledon crowns.
17: There's no better place, honestly, to play tennis. I never take things for granted, playing in front of very, very special people.
15: And Brendan McCullum's been fired as England Test cricket coach, but will remain in charge of the T20 and ODI teams.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
18: World's best, hamari koi branch nahi hai.
13: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
14: Almost 8 degrees temperature ho chuka hai Auckland mein aaj ka high 16, overnight kam se kam 10 degrees. Badal chhaye rahenge subah aur sham ke waqt kuch halki barish ho sakti hai aur aaj sunset sham 5:23 par hone ko hai.
13: The beat. Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
13: What's going on? Kya bakte ho?
8: Are kehna kya chahte ho?
10: So, मैंने कहा था कि आज का क्या बकते हो स्टोरी इज समथिंग दैट हैज हैपेंड इन नेल्सन और इसे वन ऑफ द लीडिंग न्यूज चैनल्स ने यहाँ न्यूजीलैंड में रिपोर्ट भी किया है. अपेरेंटली ये जो खबर है जिसके बारे में हमने आपसे भी बातें करनी है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम नेल्सन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट गिविंग यू द फुल डिटेल्स. एक 49 ईयर ओल्ड व्यक्ति है जिनका नाम स्टेसी ले वेडल जो है ये बताया गया है, और इन्होंने एडमिट किया है कि इन्होंने सीक्रेटली अपनी जो एक्स पार्टनर है इनके शैम्पू में वीट हेयर रिमूवल क्रीम जो है ये मिक्स किया
14: है शैम्पू में,
10: शैम्पू के बजाय ये हेयर रिमूवल क्रीम जो इन्होंने डाला. सो अपेरेंटली द कपल हैड ब्रोकन अप बट दे वर स्टिल लिविंग इन सेपरेट होम्स ऑन द सेम प्रॉपर्टी. और वेडल जिन्होंने ये कहा कि ही वॉज बेसिकली स्टिल अलाउड इन टू हर हाउस टू डू हिज लॉन्ड्री. एंड 9th ऑफ जून को वेडल जो है ये फार्मेसी गए, वीट हेयर रिमूवल क्रीम लिया, एंड ही टोल्ड द शॉप असिस्टेंट इट वॉज फॉर हिज वाइफ हु हैड सेंसिटिव स्किन, बट दिस वॉज नॉट ट्रू. अपेरेंटली उनके जो एक्स पार्टनर है वॉज अवे एंड ही एंटर्ड हर हाउस और उन्होंने उनके शैम्पू बॉटल में ये रिमूवल क्रीम जो है ये डाल दिया. Now what happened to the women after this? She used the shampoo several times and noticed ek foul smell jo ye aa raha tha. It smelled different. It looked different. It didn't foam jaise ki normally shampoos jo ye foam karte hai properly. Aur unka jo scalp hai wo sore hone laga aur tender hone laga. She started losing hair as well. And at first she thought she was imagining things. So unhone ye baat khud tak rakhi. Later she took the shampoo to her hairdresser. और उन्होंने जब इसे कंपेयर किया विद द नॉर्मल बॉटल ऑफ द सेम शैम्पू, तब उन्हें जाकर पता चला कि इनके शैम्पू के साथ कोई छेड़छाड़ जो है ये की गई है. हाउ वाज द मैन कॉट? अपेरेंटली जो महिला है इनको एक रिसीट मिल गया ऑफ द रिमूवल क्रीम लाइंग नियर रबिश बिन एट हर होम. शी बिकेम सस्पिशियस, उन्होंने पुलिस को बुलाया एंड शी टोल्ड द पुलिस दैट शी बिलीव दैट दिस माइट नॉट हैव बीन द फर्स्ट टाइम जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, एंड शी हैड नोटिस्ड हर हेयर लाइन हैड स्टार्टेड टू यू नो मूव बैकवर्ड्स अ फ्यू मंथ्स अर्लियर. जब क्वेश्चन किया गया स्टेसी से तो उन्होंने एडमिट किया दैट ही हैड पुट द हेयर रिमूवल क्रीम इन अ शैम्पू बिकॉज ही वॉज एंग्री अबाउट हाउ ही फेल्ट शी हैड ट्रीटेड हिम. इसके बाद में चलकर नेल्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेसी वेडल को प्रोड्यूस किया गया एंड ही प्लीडेड गिल्टी इमीडिएटली टू अ चार्ज, जहां पर उन्होंने कहा ही अग्रीड टू द चार्ज ऑफ पॉइजनिंग विद इंटेंट टू इनकन्वीनियंस. इसका मतलब ये है कि डेलिब्रेटली आपने कॉन्टिमिनेट किया कोई सामान जिससे किसी को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम्स हो सकती है या हार्म पहुंच सकता है. जज ने उन्हें कन्विक्ट किया और उनको ऑर्डर किया टू पे $1,000 टू द वुमन फॉर द इमोशनल हार्म ही कॉज्ड, और उनको ये भी ऑर्डर किया टू कम अप फॉर सेंटेंस if called upon within the next 9 months. This means he does not have to serve any further sentence right now. Lekin unhone commit kiya hai another offense, agar jo unhone commit kiya another offense ya break kiya koi bhi condition during the next 9 months, court unko wapas lekar aayegi aur unhe sentence karegi for the offense. So this is something that has happened right here in New Zealand in Nelson. Apne ex-partner par naraazgi dikhane ke liye ki kis tarah se unki partner ne unko treat kiya, उन्होंने उनके शैम्पू बोतल में हेयर रिमूवल क्रीम डाल दिया.
14: है ऐसे भी किसी को यू नो इस तरह से खतरे में नहीं डाला करते ना.
10: हेयर रिमूवल क्रीम इज नॉट अ वेरी यू नो क्या बोलते नॉट अ थिंग टू टेक लाइटली बिकॉज वो आपका इफ यू डोंट रियली नो यू आर यूजिंग इट, वो आपका स्किन पूरा जो रिमूव कर सकता है.
14: अच्छा.
10: इट कैन एक्चुअली डू दैट. अगर आप बहुत प्रेशर लगाकर उसको इस्तेमाल करोगे तो इट कैन लिटरली रिमूव योर स्किन. और इन दिस मैटर जब आप शैम्पू करते हैं बालों को, तो शैम्पू डालने के बाद यू रियली स्क्रब इट विद योर फिंगर्स, यू नो आपको मलते हो और अपना स्कैल्प क्लीन करते हो, तो उस सिचुएशन में तो सच में उनको कितना डैमेज जो ये पहुंचा होगा ना.
14: या एग्जैक्टली.
10: सो या दिस इज व्हाट हैज कम अक्रॉस राइट नाउ.
14: 7 मिनट हो रहे हैं 9:00, थोड़ी देर बाद देखेंगे हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है.

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: तो हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है या आने वाले दिनों में क्या कुछ होने को है, इसकी जानकारियां हम पर आपको हम देते रहते हैं. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का जो फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट है, यह 22nd और 23rd अगस्त को होगा बर्कनहेड स्काउट्स हॉल में. हर स्किल लेवल के प्लेयर्स को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वेलकम किया जा रहा है. रजिस्ट्रेशन या और जानकारी के लिए आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं या एसोसिएशन के प्रधान पंकज मोंगा से 02109085067 पर बातें कर सकते हैं.
3: इसके अलावा फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड इन एसोसिएशन विद एन स्विंडल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेल्थ एंड वेल बीइंग एक्सपो 2026. ये हर किसी के लिए बिल्कुल मुफ्त है. ये 26th ऑफ जुलाई को रहेगा एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 26th ऑफ जुलाई व्हिच मींस कि ये नेक्स्ट वीक संडे को रहेगा और इसका हिस्सा आप बन सकते हैं एट A1 इवेंट सेंटर 731 ग्रेट साउथ रोड पापाटोटो पहुंचते हुए ऑन द डे 10 AM टू 3 PM पहुंचना है आपको. सो यहां पर क्या कुछ आपको सबसे पहले जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जो फ्री सर्विस रहेगा जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, फ्री स्क्रीनिंग में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, ECG और आई टेस्ट किए जाएंगे. इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ऑन कैंसर स्क्रीनिंग एंड अर्ली सिम्टम्स फॉर प्रोस्टेट, बाउल, सर्वाइकल, पेप्समिया, ब्लड कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर. प्रैक्टिकल लर्निंग में CPR, EpiPen, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और इजी योगा जो है ये भी आपको सिखाया जाएगा. मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग में सेल्फ केयर एंड स्ट्रेस, गैम्बलिंग एंड एल्कोहल से कैसे डील करते हैं, मीट द हेल्थ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग सर्विसेज वगैरह जो है ये भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. एजुकेशन इन्फॉर्मेशन करियर वाइज अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ड्राउनिंग प्रिवेंशन, AKL या ऑकलैंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, मेनिका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और न्यूजीलैंड पुलिस रिक्रूटमेंट यहाँ पर मौजूद रहेगी जो आपको अलग अलग जानकारियाँ जो है प्रोवाइड करेंगे. आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको ज़रूरत हो तो इन्फॉर्मेशन डायबिटीज पर, हाइपरटेंशन पर, डाइटिशियन एडवाइस, किडनी एंड हार्ट केयर, स्ट्रोक, एल्डर केयर, एलर्जी एंड साथ में इन्फेक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ों पर भी आपको मिलेगी ऑन द डे यहाँ पर. इनफैक्ट बच्चों के लिए फेस पेंटिंग और एक्टिविटीज रहेंगे, कुछ लाइट रिफ्रेशमेंट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत सारे हैम्पर्स एंड गिव अवेज रहेंगे, योगा क्लास होगा, जुम्बा होगा, लाइव परफॉर्मेंसेज रहेंगे, सॉसेज सिजल रहेगा और इसके अलावा और भी सारी चीजें होंगी. सो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, रिमेम्बर ये एक्सपो जो है 26th ऑफ जुलाई यानी नेक्स्ट वीक संडे को होने वाला है. डिटेल्स अगर आपको चाहिए कि कैसे क्या करना है आपको इसका हिस्सा बनने के लिए, तो आप सरोजनी दयाल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं SAROMICH यानी saromich@hotmail.com पर और आप इनसे डिटेल्स जो है ये हासिल कर सकते हैं या फिर आप फिजी गिरमिट फाउंडेशन को संपर्क कीजिए.
2: श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में अखंड रामायण पाठ शनिवार 1st और से लेकर संडे 2nd अगस्त तक होगा. शनिवार की सुबह 7 बजे रोट पूजा होगी जिसके बाद 8:15 बजे आरती, सुबह 9:15 बजे रामायण पाठ शुरू होगा जो रविवार की सुबह 10 बजे तक चलेगा जिसके बाद हवन और आरती. इस दौरान आपके लिए यहां पर भोजन का भी प्रबंध रहेगा, आप जाकर इसमें ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं. और अगर आप रामायण पाठ करना चाहते हैं तो पंडित जी से बातें कर सकते हैं 09836 4647 पर.
3: और साथ ही साथ श्री रामलीला इसके बारे में भी याद दिला दे कि न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे श्री रामलीला 8th अगस्त को ये रहेगा और आप इसका हिस्सा बेशक बन सकते हैं. एक बहुत ही खूबसूरत डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा. अगर आपको स्टॉल पर कुछ इंक्वायरीज करनी है तो आप मास्टर शोक को 02117954 पर जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.
2: आपके पास भी कम्युनिटी की कोई खबर है जो और लोगों तक आपको पहुंचानी है, buzz@humfm.com buzz@humfm.com पर अपने ईमेल्स जो है कि आप हमें जरूर भेजें.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, देखो हम आ गए.
0: Driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
7: वो भी आई लव यू वाला.
6: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
7: अच्छा आप दिलजीत तो
6: आए आए बताओगे यार.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby.

0: insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800 564 424.
1: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
2: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
1: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
2: Mashallah, bahut acha, very nice.
3: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
4: No way.
5: We in trouble?
3: Nah, it's BP Plus.
5: What is that?
3: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
6: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
7: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
8: Freedom's Spend More, Save More sale is on now. Spend $500, save 15%. Spend $1,500, save 20%. Spend $2,500, save 25%. The more you spend, the more you save. Only at Freedom.
9: DVS, huge winter sale on now. Huge savings across all DVS ventilation systems. Say no to crying windows. Say yes to the huge winter sale on now. DVS. T's and C's apply.
10: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
11: yeah.
10: हम
11: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम
10: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
12: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग
13: 22 मिनट हो रहे हैं अभी 9 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. वैसे आपको याद दिला दें कि एक यादगार रात के लिए आ रहे हैं द लेजेंडरी उस्ताद राहत फतेह अली खान ऑकलैंड 25th ऑफ जुलाई को, आज से बस 12 दिनों बाद.
14: तो बस आप भी इस एंटरटेनिंग नाइट, इस म्यूजिकल नाइट का हिस्सा, इस मैजिकल नाइट का हिस्सा शोली बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा मौका उस्ताद राहत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज के साथ साथ उनका बहुत ही खूबसूरत अंदाज जो है ये एक्सपीरियंस करने का. आप जिस किस्म के गाने पसंद करते हैं, कवालियाँ हों, सूफी नगमे हों, या फिर आप खूबसूरत रोमांटिक गानों को इंजॉय करना पसंद करते हैं, तो ये सब कुछ अपनी कैप्टिवेटिंग वॉइस में आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे ऑन द नाइट ऑफ 25th ऑफ जुलाई. JK स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस की ओर से टिकट्स dryticketsdotcom से आप जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप भी इसका हिस्सा बन सके. हैपनिंग एट द ट्रस्ट अरेना ऑन द 25th ऑफ जुलाई.
13: सो ग्रैब योर टिकट्स अगर अभी तक आपने नहीं लिए हैं. आपको याद होगा पिछले घंटे मैंने बोला था कि मिस्ड कॉल्स पर किसी ने अपना करियर बना लिया.
14: हाँ, मैं वही सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हुआ.
13: तो अपूर्व श्रीवास्तव जो है ये मिशिगन में बड़े हुए हैं, जहाँ पर उनके पेरेंट्स का एक छोटा सा बिजनेस था. एज अ टीनेजर वो अपने पेरेंट्स को हेल्प आउट करते थे अपने बिजनेस पर, और उन्होंने नोटिस किया कि अगर वो कोई कॉल मिस कर देते थे तो देट वॉज अ जॉब जो उनके हाथ से निकल रहा था. कस्टमर किसी और को कॉल करेगा और उसी तरह से उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा था. तो श्रीवास्तव ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी, और उन्होंने टायसन चेन जो कि MIT के एक और ग्रेजुएट हैं, इनसे इनकी मुलाकात एक पोकर नाइट के दौरान हुई थी. उनसे मिलकर उन्होंने एवोका की शुरुआत की. चेन की माँ जो है ये एक एक्यूपंचर प्रैक्टिस चलाती थी पेंसिल्वेनिया में, और उसे भी पता था कि हर एक मिस कॉल का मतलब होता है मिस्ड बिजनेस. उनकी अलग अलग कहानी थी लेकिन प्रॉब्लम सेम था. और उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, कैसे करें, कुछ हो सकता है या नहीं. व्हेन अ होम सर्विस बिजनेस मिसेज अ फोन कॉल दैट इट कुड बी अबाउट $30,000 to $40,000, उन्होंने कहा अगर वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है. तो उन्होंने सोचा वेट, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट

0: order of magnitude. उन्होंने एक शाम जो है ये बिताई विद रेस्क्यू ये एयर और रियलाइज किया कि इफ दे कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम ये बहुत मैसिव हो सकता था.
1: राइट.
0: तो उन्होंने 2023 में एक प्रोडक्ट बनाया रेस्क्यू एयर के लिए विच हेल्प श्रीवास्तव और चैन को अपना पहला कस्टमर मिलना. ये कंपनी जो है ये बिल्ड करती है AI वॉइस एजेंट्स फॉर होम सर्विस बिजनेसेस जैसे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, जो वेंटिलेशन और हीट पंप्स वाले होते हैं, टेक्नीशियंस, रूफर्स. श्रीवास्तव के मुताबिक दे मेक अप व्हाट ही कॉल्स फिजिकल इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ कॉल्स गोइंग टू द वॉइस मेल और होल्ड क्यू. एक AI एजेंट जो है ये पिकअप करता है इंस्टेंटली. दे आर बिल्ड टू साउंड कन्विंसिंगली ह्यूमन तो आपको सस्पेक्ट नहीं होगा. व्हाट एक्चुअली सेट्स द प्रोडक्ट अपार्ट इज कि उसके अंडरनीथ एक इंटीग्रेशन होता है. द AI डज नॉट जस्ट टेक द मैसेज, वो कंपनी का लाइफ कैलेंडर चेक करता है, अपॉइंटमेंट बुक करता है डायरेक्टली इनटू द सिस्टम और फॉलो अप करता है ऑन ओल्ड कोड्स जो कभी साइन नहीं किए गए थे. दिस इज द काइंड ऑफ फॉलो थ्रू सो जो ताकि जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको किसी स्टाफ की भी जरूरत नहीं होती थी. और अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून द कंपनी हैज रेज्ड मोर देन $125 million over the last couple of years aur ab iska value over $1 billion ho gaya hai.
1: That is amazing. You know, aap ye samjho ki inhone ye dekha ek problem hai jo wo khud face kar rahe the, unka family business face kar raha tha, unke parents face kar rahe the. Us problem ko unhone evaluate kiya, samjha, problem ka solution dhoonda jo na keval unke liye kaam mein laaye लेकिन ऐसे बहुत से बिजनेसेस के काम में आए जो एक सोल्यूशन बन सकता है उन बिजनेसेस के लिए और उनका भी फायदा हो सकता है. एंड दैट थिंग नॉट जस्ट वर्क फॉर हिज ओन फैमिली बिजनेस बट इट बिकेम अ बिजनेस फॉर हिम. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. बट द फैक्ट कि कभी कभी आपको प्रॉब्लम को देख कर सिर्फ उसे उसका एक टेम्पररी सोल्यूशन नहीं ढूंढना होता है. यू नीड टू लुक फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन एंड ऑन अ बिगर पिक्चर which can actually help you figure out कि कैसे ये काम में आ सकता है और कैसे आपको और फायदा दिला सकता है.
0: So ऐसे श्रीवास्तव ने missed calls पर अपना एक बहुत बड़ा करियर जो है ये बना लिया.
1: Very interesting, yeah?
0: 27 मिनट हो रहे हैं 9:00.
2: Bollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: और यू नो शाम का जो रंग होता है वो एक अलग ही मज़ा देता है, और इस तरह का एक अलग मज़ा जो है कि आपको मिलेगा जब आप फर्स्ट ऑफ अगस्त को रहेंगे महात्मा गांधी सेंटर में, जहां पर बहुत ही एपिक सेलिब्रेशन, म्यूजिक, डांस और ट्रेडिशन का होने जा रहा है। गरबा विद राज गढ़वी,
1: तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप भी इसका मजा ले सके, क्योंकि ऑकलैंड में आ रहे हैं अपना बहुत ही कमाल का एक डांस से भरा, मस्ती से भरा नाइट, विच इज गरबा विद राज गढ़वी या गरबा नाइट विद राज गढ़वी। ये लेकर लोटस प्रोडक्शंस, थ्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांशी ग्रुप आपको प्राउडली इसका हिस्सा बनने का मौका जो ये दे रहे हैं। सो यू कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड ऑफकोर्स जब गरबा का माहौल होता है तो वो तो भैया एक अलग ही लेवल पर होता है। एंड दिस इज समथिंग इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड यू नो इट, वी डोंट नीड टू यू नो डिफाइन मोर फॉर यू, लेकिन अगर आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, दिस इज द टाइम जब आप इसे जरूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट्स हैपनिंग ऑन द 1st of August, विच इज अ सैटरडे नाइट, और ये महात्मा गांधी सेंटर पे रहेगा, जहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन मौका मिलेगा टू बी पार्ट ऑफ दिस एपिक सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशंस।
0: टिकट्स आप एडवांस में ले लें, सो दैट यू डोंट हैव टू यू नो रश लास्ट मिनट। eventstickets.co.nz याद रहे, eventstickets.co.nz आप विजिट करें, और अगर कुछ डिटेल्स आपको चाहिए स्वप्निल से आप बातें कर सकते हैं 02-2-439-4736, ये उनका नंबर है जिस पर उनसे आप बातें कर सकते हैं। वैसे अनिल जी का मैसेज जो है ये आया है हमारे पास
1: जी, इन्होंने लिखा है, थैंक यू विजय भाई फॉर शेयरिंग सच इंस्पायरिंग न्यूज एंड एडवांसेस इन एआई इंडस्ट्री। आई एम आल्सो रनिंग अ सिमिलर इनिशिएटिव अपने सलून इंडस्ट्री के लिए इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या बात है भाई, वेरी नाइस,
0: इट्स अमेजिंग।
1: एआई की बातें आपने की, तो एक चीज आपको हम बता दें, और वो है ये कि अनफिल्टर्ड का जो लेटेस्ट एपिसोड है, इसमें भी कुछ इन डेप्थ डिटेल्स जो है ये आपको मिलेंगे, क्योंकि डिस्कशन जो है सैंडी रूसबे का ये हुआ है AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या के साथ। ये सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर है, और ये आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रेक डाउन इन टू द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ वे जो एक्चुअली आपको समझ में आए आसानी से। चैट GPT से लेकर AI जो है ये कैसे आपके लिए काम कर सकता है, आपके हित में काम कर सकता है, जॉब सिक्योरिटी की बातें हो, प्राइवेसी कंसर्न्स हो, अपॉर्चुनिटीज की बातें हो, और अपने आप को और भी स्किलफुल बनाना फ्यूचर के लिए, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही यू नो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको पता चल सकती है, अगर आप अनफिल्टर्ड का लेटेस्ट एपिसोड जो है ये चेकआउट करते हैं। तो चाहे आप AI के बारे में क्यूरियस हो, या फिर आप कुछ यू नो प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहते हैं टू अंडरस्टैंड कि इसकी शुरुआत कैसे और कहां से करें, आप चेकआउट कीजिए अनफिल्टर्ड का लेटेस्ट एपिसोड, आपको रोवा ऐप पर मिल जाएगा, एंड ऑफकोर्स जहां पर भी पॉडकास्ट अवेलेबल है वहां से भी आप ये जरूर चेकआउट कर सकते हैं।
0: फिलहाल हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में 6 दशक जो है ये पूरे कर लिए हैं, 60 ईयर्स इन द इंडस्ट्री या, और 60 ईयर्स जो है ये कंप्लीट करने पर उन्होंने कहा है कि अगर कभी भी उन पर कोई बायोपिक बना तो एक एक्ट्रेस है जिनके बारे में उनको लगता है कि उनका किरदार जो है ये बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं।
1: कौन है वो,
0: ये आपको हमें बताना है कि हेमा मालिनी ने किन का नाम लिया होगा, वो कौन
1: चूज किया,
0: कौन सी एक्ट्रेस होगी जो आपको लगता है कि हेमा मालिनी फील्स सही तरीके से उनका किरदार जो है उनके बायोपिक को ये रिलीव कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास जवाब है तो,
1: एक नाम है तो हमें बताइए।
0: हाँ, आपको क्या लगता है वो कौन सी एक्ट्रेस हो सकती हैं जो हेमा मालिनी का जो लाइफ है ये पर्दे पर दिखा सके।
1: I hope she is not sad कि उनकी खुद की बेटी ईशा देओल।
0: आप बताइए BAF अपना आंसर और नाम 5599 पर।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
2: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
3: करण औजला ब्रिंग्स हिज पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू न्यूजीलैंड, ऑकलैंड स्पार्क अरेना दिस अगस्त। टिकट्स एट livenation.co.nz। डोंट मिस करण औजला लाइव।
4: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
5: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka aur Vecity Omoda JQ ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7 Super Hybrid System. Performance bhi, efficiency bhi aur all electric J5 EV. Zero emissions, maximum savings. आज ही Vecity Auto Group पहुँचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। For more info, visit vecityautogroup.nz or search for Vecity Auto Group on socials.
6: Being fussy is just knowing what you want. So, be more fussy. Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches. Because your cat deserves meals created just for them. Meow. Fussy Cat is made with the meaty taste cats love. Delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough. Serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat. Be more fussy.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: हाँ। अच्छा
7: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
12: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
13: What's going on?
14: तो अब डेली राउंडअप का वक्त हो चुका है और एक व्यक्ति को काफी गंभीर चोट आई कल रात ग्लेनफील्ड में स्टैबिंग वाले एक मामले में। वाइटेमाटा सीआईबी डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मेगन गोल्डी ने बताया कि ऑफिसर्स को रात 8 बजे के वक्त वैली व्यू रोड बुलाया गया और वहां पर घटनास्थल पर एक पर्सन उनको मिला विद स्टैब वुंड्स और इंक्वायरीज के बाद पता चला कि पार्टीज नोन टू ईच अदर वो एड्रेस पर इकट्ठा हुई थी जहां पर ये झगड़ा शुरू हुआ जिसके बाद व्यक्ति को चोट आई। उनको ऑकलैंड सिटी अस्पताल में भर्ती किया गया है। 45 साल के एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया, चार्ज्ड विद वुंडिंग विद इंटेंट टू कोस ग्रीवियस बॉडली हार्म और उनको आज नोचो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा।
15: और मेरी ओर से जो अपडेट आज आपके लिए है वो है अबाउट द सिचुएशन जो न्यूजीलैंड में लोग फेस कर रहे हैं इन रिगार्ड्स विद स्कैमर्स। एक नई स्टडी में ये पता चला है कि स्कैमर्स अक्सर न्यूजीलैंडर्स को टारगेट करते हैं व्हेन दे आर गोइंग थ्रू मेजर लाइफ चेंजेस, क्योंकि लोग आर मोर लाइकली टू बी बिजी स्ट्रेस्ड या फिर यू नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ये शेयर कर बैठते हैं अपना। इस स्टडी में ये बात सामने आई है, करीबन 500 लोगों ने न्यूजीलैंड में इसमें हिस्सा लिया एंड व्हेन पीपल वर मोस्ट लाइकली टू बी स्कैम्ड तो पता चला है कि पीपल जो है अक्सर स्कैम का शिकार हुए हैं और नो समवन हु हैज़ बीन स्कैम्ड ड्यूरिंग बाइंग अ कार और अ हाउस 24% लोग जो है इसी सिचुएशन में स्कैम हुए हैं एंड द मोस्ट कॉमन सिचुएशन जो ये पाया गया है लुकिंग फॉर अ जॉब और अटेंडिंग जॉब इंटरव्यूज 19% लोग जो है ऐसे सिचुएशन में स्कैम हुए हैं और दे हैव इंफॉर्मेशन ऑफ समवन इन अ सिमिलर सिचुएशन बीइंग स्कैम्ड मूविंग टू अ न्यू होम 17% लोगों ने इसके रिलेशन में डिटेल्स दी हैं अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट्स या फिर टैक्स रिफंड्स इस मामले में भी करीबन 70% लोगों का जो अग्रीमेंट है ये आया है एंड स्टार्टिंग अ न्यू जॉब अगेन 17% डीलिंग विद लव्ड वंस और एस्टेट आफ्टर दे हैव डाइड ये 16% लोगों ने कहा है कि ऐसे सिचुएशन में दे हैव फेस्ड समवन बीइंग स्कैम्ड और दे हैव बीन स्कैम्ड व्हाई डू स्कैमर्स टारगेट दीज सिचुएशंस क्योंकि इस रिसर्च के हिसाब से पता चला है ड्यूरिंग मेजर लाइफ इवेंट्स लोग अक्सर डील करते हैं नए लोगों के साथ नए बिजनेसेस के साथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एंड दे मे बी शेयरिंग पर्सनल या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे आर ऑफन अंडर प्रेशर और इस वजह से वो जल्दी जल्दी एक्ट करते हैं विदाउट चेकिंग इफ समवन और समथिंग इज जेन्युइन या नहीं और इस रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ एंड अबाउट 2 in 5 न्यूजीलैंडर्स यानी कि 40% यूज AI टू मेक हेल्प मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो AI पावर्ड स्कैम्स को रिकोगनाइज नहीं कर पा रहे हैं दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट So scammers are increasingly targeting people during important moments in their life. जैसे कि मैंने आपको बताया है कुछ जरूरी चीजें जब वो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं गाड़ी खरीदना घर खरीदना मूव होना फाइनेंशियल डिसीजंस जो है ये बनाने के मामले में और AI स्कैम्स जो है ये ज्यादा कन्विंसिंग लग रहे हैं क्योंकि लोग अक्सर उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं

0: आज की पहली बात, जीवन में बहुत सी बातें समझ से परे होती हैं।
1: ओके।
0: जैसे पहाड़ कठोर हैं इसीलिए नदियां उसे छोड़ गई, या नदियां छोड़ गई इसीलिए पहाड़ कठोर है।
1: ओके।
0: ये समझ से परे है।
1: दूसरी बात,
0: एक अफ्रीकन कहावत है, तुम्हारे दांत कितने भी तेज क्यों ना हो पर तुम पानी को नहीं काट सकते।
1: That is so true, actually so true. तो इसीलिए कभी कभी कुछ चीजों पर थोड़ा वो क्या बोलते हैं,
0: पता नहीं,
1: गुरूर करने से पहले सोचना चाहिए कि कुछ तो ऐसा है जो शायद वो आप नहीं कर पा रहे हो। Arrogance is not a good thing.
0: Exactly. जा रहे हैं अब।
1: अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात अब होगी कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: You're humming along with Sandy right now. And aapke Super City mein Garba night hone wali hai. So season is back. Actually, mein bahut hi jaldi. Garba ka season Raj Gadvi ke saath aap enjoy kar sakte hain. Lotus Productions, Shree Even New Zealand, Vinay Mehta and Pranchi Group aapke liye one of the most awaited cultural celebration of the year, Garba with Raj Gadvi leke aa rahe hain. जिसमें आप एक इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वाइब्रेंट रिदम्स एंड मस्पराइजिंग वॉइस ऑफ राज गढ़वी लाइव ऑन स्टेज. एक अनफॉरगेटेबल नाइट आप ले रहने वाली है. सो मार्क योर कैलेंडर्स, 1st of August को ये इवेंट होने वाला है महात्मा गांधी सेंटर में. एपिक सेलिब्रेशन है म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशन की. टिकट्स बहुत ही फास्ट जा रही है, तो अपने स्पॉट जो है ये आप सिक्योर कर लीजिए इवेंट्स टिकट पे जाके. सो इवेंट्स टिकट्स .co.nz इज अ वेबसाइट जहाँ पे अपनी टिकट्स आपको खरीदनी है. एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, ये इवेंट सोल्ड आउट जाने वाला है, तो मेक श्योर कि आप अपने टिकट टाइम पे खरीद रहे हैं. अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए सो अपनील से बात कीजिए ऑन 0224394736. इट्स 0224394736 जहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी.
1: Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप. वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे.
3: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में.
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.

0: ऑफिस शाउट आउट में रितु, इस समय पर आप हमें इस समय ऑफिस से अपने सुन रही हैं एंड थैंक यू सो मच ट्यून इन करने के लिए। रोवा के जरिए एक्चुअली में आप हमें यहाँ पे सुन रही हैं एंड ऑल्सो रितेश जो कि ऑस्ट्रेलिया से इस समय रोवा के जरिए हमें सुन रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है। वैसे न्यूजीलैंड के बारे में बता देते हैं जो हमारे ऑस्ट्रेलियन लिसनर्स हैं, यहाँ पे एक कैट है गोल्डी नाम की जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। सो कैट नेम गोल्डी न्यूजीलैंडर्स को ये अमेज कर रही है बिकॉज मोर देन 630 किलोमीटर अवे शी वॉज डिसअपियर्ड ऑन अ फार्म इन नॉर्थ कैंटरबरी। सो 630 किलोमीटर कहीं दूर ये डिसअपियर हुई। गोल्डी जो है एक कैट है जो कि कैम्ब्रिज होम से अराउंड अ ईयर अगो ये मिस हुई थी। उसके ओनर ने ऑलमोस्ट होप छोड़ दी कि उसको लगता नहीं कि दोबारा वो इस कैट को कभी देखने वाली है। देन वन डे शी अपेयर्ड एज अ स्ट्रे ऑन नॉर्थ कैंटरबरी फार्म जो कोई और ओन करता था। पहले तो ली को लगा कि शी माइट बिलोंग टू अ नेबर, बट आफ्टर अ फेसबुक पोस्ट उसने बाद में ध्यान दिया कि इसके बारे में एक्चुअली में कोई सर्च कर रहा था, तो वो कैट को वेट के पास ले गई। सरप्राइज केम व्हेन द वेट स्कैन्ड द गोल्डीज माइक्रोचिप और रिवील किया कि शी वॉज रजिस्टर्ड टू अ ओनर इन अ कैम्ब्रिज ओनली विच वॉज ओवर 630 किलोमीटर अवे। सो हाउ डिड शी गेट देयर, नोबडी नो फॉर श्योर, बट पॉसिबल थ्योरीज है कि गोल्डी वॉज स्नेकिंग आउट ऑन अ ट्रक जिसमें बहुत सारे गुड्स थे, वाइकाटो से वो ट्रक आया एंड कहीं ना किसी वे से वो ट्रक से उतरी, अपना रास्ता चुन के वो कहीं और चले गई, जैसे मूवीज में नहीं देखते हैं, बिल्कुल वही कहानी इस गोल्डी के साथ हुई है। सो दैट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। दो साल बाद उनको अपनी पेट कैट जो है ये वापस मिली। मेरे को नाम बड़ा सही लगा इसका, गोल्डी। काम भी इसने किया शरारत वाला, बिकॉज गोल्डी नाम जो है ना ऐसा शरारती नॉटी काइंड ऑफ साउंड होता है। एनीवे, आपने कभी अपने घर पे कैट रखी है तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं आप भी अपना एक्सपीरियंस। वैसे कैट्स के बारे में ये बोला जाता है कि वो कई बार ऐसा स्नेक आउट्स करती है, बाहर जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे फाइंड देयर ओन वे, वापस आप ही जाती है कैट्स जो होती है। लेकिन अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है कैट्स रखने का तो आप भी शेयर कर सकते हैं 555-99 पर।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यू हमिंग अलॉन्ग विद सैनी राइट नाउ। एंड दिस सैटरडे 18th जुलाई को हम विटनेस करने वाले हैं बिगेस्ट कॉमेडी इवेंट ऑफ द ईयर कृष्णाभिषेक एंड राजीव ठाकुर के साथ। इंडिया टीवी स्क्रीन के दो बड़े कलाकार, दो बड़े कॉमेडियंस हैं कृष्णाभिषेक राजीव ठाकुर, यहाँ पे पहुँचने वाले हैं आपके लिए नॉन स्टॉप लाफ्टर लेके, हिलेरियस लाइव परफॉर्मेंस लेके, ऐसी मेमोरीज जिन्हें आप चेरिश करेंगे। परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट है हर एक एज के लिए। सो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अभी भी अवेलेबल है, तो आज ही अपनी सीट्स को आप सिक्योर कर लीजिएगा। आपको अपनी सीट सिक्योर करनी है बुक माई इवेंट डॉट को डॉट एन जेड पे जाके, जहाँ पे आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है। सैटरडे 18th जुलाई को ये इवेंट होने वाला है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में। सो मेक श्योर कि अपनी सीट आप अभी से सिक्योर कर लें।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

माय टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। थोड़ी देर में आपके साथ मैं एक गार्डनिंग टिप भी शेयर करने वाली हूँ। आपके पास कोई गार्डनिंग टिप है तो आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, 555-99 इज द नंबर। एंड साथ ही बता दूं कि हमारा पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड सुना ना भूलेगा। हम बहुत ही जल्दी एक नया पॉडकास्ट भी रिलीज करने वाले हैं विच विल बी अ टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसके बारे में कई बार हम बहुत हेजिटेट करते हैं पब्लिक में बात करने के लिए। एंड मे बी हमने शायद मजाक में उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत बार बात की है बट उनको कभी समझने की कोशिश नहीं की है। ये पॉडकास्ट भी बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है बट फॉर नाउ हमने AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या के साथ जो पॉडकास्ट रिलीज किया है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, एवरीडे लाइफ में आप इसको कैसे यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। तो ड्राइव लिख के भेजिए 555-99 पर, ऑटो रिप्लाई में ये एपिसोड आपको मिल जाएगा।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
2: मुझे भी।
1: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
3: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: An award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
6: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
7: From Christopher Nolan.
8: No one could stand between me and home.
7: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, with Zendaya and Charlize Theron. The Odyssey, in cinemas July 16. Rating TBC.
9: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vogue 442-litre side-by-side fridge freezers, $699. Midea heat pump dryers, $499. Comfy 12-place dishwashers, $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
10: TradeDepot.co.nz.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
12: My time, फिलहाल आप यहाँ पर सुन रहे हैं गार्डनिंग टिप आपको मैं देती हूँ। आपके घर में एग शेल्स तो होती होंगी। अगर आप अपने घर पे एग्स बनाते हैं तो एग शेल्स जो है इन्हें आप वेस्ट ना कीजिएगा, इन्हें अपने गार्डन में आप यूज कर सकते हैं। सो काफी लोग जो है जब एग को बनाते हैं ब्रेकफास्ट में एवरीथिंग, ये जो शेल्स होती हैं इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके गार्डन को ना एक नेचुरल बूस्ट दे सकता है। सो काफ़ी चीज़ें इसके साथ आप कर सकते हैं। सो हाउ टू प्रिपेयर द एग शेल्स फॉर योर गार्डन। वन वे इज वॉश द एग शेल्स अच्छे से, रिंस द शेल्स टू रिमूव द लेफ्ट ओवर एग रेजिड्यू जो उसमें रह गया है। सो दिस प्रिवेंट्स द बैड स्मेल एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द पेस्ट एज वेल। कीप अ स्मॉल कंटेनर इन योर किचन जहाँ पे आप ये जो शेल्स है थ्रू आउट द वीक इकट्ठी कर सकते हैं। मेक श्योर कि उनको आप अच्छे से वॉश कर रहे हैं। देन ड्राई देम कम्प्लीटली, स्प्रेड द शेल्स ऑन अ प्लेट और ट्रे, लेट देम एयर ड्राई, बिकॉज जो ड्राई शेल्स होती है उन्हें क्रश करना बहुत ही ईजी होता है और उन्हें स्टोर करना बेटर रहता है और फिर अनप्लेजेंट ऑर्डर भी उसमें नहीं आता है। देन क्रश देम इन टू अ स्मॉलर पीसेज। सो स्मॉलर द पीसेज द फास्टर द ब्रेक डाउन। क्रश देम विद योर हैंड या फिर आप रोलिंग पिन यूज़ कर सकते हैं एंड देन ब्लेंड देम इनटू अ पाउडर। एक फाइन पाउडर मिक्स जो है ये सॉइल में इजीली चला जाता है। नाउ जो आपके एक्शेल्स है ये हेल्प कैसे करते हैं। एक्शेल्स जो है मेनली मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम होता है आपके प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आता है। दे सपोर्ट द हेल्थी ग्रोथ एंड डिवेलप स्ट्रॉन्गर रूट्स एज वेल। एंड सॉइल का स्ट्रक्चर भी ये इम्प्रूव करते हैं। जो क्रश्ड एक्शेल्स होते हैं दे कैन एक्चुअली हेल्प लूजन द कॉम्पैक्ट सॉइल, ड्रेनेज को इम्प्रूव करते हैं, दे अलाउ द एयर टू रीच प्लांट रूट्स एज वेल। इवन जो आपका वेजिटेबल गार्डन है, जो प्लांट जहाँ जो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं वो है टोमेटोज, पेपर्स, एग प्लांट्स, स्क्वैश, इन सब में एक्चुअली में जो ये जो एक्शेल का पाउडर है ये बहुत ही अच्छे से काम आता है। सो ईजी वे टू यूज एक्शेल्स इज कि जो क्रश्ड एक्शेल्स है इन्हें आप कंपोस्ट बिन में ऐड कर सकते हैं। जिसमें वेजिटेबल स्क्रैप्स है, कॉफ़ी ग्राउंड है, लीव्स है. सो ये स्लोली ब्रेक डाउन करके मिनरल्स जो है ये सॉइल में ऐड करते हैं. ऑप्शन टू इज़ स्प्रिंकल अराउंड प्लांट्स, जो क्रश शेल्स है इनटू स्मॉल पीसेस, उनको आप स्प्रिंकल कर सकते हैं बेस ऑफ द प्लांट में. देन ऑप्शन थ्री इज़ अगर आपने एग्शेल पाउडर बनाया है, एक फाइन गार्डन बूस्टर की तरह ये काम करता है. ड्राई शेल्स कम्प्लीटली ग्राइंड करो एंड देन जो प्लांट लगाया है सिंपल वहाँ पे आप इसको स्प्रेड कर दो. तो वेरियस वे से एग शेल्स को एक्चुअली में आप यूज़ कर सकते हैं गार्डन में अपने प्लांट्स को बूस्ट करने के लिए.

0: ड्रीम डायरी।
1: ड्रीम डायरी में आज का जो ड्रीम है, इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन ड्रीम जो बहुत लोगों को आता है। ड्रीम है फाइंडिंग अ हिडन रूम इन योर हाउस। काफी लोगों को ऐसा सपना आता है कि उन्होंने अपने घर पे एक सीक्रेट रूम फाइंड आउट किया है। इसके बारे में एनालिसिस कहता है इस ड्रीम का, ये बहुत ही फैसिनेटिंग होता है। सो इसका सिंबल जो है अबाउट द हिडन टैलेंट, फॉरगॉटन मेमोरीज, या फिर एक नया चैप्टर भी हो सकता है आपकी लाइफ में। सो मे बी देयर इज अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। जैसे घर पे आपको एक हिडन रूम मिल रहा है, वैसे ही आपके अंदर का जो टैलेंट है, द टैलेंट इज वेटिंग टू कम आउट, ये भी हो सकता है। या फिर आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर जो है उस चीज़ के ज़रिए शुरू हो सकता है। जिस चैप्टर को शुरू करने में आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, ये उसी का साइन भी हो सकता है। सो ये इस ड्रीम का जो एनालिसिस है, जब आपको अपने घर पे सीक्रेट रूम मिलता है सपने में, ये उसका एनालिसिस एक्चुअली में बताता है। ड्रीम्स बहुत ही फनी होते हैं, कईयों के ड्रीम्स बहुत इनोवेटिव भी होते हैं। आपको पता है बहुत सारे इनक्रेडिबल डिस्कवरीज हुई है जो कि सपने में आई है। जैसे कि डिमित्री जो है, इन्होंने एक्चुअली में सपना देखा था और वहाँ से वो जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं उसकी अरेंजमेंट जो है उन्होंने सपने में देखी थी, उसके बाद उन्होंने बनाई थी। ऐसे ही जो स्विंग मशीन की नीडल है वो भी सपने में ही बनी थी। सो इलियास होए, जिन्होंने इस मशीन स्विंग मशीन की नीडल को बनाया था, उन्होंने सपना देखा था कि देयर आर वॉरियर्स विद होल्स इन देयर स्पीयर्स, जहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली आई ऑफ द स्विंग मशीन नीडल। And there's another one, there's this guy Paul McCartney. इन्होंने सपने में एक मेलोडी सुनी, वो मेलोडी इन्होंने रियल लाइफ में बनाई जिसका नाम है येस्टरडे, और वो एक बहुत ही बड़ा हिट गाना हो गया। सो कई लोग एक्चुअली में सपने में क्रिएटिव भी हो जाते हैं। दिस इज़ सो कूल यार, मतलब सपने में आपने कोई चीज़ सुनी, बनाई और उसको आपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया एंड वो चीज़ रिकॉर्ड्स में आ गई।

पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम की हालचाल मेरे सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का वैसे 14 डिग्रीज हो चुका है और आज का ओवर नाइट तकरीबन 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है.
0: My time brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid-morning Maza.
1: A very very good morning to you. My time आप यहाँ पे सुन रहे हैं. You hanging along with Sandy right now. 12 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है. 12 बजे के बाद आपका साथ यहाँ पे केदन के साथ हो जाएगा. So कैसे हैं आप और आपका day आज का कैसा जा रहा है so far? इस आवर में आपको चांस मिलने वाला है करण औजला के शो के लिए डबल पास जीतने के लिए, इस ड्रॉ में शामिल होने के लिए. आपको करना क्या है, ध्यान से सुनते रहेगा. इसी आवर में आपके लिए करण औजला का गाना प्ले होने वाला है. सो जैसे ही करण औजला का यह गाना आपके लिए यहाँ पे प्ले होता है, मैं उससे पहले आपको नहीं बताऊंगी, आपको बस सुनते रहना ध्यान से. और इसी आवर में गाना प्ले होगा, जैसे ही प्ले होता है आपको उसी समय KA करण औजला स्पेस गाने का नाम लिख के भेजना है 5599 पर और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, जहां पे करण औजला के शो के लिए डबल पास आप यहां पे जीत सकते हैं. ये शो जो है 25 अगस्त को होने वाला है स्पार्क अरीना में, जहां पे स्पेशल गेस्ट इक्की भी परफॉर्म करने वाले हैं. एंड टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन विजिट hum.rova.nz या फिर livenation.co.nz. रिमेंबर करण औजला पी पॉप कल्चर टूर लेके यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जो कि अमेजिंग रहने वाला है. लास्ट टाइम इनका जो शो मैंने यहाँ पे अटेंड किया था, क्या एनर्जी थी यार शो की, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी वो लेके आए थे. इक्की ने ही ओपन किया था शो, हम ऑलरेडी पार्टी मोड में चले गए थे जब इक्की ने ओपन किया शो. उसके बाद करण औजला की एंट्री होती है. प्रोडक्शन शो की सुपर्ब थी. सो दिस इज अ शो जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, वो भी स्पार्क अरीना में 25 अगस्त को. सो डबल पास जीतना है तो सुनते रहेगा, इसी आवर में प्ले होगा आपके लिए करण औजला का गाना.
0: बचाओ क्या,

0: माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. वैसे ऑकलैंड रेल नेटवर्क जो है ये टेम्पररी इन्होंने क्लोज की है एज वर्कर्स एंटर्स क्रूशियल फाइनल फेज ऑफ टेस्टिंग एंड प्रेपरेशन फॉर द सिटी रेल लिंक. फाइनली सिटी रेल लिंक जो है न्यूजीलैंड का बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें 3.5 किलोमीटर ट्विन टनल अंडरग्राउंड रेल लिंक है बीनीथ द सेंट्रल ऑकलैंड. सो टू न्यू अंडरग्राउंड स्टेशन जो है ये एक्चुअली में बनने वाले हैं. It's a rebuilt Mongafao station connection. So, big deal hai, kyunki currently many Auckland train journeys jo hai into the city, they terminate at Brito Mart. So, CRL kya karega? Will turn the network into through running system, meaning the trains can travel across the city and continue onwards as well. Jisse, it will reduce the need for passengers to transfer. So basically more frequent services rahengi, easier access to central Auckland rahega, less pressure on roads and better connections between suburbs as well.
1: My Time brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka aur West City Omura Jaiku ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7 Super Hybrid System, performance bhi, efficiency bhi, aur all electric J5 EV, zero emissions, maximum savings. Aaj hi West City Auto Group pahunche aur Jimmy Taylor aur unke expert team se mile. For more info, visit westcityautogroup.nz or search for West City Auto Group on socials.
7: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
8: We've got double glazing.
7: Have you still got that cold, damp feeling?
9: Yeah, we do.
7: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: HBO Max is the all-killer, no-filler.
11: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
10: Exactly.
11: Right, we'll see. What are they called?
10: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
11: Whoa, okay, I get it. Fair call.
10: HBO Max, all-killer, no-filler. Stream now.
12: MediaWorks complaints. How can I help?
13: My kids won't shut up.
12: I'm not sure that's our problem.
13: They keep reciting lines from one of your radio ads.
12: Aw, cute.
13: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
14: What do you want, son? I want me some of that real southern chicken.
13: 28 times.
12: So where are you now?
13: Eating chicken.
15: Advertise with
16: MediaWorks.
15: New Zealand listens to us.
17: Craving ho rahi hai us thick aur creamy dahi ki jaise ghar pe milti thi, to milwate hain aapko Kashish natural yogurt se, jiska har spoon hai ekdam delightful, 100% vegetarian, gelatin and gluten free. Perfect hai smoothies banane ke liye, tangy dips banane ke liye, paneer ya chicken marinate karne ke liye, ya bas seedha tab se khane ke liye, kyunki ye hai naturally delicious, always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish natural yogurt.
0: Six word story mein aaj ki kahani hai. 5 minutes late became 1 hour. 5 minutes late became 1 hour. So you know, ek famous sentence hai, usse hi ye kahani aati hai jiska naam hai I'm only 5 minutes away. You know the situation, aapko ghar se 8 baje nikalna hai, at 7:55 you थिंक कि आपके पास अभी भी 5 मिनट है, देन सडनली आपको चाबी नहीं मिलती है. मे बी आपका फ़ोन कहीं पर रख लिया है आपने, किसी ने मैसेज भेज दिया आपको, उसको रिप्लाई करना शुरू हो गए आप, किसी ने कॉल कर लिया या आपने मिस कॉल देख ली, उसको कॉल बैक करना शुरू कर दिया आपने. यू रिमेंबर यू फॉरगॉट समथिंग अपने घर पे, मे बी जाने से पहले यू लाइक 5 मिनट है तो कोई बात नहीं, मैं एक चाय का कप यू नो इसे फिनिश कर ही लेती हूँ या कर ही लेता हूँ. सो बेसिकली वो जो 5 मिनट का हम लेके चलते हैं ना, ये स्लोली डिसअपेयर हो जाते हैं. वो जो 5 मिनट है इन्हीं चक्कर्स की वजह से जो मैंने अभी बोले हैं, 15 मिनट बन जाते हैं, 30 मिनट बन जाते हैं बिकॉज यू गेट स्टक इन ट्रैफिक लेटर, 45 मिनट्स व्हेन यू रियलाइज कि यू लेफ्ट समथिंग एट होम, एंड फाइनली 1 आवर लेट भी हो जाता है. फनी पार्ट इज यू स्टिल से कि सॉरी आई एम जस्ट 5 मिनट्स लेट, ऐसा हम बोलते हैं. सो कई बार ये चीज़ हमारी लाइफ में होती है और मेरे को लगता है कि एवरीडे लाइफ में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही है. 5 मिनट लेट कई बार आपका 1 आवर लेट भी बन जाता है. दैट इज़ वन रीज़न कई बार काफ़ी लोग लेट क्यों कहीं पे पहुंचते हैं. सो व्हाट्स वन थिंग दैट यू ऑलवेज टर्न योर 5 मिनट डिले इनटू 1 आवर, क्या होता है वो आपके लिए? मे बी आप उठने में टाइम लगा देते हैं, इंस्टा पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, चाबी ढूंढने में, सामान पैक करने में जो आपको साथ में लेके जाना है, या क्या होता है आपका 5 मिनट 1 आवर कब होता है या फिर आपका कभी नहीं होता है? 5599 पर अपने मैसेजेस यहाँ पे आप भेज सकते हैं.
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं और आपके सुपर सिटी में गरबा नाइट होने वाली है जहाँ पे राज गढ़वीर लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांची ग्रुप आपके लिए लेके आ रहे हैं गरबा विद राज गढ़वीर, जहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी आप एक्सपीरियंस करेंगे। सो मार्क योर कैलेंडर्स, 1st अगस्त को इनका इवेंट होने वाला है महात्मा गांधी सेंटर में, एपिक सेलिब्रेशन म्यूजिक डांस एंड ट्रेडिशन की। टिकट्स बहुत ही जल्दी जा रही है तो अपना स्पॉट जल्दी से सिक्योर कर लीजिएगा। eventstickets.co.nz पे जाके अपनी जो टिकट्स आप बुक कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन के लिए, डिटेल्स के लिए स्वप्निल से बात कीजिए 0224394736 पर, जहाँ पे और भी जानकारी आपको मिलने वाली है।

0: माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आपकी सुपर सिटी में परफॉर्म करने वाले हैं 25 जुलाई को ट्रस्ट अरीना में। तो अपनी टिकट्स बुक करवा लीजिए dryticketscom पे जाके। दिस इज प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस। वैसे बात करते हैं अगर लेफ्ट ओवर मैजिक की। लेफ्ट ओवर मैजिक में यू नो सैलड्स हम कई बार बहुत खाते हैं अपने खाने के साथ, एंड सैलड बहुत बार लेफ्ट ओवर भी हो जाता है जो पड़ा रहता है और आपको समझ में नहीं आता है कि इसको एवरीडे कैसे रीयूज हम कर सकते हैं। बेसिक लेफ्ट ओवर सैलड सैंडविच भी आप बना सकते हैं। लेफ्ट ओवर सैलड में अगर कुकम्बर, कैरेट, लेट्यूस, कैबेज, कैप्सिकम, अनियन, टोमेटोज ये सब कुछ है तो इन सबको आप एक बाउल में डाल के उसके अंदर 2-3 टेबल स्पून ऑफ मेयोनेज या थिक योगर्ट डालते हैं, चीज़ डाल दो जो ग्रेटेड है या स्लाइसिस है, सॉल्ट एंड पेपर डालो एंड दैट्स इट। इसको ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगाओ, क्या मस्त सैंडविच बनता है। सो मतलब आपको एक एक चीज़ सैंडविच के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ साथ में ही मिक्स करके उसके बाद आप लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा मस्त होता है। वैसे एक और बहुत अच्छा वे होता है जो सैलड सैंडविच है इनटू फिलिंग मील, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दो एक या दो अंडे बॉयल कीजिए, उसके अंदर लेफ्ट ओवर सैलड डालो, उसके अंदर मेयोनेज डालो, पेपर, थोड़ा सा मस्टर्ड डालो, उसका फ्लेवर अलग ही आता है। एंड हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट जो है, या अगर आपने वर्कआउट किया है उसके बाद एज अ स्नैक भी आप खा सकते हैं। अगर आपने 5 बजे काम ख़त्म कर लिया, 4 बजे काम ख़त्म कर लिया, घर गए हैं, भूख लगी है बट ज़्यादा मील अगर आपको नहीं खाना है तो तब ये एक्चुअली में आप वहाँ पे खा सकते हैं। तो आपको गिल्ट भी नहीं होगा कि आपने कुछ यू नो ऐसा खाया है जो आपको नहीं खाना चाहिए था। हेल्थी स्नैक भी आपके लिए रहेगा।
1: माय टाइम ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर। कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।
2: ਮੰਗੀਏ ਤੇ

0: The Meat Box delivers restaurant quality meat right to your door. And in July, all purchases go in the draw to win free meat for a year. That's a prize worth over $5,000. T's and C's apply.
1: The Meat Box.
2: TheMeatBox.co.nz. Fresh meat delivered fresh to your door.
3: And then Mrs. Singh se maine pucha, "Enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho?" Boli, "Bas, mera focus hai."
4: "Achha, batao,
3: tuhanda focus, saada kuch nahi."
4: "Shh, Mrs. Singh." "Are Pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne."
5: Modern classic shaker style kitchens, Focus Kitchens, Unit K, 33 Wansley Road, Otahuhu. Call 09281 3050 or visit focuskitchens.co.nz.
6: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
7: आपके सामने एक रेड बटन है,
8: दबा दिया,
7: नहीं दबाना
9: था। The Madness is back, Dhamaal 4.
10: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
9: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamaal 4, directed by Indra Kumar.
11: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
9: Watch the biggest family entertainer, Dhamaal 4, in cinemas now.
12: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।
13: My Time, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
14: Rescue me, recycle me.
15: My Time फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यो हमें अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। रेस्क्यू मी रिसाइकल मी में आज बात करने वाली हूँ, आपके घर में अगर पुरानी जुराबे पड़ी हैं, सॉक्स पड़ी हैं, लॉन्ड्री डिजास्टर से हाउस होल्ड हीरो आपके घर की सॉक्स कैसे बन सकती है। पुरानी सॉक्स पड़ी है, फेंकिए मत उनको, आपके काम आ सकती है। कैसे? आप उसको डस्टिंग ग्लव्स बना सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ डिस्पोजेबल डस्टर, सिंपली स्लिप इनटू योर ओल्ड सॉक्स ओवर योर हैंड एंड उसको क्लीनिंग ग्लव की ज़रा यूज़ कीजिए, परफेक्ट है। अगर आपको शेल्व्स, फर्नीचर, टीवी स्क्रीन, पिक्चर फ्रेम, ये सब कुछ अगर आपको डस्ट करना है तो उसके लिए बहुत ही सही रहती है। यू कैन एक्चुअली क्लीन ब्लाइंड्स विदाउट द मेस। सो जो ब्लाइंड्स होते हैं आपके, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है, तो अगर आप ओल्ड सॉक्स पहनते अपने हैंड में, यू कैन एक्चुअली क्लीन द ब्लाइंड्स परफेक्टली। सीलिंग फैन क्लीनर हैक भी है, सीलिंग फैन अगर आपके घर पे है, यहाँ पे तो वैसे मोस्टली घर पे सीलिंग फैन नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपके घर पे है, दे आर डस्ट मैग्नेट्स एंड वाइपिंग दैम ऑफन मीन्स की डस्ट फ्लाइंग एवरीवेयर। सो सॉक्स की ट्रिक क्या होती है, प्लेस एन ओल्ड सॉक्स ओवर योर हैंड, स्प्रे अ लिटिल क्लीनर ऑन टू द सॉक्स एंड देन होल्ड द फैन ब्लेड जेंटली एंड वाइप फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स। तो सीलिंग फैंस के लिए या किसी भी फैन के लिए, जो टेबल फैन है उसके लिए भी एक्चुअली में ये परफेक्ट है। DIY हीट पैक आप इसका बना सकते हैं, बाजार से जो आप हीट पैक खरीद रहे हैं उसमें और आपकी सॉक्स में कितना ही ज़्यादा डिफरेंस है। सो क्लीन सॉक्स को अनकुक्ड राइस के साथ फिल कीजिए, टाई अ नॉट एट द एंड। माइक्रोवेव जब आप इसको करते हैं, चेक द टेम्परेचर केयरफुली दो। सो इसकी इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर एक बार ऑनलाइन जाके पढ़िएगा। और इसको आप सॉर मसल्स के लिए, नेक स्टिफनेस, इन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इवन जो ओल्ड सॉक्स है, दे मेक अ सोप सेवर एज वेल। स्मॉल सोप पीसेज दे गेट वेस्टेड, put a leftover soap pieces inside a old sock and tie the end. आप इसे body scrubber के लिए use कर सकते हैं, hand washing pouch हो सकता है ये आपका। So basically leftover soap जो है, जब आप इसमें डालते हैं तो वो effectively use हो जाता है। हम यार toothpaste को नहीं छोड़ते हैं, उसका भी एक आखिरी सांस तक हम निकालते हैं, तो soap हम क्यों waste करें? Soap को अच्छे से आप इस वे से use कर सकते हैं। So remember, आपके घर में अगर old socks पड़ी हैं तो उसको आप बहुत different चीज़ों के लिए use कर सकते हैं।
13: दिल से

माय टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं और मेरा वक्त हो चला है यहीं पे आपको टाटा बाय बाय कहने का, लेकिन जल्दी मुलाकात होगी आपसे कॉफी ब्रेक में 3 बजे. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. इसके बाद यहाँ पे आपका साथ केतन के साथ हो जाएगा. सी यू सून.